100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ हो रही है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

हमेशा भगवान पर भरोसा रखें हम, वो कब देंगे कैसे देंगे ये सोचना हमारा काम ही नहीं। हमारे कर्म और हमारे गुण ही तय करते हैं कि भविष्य हमें क्या देने वाला है। 100.7 FM पर कार्यक्रम पुष्पांजलि, मैं अनुपमा आपके साथ, सुप्रभात, नमस्कार।

हमारी विनम्रता ही हमको बड़ा बनाती है। ऐसा धन वैभव किस काम का जो हमारी विनम्रता और दयालुता ही छीन ले। इसलिए विनम्र बने हम, हमारी यही विनम्रता ईश्वर के समीप रखेगी हमें।

जिनके मुख में हरि का नाम नहीं, उनको मनुष्य जीवन का लाभ ही कहाँ मिलेगा। जो प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, उन्हें हमेशा जय की प्राप्ति होती है और कठिनाइयां भी उन्हें रोक नहीं पाती। पुष्पांजलि सुन रहे हैं आप 100.7 FM रेनबो पर, 6:25 का समय, और मैं अनुपमा आपके साथ।

को ईश्वर को समर्पित कर दें हम। ये जीवन जैसा भी है उनका ही दिया हुआ है। हमारे पास जो भी संसाधन है सब उनकी कृपा का ही तो प्रभाव है। सब कुछ उसी ईश्वर का है और एक दिन उसी के पास लौट जाना है।

ईश्वर की भक्ति कोई विशेष दिन या अवसर नहीं मांगती। जब हृदय सजग हो वही पल पूजा का हो जाता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं, बस हृदय में एक सच्चा भाव चाहिए।

हर सुबह एक नया वरदान होती है, ईश्वर द्वारा दिया गया एक और अवसर। तो आज भी प्रयास करें स्वयं को बेहतर बनाने का और प्रभु से गहराई से जुड़ने का। अपने भीतर के द्वार खोलें और प्रभु की भक्ति में लीन रहें। आज्ञा दे अनुपमा को आज की पुष्पांजलि से।

0: नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में महाकुंभ 2025 ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इस वर्ष 10 गोल्ड अवार्ड, 6 सिल्वर अवार्ड और 1 ज्यूरी अवार्ड की घोषणा की है। इसमें महाकुंभ 2025 को देश के सर्वश्रेष्ठ ई गवर्नेंस नवाचारों में शामिल किया गया है। गोल्ड अवार्ड प्राप्त करने वाले संस्थानों को 10 लाख रुपए तथा सिल्वर अवार्ड प्राप्त करने वालों को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 का औपचारिक वितरण समारोह जयपुर में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान किया जाएगा। काशी में आयोजित दूसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का कल समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने भाग लिया। बैठक के बाद प्रतिभागी देशों के प्रतिनिधियों ने गंगा आरती देखी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण किया और लाइट एंड साउंड शो का आनंद लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रवक्ता संवर्ग के 624 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 15 जून से 27 जून तक विषयवार आयोजित किए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और मथुरा में कल देर शाम हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दुर्घटना थाना जमुना पार्क क्षेत्र के अंतर्गत बलदेव रोड सिहोरा मोड़ पर हुई जब तो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवारों की आमने सामने से टक्कर हो गई। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की विस्तृत जांच कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए रेनबो।
1: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
2: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
3: धड़कता है जो हर दिल में
4: सुबह 6 से रात 12 बजे तक
1: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
2: धड़कन लखनऊ की।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM Rainbow.
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

और हम आपको सच बता रहे हैं कि कल की ये जो रात थी ना, सच मुझ करवटे बदलते बीत गई. सुबह सुबह आप लोगों से मिलने आना था, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है बाहर, तो इन सारी चीजों के साथ मैं अनुपमा एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ. कैसे हैं आप सब लोग? सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? वेल, मुझे पता है सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा. और हाँ, जो थोड़ा बहुत गड़बड़ होने लगता है ना बीच बीच में, या कल हुआ या अभी हो रहा है, वो इन सब खूबसूरत गीतों के साथ सही हो जाएगा जो आज सदाबहार गीत में मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं. तो आ गई हूं आपके कामों में, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी आपको, बस इतनी खूबसूरत गीतों का तोहफा गुलदस्ता पेश करूंगी जो सुनकर आपका जो मन है ना, वो और भी ज़्यादा प्रफुल्लित होकर अपने कामों में बहुत बेहतरीन तरीके से लग जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल. सदाबहार गीत सुन रहे हैं आप 100.7 FM रेनबो पर.

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

क्या खूबसूरत गीत है ना, जितना भी सुनो मन बिल्कुल नहीं भरता। 7:17 सदाबहार गीत सुन रहे हैं आप। वैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ख़ास पलों का इंतज़ार करते रहते हैं, और बिलीव मी हमारी लाइफ में कुछ स्पेशल तब होता है जब हम अपनी उम्मीदों का दायरा थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो बस अपने दिल और दिमाग की खिड़की दरवाजे खोल कर रखिए, ताकि ज़िंदगी की ये जो अनलिमिटेड खुशियों वाली जो सनशाइन है ना, जो धूप है, ये आपके दिल के कमरे के अंदर आती रहे। और बहुत से मौके मिलते हैं हमको सेलिब्रेट करने के, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे होंठों पे मुस्कान लाती हैं। अब आज एक ऐसे

शख्सियत का बर्थडे भी है जो बहुत ही हैंडसम थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जिन्होंने एक लंबा दौर बिताया और बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, सुनील दत्त साहब। एक खूबसूरत पर्सनालिटी, एक बेहद अच्छा व्यक्तित्व और एक सफल कलाकार। तो आइए गाना सुन लेते हैं उनका भी, बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर, सुनते रहिए।

क्या बात है, स्क्रीन पर थे सुनील दत्त और साधना, फिल्म थी वक्त, और बहुत ही खूबसूरत ये मूवी जो हम जब भी देखते हैं ना तब हम एंजॉय करते हैं, कुछ नयापन ज़रूर दिखाई दे जाता है। वैसे भी हम जिंदगी की बात करते हैं, ज़िंदगी के फ़लसफ़ों की बात करते हैं, तो खुलकर ज़िंदगी को जीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कुछ बुरा हो जाएगा इस बात का डर, हम सक्सेसफुल नहीं होंगे इस बात का डर, ख़ुद को स्पेशल दिखाने का जो प्रेशर होता है, या कंपटीशन में लगातार फर्स्ट आने का ये जो जुनून होता है ना हमारे बीच, इसके बीच कभी हम रुक के नहीं सोचते कि क्या क्या छोड़ दे रहे हैं हम ज़िंदगी में, और इसी के चलते हम क्या क्या खो देते हैं ये भी नहीं सोच पाते हम। देखिए, मेरे एक्सपीरियंसेस, आपकी बातें और बहुत सारी चीज़ें जो हम लिखते पढ़ते हैं वो ये बताती हैं कि ज़िंदगी में जो होना होता है वो अपने आप होता है, हमारे आपके सोचने से नहीं होता। तो हम क्यों अपने उस टाइम को इस तरह से वेस्ट करें, क्यों अपने आप को इतना प्रेशराइज करें, क्यों अपनी लाइफ को इतना स्ट्रेस में गुजारें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खुलकर जीना है हमें। और ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आजकल की भागदौड़ की लाइफ के बाद हमें मिलती है, वो है सैटरडे संडे। तो आज है सैटरडे, बहुत सारे लोगों की छुट्टी, अदरवाइज कल तो है ही है छुट्टी, तो आप ज़रूर अपने इस दिन को बहुत सारी जो रूटीन बातें हैं उनसे हटाइए और खुलकर जीने की कोशिश करिए। मुस्कुराहट के साथ दिन बिताएंगे तो डेफिनेटली मंडे ब्लूज से बच पाएंगे। 7:31 और आइए फटाफट से सुनवा देती हूँ आपको अपना एक बहुत ही फेवरेट सा गाना।

0: वेरी गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग टीचर.
2: गुड मॉर्निंग बेटा.
3: गुड मॉर्निंग बॉस.
4: गुड मॉर्निंग मम्मा.
5: गुड मॉर्निंग.
6: गुड मॉर्निंग.
7: गुड मॉर्निंग.
8: गुड मॉर्निंग.
9: Current affairs, history, birthdays, traffic, weather, music or entertainment. Sab kuch milega Morning Breakfast Show, Good Morning Lucknow mein. Har subah 8:15 se, only on Rainbow, Dhadkan Lucknow ki.
10: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM Rainbow.

हमें बहुत सारा टेंशन दे देती हैं, हम वो बातें हम पर इतनी हावी हो जाती हैं कभी कभी कि हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैल्यूएबल हो सकती हैं। अच्छा, तो सवाल करके देखिए ना खुद से कि क्या ये टेंशन्स, ये प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी, हमारी हंसी, हमारी खुशी से ज़्यादा ज़रूरी हैं? नहीं ना, तो फिर क्यों ना आज से ही हम कोशिश कर लें इन नेगेटिव बातों पे जीत हासिल करने की। बहुत सारे मौके होते हैं हमारे पास, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। देखिए, जब मैं यहाँ बैठती हूँ आके ना, तो मैं एक अलग दुनिया में होती हूँ। मेरे सामने माइक्रोफोन होता है, मेरे आसपास गाने होते हैं, आपके ईमेल्स होते हैं, आपका साथ होता है। और देखिए, सुबह से ही जो मेरे पास मेल्स आने शुरू हुए हैं, तेज बहादुर जी हैं, रोशनी रावत हैं, राजकमल हैं, सुधांशु जी हैं, सुल्तान रजा जी हैं, गुलफशा सिद्दीकी जी हैं, आप सबका साथ जब मिलता है ना, तो दिल जो है वो बिल्कुल बाग बाग हो जाता है। 7:44, सदाबहार गीत सुन रहे हैं आप, मैं अनुपमा आपके साथ। एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनिए, इंजॉय कीजिए। हिंदी फिल्मों के एक बड़े गीतकार राजेंद्र कृष्ण, जिनका नाम आज हम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं उनको, आज उनका भी ये गीत बनता है। और इतना खूबसूरत ट्रैक, इतना खूबसूरत गीत उन्होंने लिखा है, जो हर युग में हर जनरेशन को समझ में आता है और पसंद आता है।

ये जो मन है ना मन, ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक उड़ जाता है और क्या क्या सोच लेता है, और उन बातों पे ज़्यादा सोचता है जिनकी एक्चुअली उतनी वैल्यू नहीं होती। वो बातें जो आपको परेशान करती हैं।

7 बजकर 50 मिनट बस होने वाले हैं और आप सब भी बहुत पास रहते हैं हमारे दिल के, आप जानते हैं ना, और इसीलिए तो हम आपके लिए इतने सारे प्रोग्राम्स सजा के संवार के बना के लाते हैं। कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस आप सुन सकते हैं प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच, जिसके प्रायोजक होंगे चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ। और इसके साथ ही साथ प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। बहुत कुछ है आपके लिए सुनने के लिए। अभी तो आप मुझे सुन रहे हैं सदाबहार गीतों के साथ सुन रहे हैं, तो बस सुनते रहिए। दो गीतों के बाद एक ब्रेक लेंगे, जो दिल्ली से आपको समाचार जहां से मिलेंगे, और उसके बाद गुड मॉर्निंग लखनऊ का सिलसिला जारी हो जाएगा।

7:54 होने वाले हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हम बड़े हो जाते हैं. बहुत से ऐसे गीत, बहुत सी ऐसी फिल्में जो आपने देखी होंगी जिनके साथ साथ आप बड़े हुए हैं, वो आपके लिए एक अलग नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती हैं. हम जैसे बासु चैटर्जी की फिल्में ही ले लीजिए, एक अलग माहौल हुआ करता था, बिल्कुल ऐसा जैसे कि हम अपने घरों में आसपास देखते थे. अपने घर के जो किरदार होते थे उन फिल्मों में फिल्माए जाते थे, दिखाए जाते थे. बहुत ही सिंपल सिंपल, कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं, कुछ ऐसा ग्लैमरस नहीं जिसको देख के हमें लगे कि हम किसी ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जिसको हम छू नहीं सकते, हम पा नहीं सकते. बासु चैटर्जी को याद कर रहे हैं, और जब हम बासु चैटर्जी को याद करते हैं तो पर्सनली मुझे बहुत सारे ऐसे गाने, बहुत सारी ऐसी फिल्में याद आ जाती हैं, और एक गीत ऐसा ज़रूर होता है जो हमेशा उस लिस्ट में टॉप पर बैठ जाता है.

बस जाएंगे कहीं नहीं, 15 मिनट का एक ब्रेक लेंगे जिसमें समाचार पहुंचेंगे आप तक दिल्ली से, हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके बाद गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर हाजिर हो जाएंगे एक और आवाज के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
4: शत्रुपा से।
5: अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
4: शत्रुपा से माँ जी।
6: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
4: शत्रुपा से।
7: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
4: शत्रुपा से।
8: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरण

0: अपनी ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।

0: efforts by Pakistan would not change this fundamental reality.
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। इससे अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं।

0: व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पांचवी पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तां। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। पहले आप में कई बार जो है ना वो गाड़ी छूट जाती है विनय
3: जी। बिल्कुल छूट जाती है और मैं तो इंतजार कर रहा था कि पहले आप ही शुरू करें।
1: लेडीज फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है ना वो आपने अपना लिया
3: जी।
1: तो 8:17 गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर हाजिर हूँ मैं अनुपमा, और मैं तो सुबह से आपके साथ हूँ, लेकिन एक और आवाज़ आपके साथ जुड़ गई है विनय की।
3: हाँ जी, और आप इंजॉय करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग्स और ढेर सारी बातें।
1: बहुत कुछ है देश दुनिया में आज के दिन भी जानने के लिए, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत मौसम जो है वो उठा पटक कर रहा है, तो मौसम की अपडेट्स की भी कोशिश रहेगी आप तक पहुँचाने की, ट्रैफिक की जानकारी भी आप तक देंगे, बहुत सारे ऐसे नाम जो आज बहुत खास तौर पर चमक रहे हैं सुनहरे हरफों में उनकी भी बातें आप तक पहुंचाएंगे
3: जी। ढेर सारी बातें होने वाली हैं और सॉन्ग्स की बात हमने की ना, तो ये लीजिए बेहतरीन ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।

0: का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र। 8:22 आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। विनय आपके साथ है, विनय के साथ मैं अनुपमा, आप सबका साथ देने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और मॉर्निंग मंत्रा का हो गया है टाइम, तो विनय आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कहता है?
1: मॉर्निंग मंत्रा ये कहता है कि अनुपमा जी, उससे पहले मैं आपसे कुछ बात इसके बारे में करना चाहता हूँ, मॉर्निंग मंत्रा के बारे में, कि जैसे आजकल की लाइफ है हमारी, पेरेंट्स बहुत सारी शिकायतें करते हैं कि मेरा बेटा बहुत देर तक सोता रहता है। हाँ, बहुत देर में जगता रहता है। और एक सर्वे में कहा गया है कि 70% जो बच्चे आज की जेनरेशन है वो उगते हुए सूरज को नहीं देख पाती है। तो उसके लिए ही हम मॉर्निंग मंत्रा लेकर आए।
0: क्या बात है, बहुत जरूरी है। बदलती हुई लाइफस्टाइल अच्छी है, अपनी जिंदगी में आधुनिकता का समावेश भी जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप हटाएंगे तो जिंदगी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो करेगी या आ जाएगी।
1: तो मॉर्निंग मंत्रा आज का कहता है, उठे सवेरे खाए हवा।
0: क्या बात है,
1: उठे सवेरे खाए हवा और 100 रोगन की एक दवा।
0: क्या बात है, सुबह सुबह उठना, देखिए कितनी सिंपल सी बात है। और जो हमारे बड़े

0: कह गए हैं, जो हमारी कहावतें हैं, जो हमारे मुहावरे हैं, उनमें जिंदगी के कितने बड़े बड़े फलसफे छिपे होते हैं ना विनय
1: जी। बिल्कुल, और ऐसा ही करना चाहिए हम सभी को।
0: बिल्कुल, तो जल्दी उठने की ये जो आदत है एक बार फिर से वापस लाइए इसको, और सुबह की ठंडी ताज़ी हवा के साथ सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
1: तो क्या है मुद्दा? उसके पहले मेरा एक सवाल आपसे।
2: हाँ जी।
1: आपने सवाल की शुरुआत कर दी ना, आपने मुझे छेड़ दिया इस समय। तो अब मैं आपसे सवाल करूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने अपने घर में कितने पेड़ पौधे लगाए?
2: मेरे घर में, अब आप आइए तो मैं दिखाया था तो बता दें, मैंने मेरे घर में पूरी बगिया है।
1: बगिया है ना? हाँ। और छत पे?
2: छत पे तो छोटे छोटे गमले।
1: छोटे छोटे गमले हैं। और ये जो छोटे छोटे गमले छत पे रखे हैं, इससे कोई फायदा होता है क्या?
2: बस ऐसा लगता है कि छत पे गए हैं और कुछ हरा हरा दिख रहा है, इससे ज्यादा तो मुझे फायदा महसूस नहीं हुआ।
1: चलिए आज आपको इस फायदे के बारे में थोड़ा महसूस करवाया जाए।
2: जी बिल्कुल।
1: आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ग्रीन रूफ टॉप डे, यानी विश्व हरित छत दिवस। जो छतें खाली पड़ी हैं और मौसम का जो बदलाव हो रहा है, जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जिस तरीके से बढ़ चुके हैं, और अभी आपने देखा भी कि किस तरीके से जो नौतपा गया उसमें कहीं भी ताप नहीं था।
2: हाँ।
1: जबकि ये नौतपा बहुत जरूरी होता है हमारे इस पूरी सृष्टि के लिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो अगर हम अपनी छत पे पेड़ पौधे लगाते हैं, बगिया बनाते हैं, अपनी छत को हरा भरा रखते हैं, तो बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। और आज

0: इम्पोर्टेंस को लोगों के साथ शेयर करने के लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड ग्रीन रूफ टॉप डे, यानी कि विश्व हरित छत दिवस।
1: जी बहुत अच्छा टॉपिक है आपका अनुपमा जी, और सबसे बड़ी बात है ना कि
0: सिर्फ अभी मेरा थोड़े ना, हम दोनों का है।
1: हम दोनों नहीं, आपने हम तो सवाल किया ना,
0: आपके घर में भी ना छत पे बगिया है।
1: आपने मुझसे सवाल किया था तो मुझे कैसे पता चलता कि सवाल क्या है?
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: देखिए अभी तक जो हम लोग अपने गार्डन में पेड़ उगाते थे कि ये पेड़ हो जाएगा वो पेड़ हो जाएगा, तो अभी क्या करना है कि छत पर जो जगह है हमारे पास उस पर हमें पेड़ लगाने हैं।
0: अब हमने कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, पेड़ पौधों की बात तो हमारी शुरू हो ही चुकी है और हमेशा होनी चाहिए। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़, जो असंतुलन हुआ है उसको देखते हुए हमको बहुत जागरूक हो जाना चाहिए। तो आज हम आपसे पूछने वाले हैं कि आप बताइए, आपके घर की बगिया में क्या छत पे भी बगिया है, या आप किस तरीके से अपने घर की छत को हरा भरा बना के रखते हैं, या कितने जागरूक हैं आप इन पेड़ पौधों के प्रति, क्या क्या फायदे हैं इसके, क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, इसके बारे में हम मैंने बात करते रहेंगे।
1: हाँ,
0: प्रोग्राम में
1: बिल्कुल बात करते रहेंगे और हमें लगता है कि जैसे हम बगिया अपने घर की देखते हैं और इमेजिन मैं कर रहा हूँ कि अगर छत पर जाएंगे वैसे ही बगिया होगी तो फिर क्या दृश्य होगा।
0: बिल्कुल, और ये दृश्य जो हमारे श्रोता हमें बताएंगे वो कहाँ बताएंगे?
1: FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।
0: क्या बात है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ईमेल्स आने शुरू हो गए होंगे, तो बस एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक भेजते हैं आप तक और फिर वापस आते हैं आपके ईमेल्स के साथ।
1: जी

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 एफएम रेनबो पर।
1: अति उत्साहित हैं शिवम ये बताने में कि आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ।
2: जी जी जी, 8:35 और 48 सेकंड्स का वक्त हो चला है।
1: उत्साह तो बना रहना चाहिए विनय।
2: बिल्कुल, उत्साह ही तो जिंदगी है।
1: और देखिए कितने उत्साह के साथ हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमको ईमेल्स भेजते हैं।
2: और ये भैया मोनू सेठ हैं, इनका मेल आ चुका है और लिखते हैं अनुपमा दीदी और विनय भैया को नमस्ते, राम राम, और कह रहे हैं कि आपसे शिकायत कर रहे हैं।
1: हमारी शिकायत?
2: आपसे शिकायत।
1: ओ
2: जल्दी आया करिए। और श्लोक लिखते हैं, सेवा धर्मा परमः श्रेया,
1: अच्छा,
2: परहितम कर्तव्यम सर्वदा, दीनाना मुपकारेण हिम जीवनम संपूर्ण भवेत। है जिसका अर्थ दूसरों के हित के लिए हमेशा काम करना चाहिए क्योंकि सेवा ही परम कल्याणकारी धर्म है।
1: बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच मोनू जी, आपने इतनी अच्छी बात लिखकर भेजी सुबह सुबह। इधर शैलेश कुमार जी हैं, टाइगर शर्मा लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, गुड मॉर्निंग लिखते हैं आपको और हमको और पूछते हैं कि कहाँ है विनय भैया आजकल, बहुत जल्दी जल्दी आया करिए, आप भूल जाते हैं स्टूडियो है ना। चलिए, हम सब जरूरतों के हिसाब से आते रहते हैं, आपसे मिलते रहते हैं। घनश्याम जी का मैसेज है
2: जी,
1: लिखते हैं कि घर में आम, जामुन, शरीफा, सहजन, केला और अमरूद और तुलसी का पौधा भी उगा रखा है, हर तरफ हरियाली नजर आती है। विनय भैया आपकी रेशमी आवाज सुनकर दिल खुश हो गया है।
2: क्या बात।
1: चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और हम खास तौर पर जानना चाहते हैं कि घर की छत पे आपने क्या कर रखा है
2: जी। और उसके अलावा जनवीश कुमार जी का मेल है और गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको।
1: चलिए,
2: और हमें भी,
1: आपको भी गुड मॉर्निंग।
2: जी, और लिखते हैं एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है और ख्वाहिश इनकी बहुत अच्छी है और इन्होंने कुछ बारे में लिखा है, हम लोगों के बारे में लिखा है, प्रोग्राम्स के बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इन्होंने ग्राम रसूलपुर पोस्ट सकरावा जिला
1: कन्नौज से लिखा है।
2: जी जी।
1: लेकिन जनवेश जी, आप हमें ये भी बताइए ना कि आपने अपने घर की छत पे क्या क्या चीजें उगा रखी हैं, इससे लोगों को पता चलता है। कई बार हम इस पशोपेश में रह जाते हैं, कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, पता नहीं ये चीज हमारी छत पर गमलों में लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, या हम अपने छत की हरियाली को सिर्फ सब्जियों से और फूलों से नहीं और भी किस तरीके से सजा सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं,
2: जी
1: जरूर बताइए
2: जी। और अगर आपने नहीं किया है और आज का हमारा ये मुद्दा सुनकर आपके दिमाग में आ गया कि हाँ छत पर भी हम कुछ कर सकते हैं, उगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं।
1: कोई भी दिन शायद इसीलिए मनाया भी जाता है कि कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है, एक वार्निंग है और हमें जागरूक होना जरूरी है, तो क्यों हम ये दिन मनाते हैं इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। और आप हमें ईमेल करते रहिए। 8:38 का हो रहा है समय और एक और खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

0: You're listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow.
1: हाँ जी, तो समय बता दें
2: जी. बिल्कुल
1: बताएं
2: पहले आप.
1: 8:42 का हो गया है समय. गुड मॉर्निंग लखनऊ का फर्स्ट हाफ थोड़ी ही देर में ख़त्म होने वाला है, लेकिन उस हाफ के चलते चलते बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर तो करते चले ना
2: जी. बिल्कुल.
1: आज की जो तारीख है वो इतिहास में क्यों दर्ज है, क्या क्या चीज़ें ऐसी खास रहीं, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, इनके बारे में बात करते चले
2: जी. बिल्कुल. और याद करना उनको, उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब अभी आपने पहले कहा था कि जो डेज हम मनाते हैं पर्टिकुलर, वो इसीलिए मनाते हैं कि हम उनको याद करते रहें और अपनी विरासत को संजो कर.
1: बहुत अच्छी बात.
2: जी.
1: तो 1674 में आज ही के दिन शिवाजी मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे, आज ही के दिन उनको उनकी ताजपोशी की गई थी और आज ही के दिन उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी.
2: हाँ जी. और ये बहुत बड़ा दिन है हम सभी के लिए और मराठा साम्राज्य के लिए.
1: और इसके साथ ही साथ 1933 की बात करें तो पहला ड्राइव इन थिएटर ओपन हुआ था यूएस जर्सी कैमडन में
2: जी.
1: और अब ये बताइए, ये जो ड्राइव इन थिएटर आता है इसके बारे में क्या जानते हैं हम लोग? अपने श्रोताओं को बताना जरूरी है. देखिए, ड्राइव इन थिएटर एक ऐसी चीज हुआ करती

0: थी, जैसे अब आप ओपन थिएटर्स देखते हैं, आप जाते हैं चीज़ों जो नाटक हो रहे हैं या जो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं आप उनको खुले में देखते हैं, वैसे ही एक बड़ा सा ग्राउंड जिसमें एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हो और वहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग स्पेस हुआ करती थी विनय, जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों के साथ अंदर जाते थे और गाड़ियों में बैठ के जो भी चीज़ें चल रही हैं आगे, जो फिल्म हैं या परफॉर्मेंसेज हैं, उनका मज़ा ले सकते थे। वहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी हुआ करते थे, बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारी जगह हुआ करती थी। और ये जो चीज थी ये आज ही के दिन सबसे पहले शुरू हुई थी।
1: क्या बात है। और सोयूज 2 का प्रक्षेपण हुआ था आज ही के दिन 1971 यानी साल 1971 में, और अकेला अंतरिक्ष यान जो दुनिया के पहले स्पेस स्टेशन पर गया था।
0: और ये जो स्पेस स्टेशन था इसका नाम था सैल्यूट 1। और 30 जून को टेक्निकल फॉल्ट के चलते ये मिशन जो था ये सफल नहीं हो सका था और इसमें जो 3 लोग गए थे वो वापस नहीं आ पाए, और अंतरिक्ष में जिनकी मृत्यु हुई ये 3 पहले लोग थे
1: जी। और उसके अलावा 1903 में पहले भारतीय विज्ञापन दृश्यों की शूटिंग हुई थी।
0: हाँ, और ये जो दृश्य थे ये हेयर टॉनिक या जनरल टॉनिक से रिलेटेड थे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आज हम कितने एड्स देखते हैं ना, लेकिन एक समय ये भी था जब इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी।
1: और जो ये जो आप बता रही हैं, बात कर रही हैं हिस्ट्री के बारे में या जो और भी जानकारी आपने दी है अभी, रूफ के बारे में जानकारी दी थी, मैं तो बस इमेजिन करता जा रहा हूँ कि ऐसा होता तो कैसे होता और ये हुआ होगा तो पहली बार कैसे हुआ होगा।
0: बिल्कुल,
1: 1999 साल 1999 की बात करें तो लिएंडर पेस और महेश भूपति ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीता था आज के दिन।
0: क्या बात है, और कितनी गर्व की अनुभूति होती है। आप सोचिए जो चीजें हमारे देश की हैं, हमारी अपनी हैं, उनको जब हम देखते हैं, उनके शुरुआती दौर की दास्तानें सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, उनका स्ट्रगल देखते हैं, तो लगता है कि लाइफ में कितना कुछ करने के लिए है और हमारे देश में कितना कुछ है जो एक आइडियल बन सकता है आने वाली नस्ल के लिए।
1: बहुत ज्यादा टैलेंट है हमारे देश में, और जैसे कि हम सब याद करते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं तो एक उत्साह सा होता है कि चलिए अब हम भी कुछ करते हैं।
0: तो रूफ टॉप पे कुछ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको हमें बस मेल करके बताना है और आपकी बातों के साथ शायद हमें भी कोई आइडिया मिल जाए।
1: हाँ जी बिल्कुल, fmakashwani@gmail.com पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। विनय यादव और अनुपमा है आज आपके साथ।

0: ऐसे कभी कभी गाने आते हैं मन करता है उठ के डांस करने लगे, और कभी कभी तो हम लोग स्टूडियो में डांस करने भी लगते हैं, ये भी हमारे लिसनर्स जानते हैं।
1: लेकिन जब साथ में होते हैं तब नहीं करते, अकेले होते हैं तब करते हैं।
0: नहीं नहीं, हम तो साथ में भी कर लेते हैं, बस शर्त यह है कि साथ में डांस करने वाला जो है उसको अच्छा डांस आना चाहिए।

0: ऐसे कभी कभी गाने आते हैं मन करता है उठ के डांस करने लगे, और कभी कभी तो हम लोग स्टूडियो में डांस करने भी लगते हैं, ये भी हमारे लिसनर्स जानते हैं।
1: लेकिन जब साथ में होते हैं तब नहीं करते, अकेले होते हैं तब करते हैं।
0: नहीं नहीं, हम तो साथ में भी कर लेते हैं, बस शर्त यह है कि साथ में डांस करने वाला जो है उसको अच्छा डांस आना चाहिए।
1: तभी तो मैंने कहा कि हम अकेले में करते हैं।
0: चलिए, मजा आ रहा है मुझे विनय के साथ प्रोग्राम करने में। और आप लोगों के जो ईमेल्स हैं वो हमारे सामने हैं।
1: जी बिल्कुल, सुधांशु जी ने मेल किया है और राधे राधे कहा है। सुधांशु ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी के तालाब से उन्होंने मेल किया है। लिखते हैं कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों की आवाज बहुत अच्छी लग रही है और आज का टॉपिक जो है वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे छत के ऊपर तरुई, तुलसी और फूलों के पेड़ लगे हैं और चौड़ाई काजू पेड़ लगा हुआ है और उसने कभी दवाई नहीं पड़ती और बिना दवाई वाली सब्जी को मिलती है और इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
0: अगर आप ऑर्गेनिक चीजें उगाते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। जो नेचुरल चीजें होती है, नेचुरल खाद होती है, अगर उससे पेड़ उगते हैं तो और अच्छी बात है और इससे छत भी सुंदर रहती है आपकी। और साथ ही साथ बहुत कुछ जो कहते हैं ना वर्षा का जो जल है वो नीचे आ रहा है
1: जी।
0: उसका भी अच्छा इस्तेमाल होता है पेड़ों में पड़ के, वो कभी जमीन पे गिर के उस तरीके से वेस्ट नहीं होने पाता
1: जी। और ये इन्होंने ये हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो हमारे टॉपिक पे बात की है कि तरोई और तुलसी ये इनके छत पर है।
0: और आपको पता है एक और बहुत बड़ा फायदा है अपने घर की छत पे बगिया बनाने का
1: जी।
0: आजकल के समय में जब लोगों ने सोलर पैनल लगाने शुरू कर दिए हैं विनय, आप देखिए ज्यादातर लोगों के घरों में सोलर पैनल लगे हैं।
1: हाँ जी।
0: तो अगर आप खाली छत पे सोलर पैनल लगा रहे हैं, खैर आपको फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आपकी छत पे हरियाली है तो ये जो फायदा है ये दोगुना हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ये हरियाली उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है।
1: हाँ, और उसके अलावा मेल्स पर और नजर डालते हैं।
0: अरुण कुमार जी का मैसेज है, अरुण कुमार कुशवाहा घमोइया से हैं आप, नमस्कार कह रहे हैं, सुविचार के लिए धन्यवाद कह रहे हैं आपको। और बगिया लगाने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जब भी छत पर जाओ तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है। इन्होंने अपनी छत पर अरिका पाम, एलोवेरा, पुदीना, कड़ी पत्ता और एक सदाबहार का पौधा भी लगाया है, बहुत सुंदर।
1: और उसके अलावा रोशनी जी का मेल है और नमस्ते किया है उन्होंने आपको और हमसे जी नमस्ते। और लिखती हैं कि आप बहुत दिनों के बाद आई हैं मैम और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आपका इंतजार रहता है।
0: पेड़ पौधे लगाने में व्यस्त थे।
1: और मुद्दे की बात पे लिखती हैं कि मेरे घर में छत पर तो नहीं है मगर घर के अंदर पीछे साइड अपना छोटा सा खुशियों का एक खजाना है जैसे पेड़ पौधे से घिरा हुआ है और आशियाना बना रखा है, मुझे वहाँ बैठ कर चाय पीना बहुत अच्छा लगता है।
0: एक पर्सनल कोना अपना तय हो जाता है घर के अंदर, है ना, आपकी बालकनी में अगर एक छोटी सी बगिया है, आपके छत पर अगर एक छोटी सी बगिया है, वहाँ पर एक झूला रख लीजिए, कुछ हल्का सा म्यूजिक हो शाम को, हा हा हा क्या बात है, शाम अवध का पूरा माहौल बना दिया।
1: एक छोटी सी बात ऐड करें इन्हीं की बात,
0: बिल्कुल,
1: कि आपने जो ना छोटा सा कोना बना रखा है वहाँ पे आप चाय पीती हैं, इंजॉय करती हैं, लेकिन ये खुशियों भरा, ये एक तमाम लोग ऐसे होते हैं ना अनुपमा जी जो छोटा सा कोना बना के मुंह बना के बैठ जाते हैं, नहीं होना चाहिए ना।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोना हम हैप्पीनेस के लिए बनाते हैं, ये कोना उन खुशियों के लिए है, आपकी अपनी खुशी के लिए है। हाँ। चाहे आप किसी और के साथ हो या ना हो, लेकिन आप खुद के लिए खुशी तलाशते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: मोनू जी लिखते हैं तो कि गांव में छत पर हरियाली कम लेकिन बाग बगीचों में और हर द्वार पर पेड़ पौधे लगे मिलेंगे। इनके यहाँ भी तीन बड़े बड़े पेड़ हैं, दो नाना जी ने लगाए थे, एक मम्मी ने और एक मैंने, और नींबू का, करौंदा का भी पौधा है, कुछ दिन बाद आप तक नींबू और अमरूद पहुंचेंगे, जामुन भी जरूर खिलाएंगे, क्या बात है, प्रोग्राम करने देंगे कि नहीं है बताइए। जी रोशनी रावत जी क्या कहती हैं?
1: हाँ, इन्होंने कहा ना कि हम एक छोटा सा सुनहरा सा कोना है वहाँ पर चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, इन्हीं की बात पे कह रहे थे, वहाँ बना रखा,
0: बहुत बढ़िया। सुधांशु जी एक चीज बताना भूल गए थे कि मेरे छत पर लौकी का भी पेड़ लगा है।
1: क्या बात है,
0: इस मौसम में लौकी, वाह क्या बात है। जीरे वाली लौकी बनाइए, सांभर में लौकी डाल के खाइए, लौकी के कोफ्ते बनाइए, सब एकदम शुद्ध बनेगा।
1: और वारिस अली खान साहब ने मेल किया है और हम दोनों को प्यार भरा नमस्ते सलाम भेजा है। और उसके अलावा आज के मुद्दे पर जो बात कहते हैं, लिखते हैं, मैंने अपनी छत पर गमले में पौधे लगा रखे हैं, सब्जी और फूल दोनों तरह के पौधे आपको मेरी छत पर मिलेंगे, कोई समस्या अगर आती है तो संडे को प्रसारित होने वाला
0: exactly, हम इसी पे आ रहे थे कि देखिए आप छत पे आप हरियाली रखना चाहते हैं, पौधे लगाना चाहते हैं, बगिया लगाना चाहते हैं, आपको प्रॉपर जो गाइडेंस

0: होती ना वो भी मिलती है रेनबो के जरिए हर संडे गुड मॉर्निंग लखनऊ में। आपसे विशेषज्ञ सीधे बात करते हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें डायल कर सकते हैं
1: जी। और इन्होंने हमें मेल किया था संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
0: 8:55 हो रहे हैं, समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद वापस आते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकेंड हाफ में, सुनते रहिए।

0: नमस्कार, 9 बज चुके हैं। आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल प्रदेश भर में हुए आयोजन से संबंधित खबरें आज अधिकतर समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है, यूपी में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का आरंभ। उपशीर्षक है, मुख्यमंत्री ने की लॉन्च, विश्व बैंक के सहयोग से पहली एयर शेड आधारित योजना। अमर उजाला ने लिखा है, हवा की सेहत सुधारेगी वायु प्रबंधन परियोजना। हिंदुस्तान लिखता है, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक दिन में लगाए गए 5 करोड़ पौधे। यूपी में बना रिकॉर्ड, योगी बोले मां के नाम पेड़ लगाएं। अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की खबर भी आज प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, विश्वास है POJK बनेगा भारत का हिस्सा। केंद्र सरकार की ओर से कल जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ये खबर आज सभी अखबारों में प्रमुख हेडलाइन बनी है। अमर उजाला ने लिखा है, 7.7% की रफ्तार से बढ़ी GDP, युद्ध टैरिफ की चुनौतियों के बीच उम्दा प्रदर्शन, खपत, विनिर्माण व कृषि क्षेत्र में दिखाया दम। हिंदुस्तान ने लिखा है, संकट के बीच भारत की GDP में उछाल। केंद्र सरकार और RBI ने देश में ज्यादा डॉलर लाने और इसकी निकासी रोकने को लेकर कई कदम उठाए हैं। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापते हुए लिखा है, विदेशी पूंजी के लिए टैक्स की फ्री राह तैयार, सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश पर टैक्स में छूट, RBI ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पर की गई डिजिटल इंडिया से संबंधित पोस्ट की खबर स्वतंत्र भारत के पहले पन्ने पर है। अखबार ने लिखा है, AI सेक्टर का नया हब बनेगा भारत, PM मोदी। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में तबादलों की प्रक्रिया के तहत आवेदन आमंत्रित करने की शुरुआत हो गई है। दैनिक जागरण ने इस खबर पर हेडलाइन दी है, तबादले के लिए 20 जून तक करें आवेदन। हिंदुस्तान ने लिखा है, शिक्षक तबादले को सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त। अमृत विचार ने नोएडा की एक इमारत में आग लगने की दुर्घटना को पहले पन्ने पर छापते हुए लिखा है, नोएडा में 12वीं मंजिल में लगी भीषण आग, परिवार सुरक्षित, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए रेनबो।
1: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
2: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
1: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
2: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
1: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
2: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
1: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
2: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
3: लखनऊ की
2: 100.7 FM रेनबो।
4: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।
5: हाँ जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 FM रेनबो पर। 9:25 का वक्त आपके साथ हैं।
0: आपके साथ हैं विनय, और विनय के साथ हैं अनुपमा, और हम दोनों के साथ हैं आप सब जो हमें बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत के साथ सुनते हैं और अपनी राय रखते हैं, अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं। और देखिए, जहां तक शहर लखनऊ की बात है, दिन पर दिन और खूबसूरत होता जा रहा है, है ना,
5: और तमाम तरीके से लोगों का भी योगदान हो रहा है और सरकार का भी।
0: देखिए, अगर लोगों का योगदान नहीं होगा ना, तो जो चीजें हमारे लिए की जाती हैं वो फिर सफल नहीं हो पाएंगी।
5: हाँ, जब हम उसे यूज नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसमें आनंद नहीं लेंगे, तब तक कैसे,
0: जब तक उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, और जो हमारे लिए नियम बनाए जाते हैं, जो हमें कानून बनाए जाते हैं, उनका भी पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी जगहों पर व्यवस्था की गई है, जैसे चौराहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्जन लगा के फिर आगे से मोड़ के आने के लिए कहा जाता है, जिससे ट्रैफिक जो है वो सुव्यवस्थित रहे। लेकिन क्या होता है विनय, जब सुबह सुबह आओ ना, तब हम लोग देखते हैं कि चौराहों से ही आदमी, क्योंकि सुबह है, ट्रैफिक नहीं है, तो ऐसा करते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं, सामने से निकल लेते हैं, कौन जाएगा उतनी देर।
5: हाँ, और वही हमारे लिए खतरनाक।

0: भाग होता है क्योंकि सुबह सबको जल्दी होती है और सभी चाहते हैं कि हम शॉर्टकट अपना लें और निकल जाएं।
1: तो 15-20 सेकंड को बचाने के लिए आप जब इस तरीके की कोई कोशिश करते हैं तो वो प्रॉब्लम में डालती है हमको भी और सामने वाले को।
0: और ऐसा नहीं है कि आपके साथ रोज हो सकता है या आपके जानने वालों के साथ हो सकता है, वो ऐसी घटनाएं कभी कभी होती हैं और जब होती हैं तो फिर बहुत नुकसान पहुंचा देती हैं।
1: कुल मिलाकर बात ये कि हमें ध्यान रखना है जब हम सड़क पर निकलते हैं, अपने जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से उसका पालन करना है। और आज जो मुद्दा हमने रखा है वो क्या है?
0: जी आज का मुद्दा हमारा है वर्ल्ड ग्रीन रूफ डे।
1: यानी कि हम अपनी छतों को हरा भरा रखते हैं, उससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। थोड़ी देर में इस पे भी बात करेंगे और फिलहाल शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ की एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ और फिर आपके ईमेल्स के साथ और भी बहुत सारी बातों के साथ ये एक घंटा हम बिताने वाले हैं।

0: Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: हाँ जी, ये है धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो 9:10 और 47 सेकंड। देखिए अनुपमा जी, जब भी मौका मिलता है ना ट्रैक पे आने का, आपसे बातें करने का, और हमारे जो लिसनर्स हैं, इतने सारे मेल्स भेजे हैं, इतने सारे उन्होंने मैसेजेस भेजे हैं, अपने संदेश भेजे हैं, तो फिर लगता है कि ना उत्साह वाली बात जो हमने की थी वो एकाएक।
4: अगर जीवन में उत्साह ना हो ना, तो चीज़ों की जो रौनक है, जो बातों के अंदर जो वाइब, जो कहते हैं ना एकदम ब्राइट एंड ब्यूटीफुल बातें, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो उत्साह तो बनाए रखिए बिल्कुल। और देखिए, जनगणना की जहाँ तक बात हो रही है, इस वक्त जो दौर चल रहा है, जनगणना कर्मी आपके घर आते हैं, आपसे डिटेल्स लेते हैं, तो पैनिक ना करें और इरिटेट भी ना हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा इरिटेशन का लेवल उनका हो सकता है जो इस धूप में बाहर घूम रहे हैं।
3: और हर जगह जगह जाना पड़ता है, हर घर पे जाना पड़ता है, और सबसे बात करनी पड़ती है, और पता नहीं किसका मूड कैसा है।
4: बिल्कुल, तो जरा प्यार से पेश आएं, अंदर बुला के बिठाएं, पानी पिलाएं, कुछ इंसानियत का जो वो चीज कहते हैं ना जज्बा है, उसको हमेशा कायम रखना चाहिए। और सचमुच इस धूप में जहां हम किसी एक बार आधे घंटे के लिए बाहर जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, सोचिए जरा दिन दिन भर वो लोग इस काम को अंजाम देते हैं।
3: हाँ, और वैसे तो जब मामा आते हैं तो मम्मी बहुत जल्दी पानी लेके आती है, तो वैसे ही मामा समझ ली कि जनगणना वाले मामा आ गए।
4: ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। तो आप प्यार से पेश आइए और देखिए बात कितनी अच्छे से सारी पूरी हो जाती है। वकील अहमद का ईमेल मेरे सामने है विनय
3: जी,
4: आप लोगों के लिए अच्छा लिखा है इन्होंने। और घर पर नींबू का पेड़ और अमरूद का पेड़ लगा है, पपीता का पेड़ लगा है, बेरी का पेड़ है, आम के बाग हैं, छत पर नहीं लगे हैं, छत पर भी लगाएं, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं, इसलिए मैं पढ़ती चली जा रही हूँ। एक बार इन्होंने धनिया लगाई थी, बहुत अच्छी लगी थी। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, जिला सीतापुर से इन्होंने हमको ये मेल किया है।
3: हाँ, छत पर लगाएं, यही इसीलिए तो आज हमने ये मुद्दा रखा हुआ है। हाँ, और निधि चौरसिया जी ने मेल किया है, गुड मॉर्निंग लिखती हैं आपको और हमें, और लिखती हैं आज का टॉपिक सुन नहीं पाई हूँ, रेडियो देर से ऑन किया है इन्होंने, तो आज का टॉपिक हम आपको बता बात ही कर रहे हैं,
4: चल ही रहा है टॉपिक। और इधर मुनेश कुमार राज है, गाँव भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से, विनय और राखी जी को सुप्रभात। तो राखी जी तक मैं जरूर आपका सुप्रभात पहुँचा दूंगी। और हम अपने खेत में ही निवास करते हैं, इन्होंने लिखा है, और उसी खेत को बगिया बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने छायादार वृक्षों के साथ सब्जी वाले पौधे भी लगाए थे, जैसे तरोई, कड़ी, खीरा और भिंडी। इस साल भाई हमको भिंडी याद आ गई, ताज़ी ताज़ी
3: भिंडी,
4: कितनी अच्छी होती ना इस मौसम में भिंडी। तो इन्होंने भिंडी भी लगाई है, और पेड़ पौधों की निराई गुड़ाई करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। खेत सच में बगिया बन जाए और घर की ताजी सब्जी भी मिलेगी। खेत को हरा भरा रखना हमारा धर्म है, पेड़ और सब्जी दोनों से जीवन संवरता है, खेत को नहीं पूरी दुनिया को हरा भरा रखिए।
3: हाँ, और उसके अलावा संजय वर्मा जी ने मेल किया है, और आदरणीय अनुपमा एवं विनय जी नमस्ते लिखते हैं, और जानकीपुरम विस्तार से इन्होंने मेल किया है, राधे राधे, हम दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, और लिखते हैं कि हमारी छत पर सभी तरह के फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, तुलसी के 25 पेड़ लगे हुए हैं, और सब्जियां भी बो रखी हैं, और लौकी और तरोई का पेड़ लगा रखा है, और घर के बाहर भी बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। मैं जब छत पर जाता हूं तो पेड़ों को देखकर एक अलग एहसास होता है, मन करता है यहीं बैठा रहूं, मगर मेरे पड़ोसी कहते हैं इनको लगाने से क्या फायदा, लेकिन ऐसे
4: ये फायदा तो वही जानता है जिसने लगाया।
3: हाँ, आप जाते हैं तो मन आपका प्रफुल्लित हो जाता है,
4: आपका मन कितना प्रसन्न हो जाता है ऐसी चीजों के बीच में। और देखिए, महेंद्र दीपन जी ने हमको मैसेज किया है, राजस्थान के नागौर जिले से, नागौर जिले का एक छोटा सा गांव है रूण, जहाँ से इन्होंने बात लिखी है। ये

0: अपना अनुभव साझा कर रहे हैं विनय। लिखते हैं कि अक्सर लोग छत पर बागवानी करने की सलाह देते हैं, लेकिन मेरे पापा की जो सोच है ना वो थोड़ी सी अलग है।
1: अच्छा।
0: उनका कहना है कि जब मैं घर की छत पर कुछ उगाने की बात करता हूँ तो पापा कहते हैं, बेटा हमारे पास इतना बड़ा खेत खाली पड़ा है, जो भी फलदार या छायादार पेड़ लगाने वहाँ लगाओ, छत क्यों खराब करना है।
1: अरे तो खराब कहाँ करना है, उसमें तो खुशियाँ लानी है, खूबसूरती बढ़ानी है।
0: ये बात तो आपको अपने पापा को समझानी पड़ेगी कि जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो कोई जगह खराब नहीं होती है, बल्कि और खूबसूरत हो जाती है।
1: हाँ, जैसे इस टाइम पर, इस वक्त पर आप छत पर जाएंगे, अगर आपने चप्पल नहीं पहन रखे ना, स्लीपर नहीं पहन रखे, तो आप वहाँ पर एक मिनट तो दूर 30 सेकंड्स भी आप वहाँ पर नहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप पेड़ लगा कर देखिए, खूबसूरत पौधे लगा कर देखिए, फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है। आप खड़े भी हो सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और तमाम सारी चीजें।
0: एक मेल और पढ़ लेते हैं अजय सिंह जी का, क्या लिखते हैं
1: जी। और अजय सिंह जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग लखनऊ, आप आपको और हमें गुड मॉर्निंग करते हैं और पूछते हैं कैसे हैं। दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। और मुद्दे की बात ये लिखते हैं, यही कहूंगा कि मैं गांव से जुड़ा हूं और सीतापुर में रहता हूं, हर सप्ताह अपने गांव जाना होता है। पेड़ लगाने का इतना शौक है कि हर प्रकार की सब्जियां घर के बाहर स्पेशल गार्डन बना रखा है, हर प्रकार की सब्जियां और अमरूद, नींबू और चीकू लगा रखे हैं, इतने अच्छे फल आते हैं, देख कर बहुत अच्छा लगता है। और शामिल करने के लिए धन्यवाद बोले।
0: ये जो अच्छा लगने वाला जो फैक्टर और फीलिंग है ना, बस यही चाहिए।
1: हाँ।
0: लेकिन इस अच्छा लगने से अलग भी बहुत सी बातें हैं जो हम थोड़ी देर में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल कोशिश है थोड़ी देर में क्या, बस अब आप तक ट्रैफिक की अपडेट्स पहुंचाने की। सो सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल।

0: सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ।
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग लखनऊ। आप एंजॉय कर रहे हैं 9:51 का वक्त। आपके साथ हैं अनुपमा और विनय।
2: और हमारे साथ हैं विकास जी, जो रोज की तरह आज भी हमको ट्रैफिक से जुड़ी कोई खास जानकारी है तो पहुंचाएंगे हम तक। हेलो, आपकी आवाज, हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है विकास जी। हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
1: जी, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और हमें लग रहा है ये जो ना ट्रैफिक को बिल्कुल आराम से चला रहे हैं, इसी वजह से इनके जो है आवाज़, हमारी आवाज़ इन तक नहीं पहुंच पा रही है। खैर, एक ट्रैक आपका वेट कर रहा है और आप इंजॉय करिए, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जी जी
1: तो
0: जी
1: परीक्षा केंद्रों पर उधर ज्यादा परीक्षार्थी लोग ज्यादा है, तो इसके कारण से वहां पर ट्रैफिक प्रेशर है। तो
2: तो
1: ऐसे में
2: डाइवर्ट
1: अगर
2: हो,
1: हाँ ऐसे में
2: अल्टरनेटिव रास्ते
1: बदरी
2: हैं।
1: हाँ बदरियाबाग चौराहा वाला
2: जी
1: आप यूज कर सकते हैं
2: जी
1: जो रास्ता, और अगर आप शहीद पथ का यूज करें रास्ता तो ज्यादा आपके लिए उचित रहेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी बहुत
2: थैंक
0: बहुत
2: यू सो
0: धन्यवाद।
2: मच विकास जी, थैंक यू सो
1: जी
2: मच।
1: धन्यवाद।
2: और देखिए शहर की बात यही अच्छी होती है कि हम लोगों के पास ना बहुत सारे अल्टरनेट रास्ते हैं, तो उनसे जाइए, अपना समय बचाइए और दूसरों को प्रॉब्लम में हम ना डालें, यही बहुत अच्छी बात है।
0: जी।

0: ऐतार टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।
3: जी और देखिए लगातार शहर जो जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि खूबसूरत होता जा रहा है, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और अब महिला यात्रियों के लिए बाइक सेवा, ई बाइक सेवा जो शुरू की गई है, दैट इज माय दीदी ई बाइक सेवा।
4: क्या बात है,
3: इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है विनय, और महिलाओं द्वारा ही ये बाइक चलाई जाएंगी।
4: महिलाओं द्वारा ही चलाई जाएंगी, तो हम चाहते हैं कि आप ही इसको डिटेल में बताएं हमारे लिसनर्स को।
3: नहीं देखिए शुरुआत हो गई है इस चीज़ की और जो पहला चरण है उसमें यूनिवर्सिटी, आईटी कॉलेज, भूतनाथ और कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन से ये संचालित की जा रही है और इसका जो संचालन है ये यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शुरुआत की है। इसकी शहर के चार प्रमुख मेट्रो स्टेशन जो भीम ने आपको बताई इनमें की जा रही है और महिलाएं इन स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 15 रुपए प्रति यात्रा की सुविधा पा सकती है।
4: क्या बात है, और 13 जून तक निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे।
3: हाँ बिल्कुल, हम सोच रहे हैं आज ही चले जाएं।
4: बिल्कुल जा सकती है अगर आपके रूट पर हैं तो।
3: देखिए कंफर्ट की बात जहाँ तक होती है, महिलाएं थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकती हैं। इस तरह से जो भी ये सुविधाएं आपको दी गई हैं तो इनका लाभ उठाइए, शहर को और अपने आप को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाइए।
4: जी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि खासियत इसकी ये है कि उसे महिलाएं ही ड्राइव कर रही हैं तो आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं।
3: और इधर देखिए मनोज मौर्य जी का ईमेल आ गया है, क्या कहते हैं मनोज मौर्य जी?
4: मनोज मौर्य जी लिखते हैं सुप्रभात और मन बहुत प्रसन्न हो गया इनको आपको सुनकर।
3: मैंने लिखा है आपको देखकर बहुत प्रसन्न।
4: जी
3: चलिए अच्छी बात है, आप बस प्रसन्न रहिए, हम यही चाहते हैं।
4: हाँ और लिखते हैं कि आज छत पर बने बाग बगीचों की चर्चा सुनकर अपने गांव की याद आ गई। हमारे यहाँ घरों की छतों पर तो ऐसे बगीचे नहीं होते हैं लेकिन घर के आसपास और खेतों के किनारे अनार, केला, बेर, आम और जामुन जैसे अनेक पेड़ पौधे लगे हैं। गाँव की हरियाली और इन पेड़ों की छांव को अपने ही आनंद है जो मन को एक अलग ही सुकून देती है। मनोज कुमार मौर्य सीतापुर से इन्होंने मेल किया, बहुत बड़ा मेल है, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अच्छी बात कहने के लिए।
3: और एक मेल और आ गया है जिसकी हमको इंतजार रहता है, जिसका राम मोहन गुप्ता जी की जो कविता है वो आ गई है, लखीमपुर खीरी से इन्होंने लिखी है। हम पर्यावरण मित्र समूह के सक्रिय सदस्य सभी लगा ट्री गार्ड सहित पेड़ करते हैं औरों को जागृत भी। चाहत है हमारी यही सजे धरा होकर हरा भरा, हरे वृक्ष फूले फले, फल फूल आच्छादित हो वसुंधरा। खातिर इसके पर्यावरण प्रहरियों को खोज कर देते हैं हरियाली मित्र सम्मान हर गली और डगर। 2 वर्षों से ट्री गार्ड सहित पौधों को है लगाया, नियमित देखभाल रख रखाव कर इन्हें वृक्ष बनाया। पर्यावरण दिवस पर माँ के नाम कई पेड़ लगाए, संघ प्रशासन वन प्रभाग हरियाली हित कदम बढ़ाए।
4: क्या बात है राम मोहन गुप्ता जी, आपने पेड़ लगाए वो अच्छी बात है और पेड़ों को अपनी जो आवाज दी आपने वो बहुत अच्छा लगा सुनकर। और उसके अलावा राजकुमार राजकमल यादव जी ने मेल किया है और ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से ही हमसे जुड़े हैं और कैसे हैं पूछ रहे हैं। जी हम बहुत अच्छे हैं, आज का मुद्दा ये कहते हैं कि सभी को चाहिए जो जगह खाली है उस पे पेड़ अवश्य लगाएं। मैंने भी अपने छत पर लौकी, कद्दू, मिर्ची लगाई है और मेरी बेटी हिमांशी ने भी जो है गुलाब के फूल लगाए हुए हैं।
3: अगर शुरू से ही हम अपने बच्चों को ये सारी चीजें दिखाते रहेंगे ना तो उनकी आदत में शामिल हो जाएगा, उनको लगेगा कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और वो उसी चीज के साथ चल पड़ेंगे। ताले बंसारी जी का भी मैसेज पढ़ लेते हैं, राजा कटरा बाराबंकी से।
4: जी बिल्कुल।
3: हाँ ये लिखते हैं कि मेरी छत पर बहुत सारे पौधे लगे हैं, आज का टॉपिक शायद मेरे लिए खास है क्योंकि मेरी छत पे एलोवेरा, पुदीना, टोमेटो और बहुत सारे छुई मुई का भी पौधा लगा है, लोबिया, गोभी, तुरई। अरे वाह क्या बात है।
4: और इन्होंने जो फोटो भेजी है ना,
3: हाँ इन्होंने फोटो भी भेज दी है।
4: हाँ वो दिख रही है, वाकई में लगा रखा है और खूबसूरत लग रहे हैं।
3: बिल्कुल। तो चलिए आपका ये जो छत का बागीचा है।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: हैप्पी बर्थडे विनय. जिंदगी का हर दिन एक नया दिन होता है, एक नया जन्म होता है, तो हैप्पी बर्थडे.
1: मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि जब भी मैं, वैसे तो बता दूँ आपको कि बहुत एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर कि मैं आपके साथ बैठने जा रहा हूँ, प्रोग्राम करूँगा, और इसीलिए मैंने कहा ना पहले आप.
0: नहीं, हमको
1: शुरू में हमने कहते थे पहले आप.
0: देखिए, गाने की जहाँ तक बात आती है, मैं कभी इंतजार करती नहीं हूँ कि मुझसे कोई कहे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. ये एक ऐसा दिन होता है ना विनय, जब घर जो अपने अंदर का बच्चा होता है ना, वो अचानक से जाग उठता है.
1: हाँ, वो चाहे जितना बूढ़ा हो.
0: और हर चीज कितनी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल नजर आती है.
1: जी बिल्कुल.
0: तो चलिए, अगर आज आपका बर्थडे है तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं.
1: हाँ, और उसके अलावा हम बात करेंगे, बात आपको बताएंगे कि आज ही के दिन 1936 में डी रामा नायडू जी का जन्म हुआ था.
0: फिल्म निर्माता थे ये.
1: हाँ, फिल्म निर्माता थे. और ये जो है 1884 में शौक बहराइची जी का जन्म हुआ है. और 1955 यानी साल 1955 में
0: शौक बहराइची एक बहुत बड़े शायर थे जिनके बहुत सारे शेर हम लोगों के आम तौर की जो चीजें हैं ना बोलचाल में वो शामिल हो जाते हैं. अंजामे गुलिस्तां क्या होगा करके एक शेर था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो शौक बहराइची जी ने लिखा था. और इसके अलावा 1955 वेद प्रकाश शर्मा, जिनको हम थ्रिलर उपन्यासकार कहते हैं विनय. और हाँ, देखिए साहित्य की बहुत सारी चीजें हैं, इसमें एक लुगदी साहित्य भी होता है जो उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको पढ़ने वाला वर्ग बहुत बड़ा है.
1: जी, जी,
0: और उसी उपन्यास की, उसमें एक उपन्यासकार है वेद प्रकाश शर्मा जो बहुत बड़ा नाम है.
1: हाँ,
0: जिनके उपन्यासों पे फिल्म भी बनी है.
1: क्या बात है. और 1919 यानी 1919 में राजेंद्र कृष्ण जी का जन्म हुआ था. प्रसिद्ध गीतकार रहे हैं ये. और
0: एक गीत तो मैंने इनका सुनवा दिया था, पल पल दिल के पास. उसके अलावा बहुत खूबसूरत गाने हैं राजेंद्र कृष्ण जी के.
1: जी.
0: जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया.
1: क्या बात है.
0: चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है. या फिर किशोर कुमार का गाया हुआ मेरे महबूब कयामत होगी. छुप गया कोई रे दूर से पुकार के मेरे सामने वाली खिड़की में. एक लंबी फहरिस्त है.
1: हाँ, और वैसे भी आप जानते हैं ना कि जब ये बातें हम आप अपने लिसनर से शेयर करते हैं, बताते हैं, जैसे आपने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स की लिस्ट बताई, गा के सुनाया, तो वहाँ भी अच्छा लग रहा होगा और ये हमारी जानकारी में ऐड हो जाता है.
0: प्ले करने से अच्छा था कि मैं जल्दी जल्दी गा देती.
1: बिल्कुल सही बात है. और
0: अब उसका जिक्र करेंगे जिसके लिए मैं बहुत देर से वेट भी कर रही थी.
1: बहुत शिद्दत से आप इंतजार कर रही थी. और वो नाम है सुनील दत्त साहब का.
0: 1930 में पैदाइश हुई सुनील दत्त के, जिनका एक्चुअल नाम था बलराज रघुनाथ दत्त.
1: और अनुपमा जी, मुझे लगता है कि वैसे तो हम कहते हैं ना कि बॉलीवुड और फिल्में हम देखने जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड की दशा और दिशा अगर देखी जाए जो तय करते हैं लोग, इनमें इनका योगदान बहुत
0: बड़ा रहता है.
1: जी.
0: सुनील दत्त जी का नाम बलराज रघुनाथ दत्त था और इन्होंने अपना नाम इसलिए बदला क्योंकि जिस दौर में इन्होंने फिल्मों में प्रवेश लिया उस वक्त बलराज साहनी बहुत उरूज पे थे.
1: हाँ.
0: है ना, तो इनको लगा कि नाम एक सा हो जाएगा तो इन्होंने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया.
1: और बहुत अच्छा रखा इन्होंने नाम. और ये नाम आज तक हम सभी के दिलों पर राज कर रहा है.
0: बिल्कुल. शुरुआती दौर में इन्होंने कुछ वक्त लखनऊ में भी बिताया और अख्तर नाम से बिताया. अमीनाबाद में रहते थे एक गली के अंदर. तो इसलिए भी हमारे लिए सुनील दत्त का नाम बहुत बड़ा हो जाता है.
1: जी जी जी. और उसके अलावा बात करें तो रेडियो सैलून में भी अनाउंसर के तौर पर करियर की शुरुआत की और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे.
0: मुंबई परिवहन सेवा में बस डिपो में चेकिंग क्लर्क के रूप में भी काम किया. और रेडियो सिलोन की जहां तक बात है, नरगिस से इनकी मुलाकात वहीं पर हुई और उसके बाद जिसके ये बहुत बड़े फैन थे उसका इंटरव्यू लेने में इतना घबराए थे. लेकिन फिर उन्हीं को अपना जीवन साथी बनाया. शुरुआत करी 1955 से रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म के जरिए.
1: हाँ.
0: लेकिन जो बड़ी पहली हिट थी वो
1: मदर इंडिया थी जो कि 1957 यानी साल 1957 में आया. और उसके बाद वक्त, मिलन, अमराज और कुछ ऐसी फिल्में जो आप कहती हैं कि बहुत अच्छी, मैं चाहता हूँ कि आप उनको बताएं.
0: मुझे तो गुमराह बहुत पसंद है. सुजाता अपने आप में एक अलग तरह की कृति है. पड़ोसन हम सबकी बहुत फेवरेट है.
1: और आज के दौर की बात करें, ये तो पुराने फिल्में थी कि हाँ चलो ठीक है, कहते हैं कि नहीं हमने सुनील दत्त की फिल्में देखी, गाने देख लिए तो पता चल गया कि ये सुनील दत्त हैं. लेकिन आज के दौर के जो लोग हैं वो मुन्ना भाई MBBS देखकर उन्हें

0: पता चल गया होगा कि सुनील दत्त का नाम इतना बड़ा क्यों है।
1: बिल्कुल, तो आज आप सबको जिनके जिनके बर्थडेज हैं, जिनकी एनिवर्सरीज हैं, आप सभी को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी के साथ मनाइए आज का दिन। और मुन्ना भाई MBBS का ये गाना भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर
0: जी।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्यघर।
0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: 9:52 का समय यानी कि गुड मॉर्निंग लखनऊ का जो सफर है वो बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर।
7: जी बिल्कुल, और अंतिम पड़ाव के समय पर आप क्या मेल्स हम देख रही हैं?
6: हाँ, मैं एक दो मेल्स और पढ़ना चाहूंगी।
7: जी बिल्कुल।
6: दुनिया को बचाने के लिए एक पेड़ लगाओ, धरती को बचाने के लिए एक पेड़ लगाओ। पेड़ आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं, हवा को साफ करके उसे स्वच्छ बनाते हैं। पेड़ हमें सूरज की तेज किरणों से बचाते हैं, जमीन को ठंडा करते हैं, रास्तों को भी ठंडा रखते हैं। ये लिखना है गीता सेठ जी का।
7: हाँ, और उसके अलावा सोनू परवाना जी ने मेल किया है और हम दोनों लोगों को नमस्ते किया है और लिखते हैं, हमारे द्वार पर कई नीम के पेड़ हैं और घर की बात करूं तो तुलसी का पौधा और लौकी की तुरई और फूल से भी घर गार्डन जैसा बन जाता है।
6: रसगुल्ला लगाया कभी पेड़ आपने छत पे?
7: रसगुल्ला नहीं।
6: अच्छा, घनश्याम सिंह जी हैं, इन्होंने अपने छत पर रसगुल्ला यानी रसभरी का पौधा लगाया है और रोज सब पौधन में पानी जरूर संचित करे थे। जब जब देखे था सब तरफ हरा भरा लागे थे तो खुशी होता है।
7: क्या बात है।
6: अच्छा, और इनको जो हमने गाना गाया अपनी आवाज में बहुत नीक लग लग।
7: अच्छा,
6: ये ये ये जो अवधिम लिखा है इन्होंने,
7: फीवर चढ़ रहा है अगले प्रोग्राम का इनको।
6: हाँ जी, अगले प्रोग्राम में जो अवधि की जो बातें आप तक पहुंचेंगी, बहुत खूबसूरत आवाजें होंगी आपके साथ, हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती।
7: हाँ, और एक चीज और कहना चाहेंगे घनश्याम जी से कि आपने रसगुल्ले का पेड़ तो लगाया है लेकिन जलेबी का पेड़ भी अगर हो।
6: हाँ,
7: तो
6: जंगल जलेबी।
7: वही तो मैं कहने वाला था इनसे।
6: तो भाई, हमने आज आपसे बात करी कि किस तरीके से आप अपने घर की छतों को हरियाला बनाकर, हरा भरा बनाकर और भी खूबसूरत बना सकते हैं। अब छतों के साथ साथ अपना जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचाव में योगदान कर सकते हैं।
7: हाँ।
6: क्यों मनाते हैं आज का दिन या क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके, ये जान लेते हैं।
7: फायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। पहला तो यही है कि ग्रीन रूफ के फायदे हैं, बारिश के पानी को आप स्टोर कर सकते हैं और बारिश के पानी को फिल्टर

0: सकते हैं, और सबसे जरूरी यह है कि ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रह सकता है।
1: क्या बात है, बहुत
0: और शुद्ध हवा, उससे ज्यादा तो अच्छी चीज हो ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल,
0: आप रहेंगे वहां पर और आपके पेड़ होंगे तो आपको जो है ना शुद्ध हवा मिलेगी।
1: और देखिए, जब सबसे ऊपर का जो कमरा होता है ना, जिसके ऊपर कुछ नहीं बना होता है, वो कमरा गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। अगर उसके ऊपर हरियाली है या पेड़ पौधे रखे हैं तो थोड़ा सा वहाँ का तापमान भी बेहतर हो सकता है उस कमरे का।
0: अगर आपके छत पर हरे पौधे हैं, जैसे अभी तरोई और लौकी सब बताए थे इन लोगों ने, तो आप 50% जो सूर्य का तापमान है ना, उसको ये जो पौधे हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं।
1: और साथ ही साथ हवा तो शुद्ध रहती है, जो सबसे बड़ी चीज है आजकल के समय में।
0: और हाँ, उसके अलावा जानते हैं एक बहुत बड़ा फायदा जो हमारे लिस्टनर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ। वैसे तो है कि जो साउंड बैरियर इधर उधर की आवाजें आती हैं वो परेशान नहीं करती, लेकिन अगर आपके पड़ोसी रोज ठन ठन ठन आवाज करते हैं, आप बहुत परेशान होते हैं, क्या बताएं, जब भी बैठो खाना खाने तो ये जब है शुरू हो जाते हैं, तो वो जो है ना उससे भी आप बच सकते हैं।
1: बहुत होता है बगल में एकदम, जब कब ड्रिलिंग करनी शुरू हो जाती है और हथौड़ी ठोकनी शुरू हो जाती है पड़ोसियों के साथ, जब कोई नया आता है अपने घर में, नए एडजस्टमेंट्स करता है, तो ये सब चीजें बहुत होती हैं।
0: और एंटी फायर, आग प्रतिरोधी, अगर आप छत पर आपके छोटे छोटे पौधे हैं तो आग का खतरा बहुत कम हो जाता है।
1: बहुत सारे फायदे हैं छत पर हरियाली रखने की, सजाने की, संवारने की, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को भी बताइए, अपने बुजुर्गों से जानिए कि क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। और फिलहाल इस कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त, विनय आपके साथ रहेंगे और साथ होंगी एक मेहमान, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खिलखिलाती मुस्कुराती, है ना?
0: हाँ जी।
1: तो हम चलते हैं यहाँ से, मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और समय, सुनते रहिए रेनबो, क्योंकि लगातार एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है। नमस्कार एंड टेक केयर।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं गोंडा के विकास को एक नई दिशा देंगी और जनसुविधाओं का विस्तार करेंगी। उन्होंने कहा कि नई विकास परियोजनाएं गोंडा की प्रगति और समृद्धि के संकल्प को अधिक सशक्त बनाएंगी। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से काफी प्रभावित हुए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संयुक्त सचिव डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं रूबरू कराना है, ताकि वे भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी वैश्विक प्रासंगिकता को समझ सके। पटना से कोटा को जाने वाली पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव अब जौनपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर भी होगा। प्रदेश के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इन ट्रेनों के जौनपुर सिटी स्टेशन पर ठहराव करने का आग्रह किया था, जिसके बाद रेल मंत्री ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। चंदौली के शहाबगंज विकासखंड के मसूई गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों ने चौपाल लगाई। चौपाल में स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान, समर्थ भारत और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम वृहद वृक्षारोपण अभियान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। चौपाल में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों की मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक प्रयोग, जैविक और प्राकृतिक खेती और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रवक्ता संवर के 624 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 15 जून से 27 जून तक विषयवार आयोजित किए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपने साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: 10:05 का समय हो चुका है और ये समय कह रहा है कि हमारे साथे कोई आगवा है और कार्यक्रम शुरू हो चुका है सुगंध माटी की और हम आपके साथ हैं ना, आपके दोस्त, आपके भैया विनय यादव और हमारे साथे हैं हमारी
1: भौजी आई हैं।
0: गुलमती भौजी आ गई हैं और देखो भौजी एक बात बताई,
1: बताओ
0: तुम आउती हो, हमका पता चला कि तुम आ रहे हो, हमका बड़ी खुशी भव है।
1: हमको खुशी तुम बैठे वही से तुमका देख के हमारे जीव जुड़ाएगा एकदम।
0: जीव जुड़ाएगा ठीक है, लेकिन तुम मान जाओ ना फंदे आते चली आउती रहो।
1: अरे दादा याद देखाओ अति घाम हुई रही कि हम तुमका का बताए। अब सब जने यूं कहिए कि कौनो नई बात बताओ, काम तो ये रही है। अब जेठ का महीना घाम ना हुई तो का हुई है ना। अब जेठ का महीना कहे थे कि जौन जेठ जेठानी से जौन पर्दा ना हो करते हैं बहुत ओढ़ी ओढ़ी के मूड़ी ऐसी वैसी घुमा करती है।
0: का
1: करी भैया, जेठ की दोपहरी ऐसी तपती होती है कि भैया अपन बचाव करके धरे हो। तुम बतियाए लागे यूं नहीं कौन बसाता खिला पानी।
0: अरे तुम आयो तो तुरंत, हम तो कहीं कुर्सी बैठो, तुम मेज पर चढ़ी जाती हो तो तुमका जल्दी रहती है तो हम कहा बैठो भौजी।
1: हम कहीं तनी मूड़ी जो है एकदम पंखे के आगे धरे ले हवा तो खाई, तनी सांस तो आई हमारे कैसे।
0: अरे नहीं भौजी देखो क्षमा चाहिए, हम तुम्हारे खातिर ठंडा ठंडा पानी शरबत और सारी व्यवस्था करी, तब तक जो है यार गौनाई सुनाई दी।
1: पानी दे दी हमका।
0: अरे नहीं पानी पियो मारी गुस्सा तू, तुम कहा है दादा
1: बसाता धरे हो।
0: अरे बसाता के लड्डू पे
1: ला ला ला
0: भैया ला फो तुम हो जाऊं है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: शहर आपका, धुन आपकी।

0: अरे दादा, अब जाके सांस मसांस आई, तनिक पानी पिए ठंडाए, अब बस आता बहुत बढ़िया खिलाए भैया। तुम
1: बस आता नहीं कर रहा है,
0: बहुत बढ़िया रहा।
1: हाँ, मुझे मारे लग
0: जा। सुनो सुनो, एक दुई है फालतू ता दई दे, हम बांध ले जाए।
1: नहीं भौजी, फालतू वाली बात नहीं। देखो भाई, ने तुम बता सका हो, अबे तुम का हम पेड़ा वेड़ा बालिक बटाई बाकायदा हो
0: अत्ता में मीठा ना खराई दे हम। अच्छा मुला, हम बांध ले जा।
1: अरे हम ओक तो गांव में आवे खै, तुम ही आए हो तो हम मांग रहे हो, तब न देखो हम तुमका दे ना। और हम ओक तो आवे, हम आईबे तो हम ओक तो कुछ खवाइयो पे
0: हम खवाओ देखाओ। हम तुमका बताई, हमरे घरे आई है तो का लई के ही हो,
1: तुम बताओ जोन बताओ।
0: नहीं नहीं, अब अवैन सुनो तो आगे। हमरे घरे आई हो तो का लेके आई हो, और तुमरे घरे हम जाइबे तो हमका का खिलाइयो।
1: बात तो सही है।
0: हाँ, ना बाबा, खाए पिए की बात किए रहो, एकदम मस्त रहे। जानी आज हम एकदम थकाए गए रहे, का बताई अपने साधन ते वन ते निकली न, हत्ता टेम लगेगा, हत्ती काम रहे। और जानियो, हम सोचे न रास्ता में बैठ के तनिक सांस ले ले, सहता ले, मुला एक को पेड़ की छाया हमका ना मिली की कहीं हम बैठ ले।
1: बाबूजी देखो, यह जो समस्या है ना, यह बढ़त जा रहे।
0: नहीं देखो, समस्या तो बढ़ी जा रही, मुझे समाधान तो ढूंढने पड़ी है।
1: समाधान हो ही तुम का करे, तुम तो कहे थे ना बिरवा जाए तो लगाए।
0: अरे सब जने मिल के देखो, बिरवा तो लगाए लियो, मुला की देखभाल करो, बकरी न चर जाए, गौई न खाए जाए, तने इनका बचा। भाई जिस बच्चा होते छोटा, नानी नानी सहारा दिया जाते, उंगरी पकड़ी के चलावा जाते जब तक चले ना लगे, वैसन बिरवा होती है। देखो भालो, पानी डालो, खाद पानी देओ, बचाए के धराओ बकरी गैया से, अच्छा निकली जाए चार पांच फीट ऊपर चला जाए, सयान हो जाए जाने बिरवा तो जाने ले लाए ला।
1: अच्छा पहुंची एक बात, हम जब तुम बता रही हो ना, तुमरे एक बात समझे मावा था
0: का?
1: आज तुम जो न है मारी अघा गई है घामे मैया, तो उन्हें मारे जो है हमका
0: नाए, नाए, नाए, नाए, अघा
1: आ गई तुम।
0: अरे तो बात ये है, जौन निकरे ई मौसम में जाने हो एकदम पस्त हो जाए।
1: अरे पसीना हो जाए
0: तो एके एके तरीका यू के घर से देखो, सत्तू तू खाए के निकलो, पानी पी के निकलो, भाचक के, और पानी की बोतल साथ में धरे रहो। और दूसरी चीज जाने का है, खरबूजा है, तरबूज है, खीरा ककड़ी है, इन जो पानी वाले जो चीज होते है उनका भर पेट खाओ।
1: हाँ,
0: शरीर में पानी बने रहे। और चाहे सब्जी हो खाओ तो लौकी तुरई, ये सब जो है पानी वाली सब्जी होती है ना, हल्की होते हैं, जल्दी हजम हो जाते हैं। और इसका गरू खाना ज्यादा ना खाओ भैया। अरे ना नहीं, कचौड़ी पकौड़ी से तो दूरी बनाए रखो।
1: देखो वैसे खाली बस।
0: अरे अभी बरसात आई है, बरखा बरता पकौड़ी तले भैया।
1: अच्छा भाजी एक बात है ना, अगर मान लो कचौड़ी बन नहीं घर में, तो अगर मन ललचाए तो का की?
0: अरे तो इक्के दुई खाओ, ज्यादा ना
1: देखो बात होता है ना कि एक पेड़ अपनी अम्मा के नाम जरूर लगाओ, जैसे कोनो बहाना होगा मान लो।
0: अरे अम्मा के नाम लगाओ, बापा के नाम लगाओ, भौजी के नाम लगाओ।

0: राम लाजरू
1: भौतिक नाम लगाओ, फूफुक नाम लगाओ, हाँ कह दो वही नाम लिखो वही मैया या जो है पर्चा टांग दियो।
0: हाँ।
1: और जब बहू जी फूफू चाचा आई है देखी, अरे अरे गजब,
0: अरे जाने अरे जन 10-12 साल हुई जाए और फरे लागे और बच्चे लड़िकन देखे तो कहने अरे चाचा का नाम लिखा है, अरे ये तो नानी रहा है, नानी का नाम,
1: नानी का नाम लिखा, नानी
0: और नानी का पेड़ हुई जाए हुई।
1: हाँ नानी का पेड़ हो जाए, सबको कही जाओ नानी के पेड़ से अंबिया चूल लाओ
0: चाचा के अमरूद ले आओ,
1: चाचा के अमरूद ले आओ, नानी खुश।
0: ना ना बात देखो एकदम गंभीर मुद्दा है, सब जने के कही तो खूब भिरवा लगाओ, चाहे फल के लगाओ चाहे फूल के लगाओ, हरियाली रहे मुला, हरियाली रहे, वो के नीचे गौआ बैठी है, बकरी बैठी है, इंसान बैठा है, मुला कही थक जाए तो दुई बूंद आराम तो कर ले।
1: आओ का आओ, ना ही देखो जैसे संजा हुई गए और मार तो तुम्हारा घर का पंखा नहीं चल रहा, वो गरम गरम हवा फेंक रहा, तो बढ़िया खटिया डारो चाहे बैठो
0: जौन भगवान जी के पंखा चले बाहर, तब बिरवा हो तभी तो चलिए।
1: हाँ और जब देखो घर में गर्मी हो, मान लो छतपरी है आए, गर्मी हो रही कसी के और सास बहुत तुनुक तुनुक हुई गए,
0: दादा रे अरे दादा रे,
1: तो वही गर्मी में मार हुईगा, कबड्डी मच गए, तो वह बाहर लड़ो है मतलब ना को देखो घर में जो है सास बहुरिया जो है नंद भौजाई जो है ये जाने कहाँ लड़ती तो हो जाते हैं।
0: देखो देखो देखो इमा मजाक ना करे, हम कहे दुई बर्तन हुई है तो खटके करो
1: है
0: ना, खटके तो करिए
1: सही है,
0: बोला की खटकन जोर ना हो धीरे धीरे खटकाओ
1: है तो कान दुआरे आओ बेरवा के नीचे आराम से लड़के तब चाहे चाहे जइयो तो तिलिक देर तक का
0: खटिया बिछाए के आराम से
1: बात पूरी हो जाए, नहीं गर्मी हुई सास थोड़ी बात कही है तिनुक बात कही नहीं भाग जी बाहर, बहुरिया तिनुक बात कही अपन दूसरा काम करे लगी, तो जब बात शुरू हो जाए आग दफा
0: भैया बेल का शरबत ही मालूम बहुत बढ़िया होती है, एकदम नीक ठंडाए देती है,
1: तो भौजी वही बीच में बेल शरबत हो बहुरिया बना लावे सास पिए फिर थोड़ी दिवस शुरू हो जाए
0: शुरू
1: ना शुरू हुआ भैया लेकिन यार दौला ही सुन लीजिए।
0: हाँ।

0: हाँ तो भैया लोगे 10:22 और 25 सेकंड का समय हो चुका है। आप हो सुगंध माटी के मैया और हम आपके साथ हैं आपके भैया विनय और हमारे साथ हैं हमारी भौजी आ गई हैं बिल्कुल अब जो है शांत भाई हैं। मार गुस्सानी जाती है कहीं पानी नहीं लाओ हमका हमारी हम परेशान हो गए ना
1: और का करी अति गर्मी है तो परेशान ना हो।
0: हाँ नहीं ठीक भौजी तो है तुम बता दी नो यही देखो भौजी एक बात और है इसे तो हमारी भौजी आओ अब तुम ही बताइयो तब वही तो जाना वो
1: अच्छा
0: हाँ को घर में आवे तो वही का पहले स्वागत सत्कार किया तब देखो हम नान सरे हन लड़का हन छोट सरे तुम बताओ
1: नन्ना मुन्ना सीधा बालक बड़े हैं जत्ते जमीन के ऊपर वत्ते जमीन के नीचे तुम काम बहुत जाने थे
0: नहीं अब बताओ तो अब आगे तने आइयो तो पहले दुअरे धर दे आवे हम जलेबी जो हम का पंचन का सुनते हमारे भैया लोग मारे आतो रहते हैं खटपटाट खटपट खटखट
1: मोबलिया खाते कर अरे जाने सिर दर्द होगा हमका ये देखो ये है तो बहुत बढ़िया सुविधा बोला बस काम भरे की होए है ना इससे ज्यादा जब हो जाते अब लरिकन बच्चन का हम देखी नहीं अम्मा खवावा करते हैं वही मोबलिया से आंखों नहीं हटाती है मोबलिया हाथ अरे नान नान बच्चा डेढ़ दो दो साल के अरे दादा वही का चंदा तारा दिखाओ चिरैया दिखाओ गैया दिखाओ अब बात करते करते वही का जन खवाए दियो
0: नहीं कही है कि अम्मा यो रो रहा कहीं अम्मो देखो अम्मा जो है अब जानकार हो गई
1: है
0: अगर बहुरिया कहीं अम्मा रो रहा नहीं तो अगर जो है बिटिया अपने घर गवा है तो कहीं अम्मा देखो मान नहीं रहा यो रो रहा अरे अम्मा कहीं है हम कहाँ लेके जाए तो तुम फोन कहा नहीं दिखा देती हो
1: अरे दादा
0: बिटिया तो ठीक ठाक अम्मो जनती है कि
1: गलत बहुत गलत बात है भैया बच्चन का फोन इतने दूर रखो खिलौना थोड़े आए जब हाथ में पकड़ाए दियो मुलक पकड़ाएगा तो कछु खिलौना पकड़ाए कछु खेले कूदे कछु सीख है कछु तोड़े फोड़े अब मोबाइल कौनो अरे ये कौनो खेले की चीज है
0: ओ भौजी देखो पहले का होत रहे कि जब अपने नाना कुआं मौसी कुआं मामा कुआं जब लड़का बच्चा जात रहा है तो सुबेरे कहूँ गुल्ली डंडा खेल ले हैं कहूँ सियर सटकना खेल ले हैं और नहरिया छोटी छोटी तलवा है नहरिया उमा नहा दिन भर ऐसी वैसी
1: हम जानिए हम का अपना बचपना याद आएगा जानिए हम गुड़िया गुड्डा के बियाह करत रहे

0: तुम हो भौजी बचपन में रहो का
1: लिया कौन हम बूढ़ पैदा भए
0: अरे हम तो तुमका भौजी ही देखा तो हम जा रहे हम कहीं थे उनके पे हम छोड़ कर रहे
1: हैं इस बात ना किया करो हम कम नान नान छोटी छोटी
0: हम तो तुमका भौजी जाने थे कि भौजी आए हम का का जाने तरह तुम
1: नानी औरे जात रहे जब बचपन में हमरी माई रहे अब माई के नया नया ब्याह भवा रहे अब माई खाली दिन दोपहर में सप्तारी तो हम कहें गुड्डा गुड़िया का ब्याह करे वही कपड़ा जोड़ जोड़ गुड़िया बनावे हमका गुड़िया बनाए के दे फिर दिन में थोड़ी छोटी छोटी छोटी पूड़ी बनाए दे आलू सूखा बनाए दे हम बारात लेके नीते से छते पे चढ़ी जाए हम कहीं बारात जा रही अब बारात डम डम डम डम कहू भगोना पीटे कहू थाली पीटे और वहीं ढोलक बजे अब वहीं नाचे गए अब टन टन टन टन करे नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे बारात आएगी अब बैठ जाए हम सब जी में अब हम मामी जो रहे ना पूरी सब्जी खवाए कहीं लिया बारात आ गए बारात आ गए बारात का स्वागत हुई अब पूरी आलू खा पूरी यह हमारे खाना खवाए दे रहे
0: लुटिया मारी पीट डरती रहो उबू अच्छा याक बात बताओ जैसे तुम गुड़िया गुड्डक बिहाव करती रहो पूरी सब्जी बरौती रहा है तो माई तुम्हारी जो है अब पूरा नहीं रहा है माई ना पुराने में जब गयु तो ऐसा नहीं कि हाँ जब यह आ जावती है बोलमती तो हम का दिन भर कहा नहीं खाने बनाओ मायू कान पकड़ी बाहर खेद आवती
1: है तो हम हाथ बटाई थी हम जाए कि तुरंत चूल्हे पे चाय चढ़ा दे माई तुम बैठो आज हम तुमका चाय पियाओ
0: देखो हो क्या है चाहिए ना कि जैसे मान लो तमाम भांजी भांजा है छह सात आठ होते कोको
1: होते हैं सब पहुंचा थे
0: अगर सब जने जावत हो भैया तो काम का साथ देखे चाहिए काम करा लेके मिल जुल के ऐसा ना हो कि माही खोपड़ी पूरी कटोरी धर दो माई दब जाए
1: बिल्कुल
0: माई गरी तो रहे
1: एक घर में छुट्टी जा अगले को पूछे ना
0: और कहे अगर को मांग लियो बार बार तो कहे कि हाँ तुम तो यही महीना भर आवे खाते ना जो है जो
1: महीना टिको भी ना भैया मिलजुल के काम करो सब जने खाओ पियो एक बेरिया कोई बनाए एक बेरिया कोई बनाए
0: ओ जानो भौजी करी है काम आई फिर
1: का करी है
0: नून बढ़ा दे दाल सब जिम खाओ
1: मरचाई
0: हाँ सबेरे अगर जो है चाय बनाई है तो मैं चाहे ना डरी है लियो दूध पानी और चीनी पी लियो
1: देखो माई के रिश्ता होते मजाक के माई करो सकती
0: है मारे हम कह रहे ना कोनो लड़ाई मार थोड़ी ना है
1: सही बात है
0: तो देखो बात यह है भौजी हमारी कहा चाहती है सबते कि भाई जो लड़का बच्चा है इस समय जो अपने ननिहाल गए हैं या मौसी बुआ खुआ गए हैं सब जिन्हें खेल कूदे खातिन गए हो अपने मन के यहाँ नीक करे खातिन गए हो तो वह काम करो ना फोन
1: अरे भाई फोन देखो बाग बगीचा में खेलो पेड़ों पे चढ़ जाओ कहूँ आ मम्मिया देख लियो ये सब देखो ये सब शहरन में मिलत ना है कम बहुत कम मिलते हाँ। मोबाइल छोड़ो मोबाइल से दूर रहो मोबाइल कोनो बढ़िया चीज नहीं भाई फोन आवे बात करो पढ़ाई लिखाई आजकल मोबाइल पे हो लागे तो चलो उत्तय कर लो लेकिन जो दूरी है वो बनाए के रखो ये हम तुमका बता दिए कौन अच्छी लत ना है बहुत बुरी आदत है
0: तो भौजी एक गवनाई सुन ली
1: सुनाओ
0: हाँ देखो तमाम भैया लोग जो है हमसे जुड़ रहे हैं और सबसे हम यह कहे भाई FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com या है देखो
1: ये तुम्हारा वही है हम समझ गए
0: सर बालक परत है तो हो जावत है
1: यू हमका एक सवाल हमरे मन में हर बारी आवत
0: बताओ,
1: है यू जो तुमरी मेल ही आवत है जोन ये मेल है यू मेल है कि यू फीमेल है
0: क्या बात तो तुम बहुत गजब की
1: कह हर बार हम सोचे थे हम जान ना पाए थे तुम बोला आया तो मेल आई तो फीमेल
0: हाँ वह बात है देखो इमा बहुत जने आया है और बहुत जने आई है तो जो कोई आया है वे मेल है और जो कोई आई है वे फीमेल
1: और सब भेजन मेल ही
0: है वारी भौजी वारी भौजी तुम जो ना है ना हमका मालूम रहा है तुम आई हो तो का बताई हम हाँ लियो अच्छा गौ नहीं सुनो

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
7: शहर आपका, धुन आपकी, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: भैया लोग 10:35:15 का समय हो गवा है और भौजी हमारी माँ जो है तनतना रही है, संदेश बहुत सारे आगे मेलों में आगे हैं, फिवेलों में आगे हैं भौजी। हाँ तुम बात बहुत जो ना बहुत जुगाड़ की बात क्यों यही मारे, हम कहते हैं भौजी पटाओ तो बात बताओ है हमका।
1: हाँ देखो हम पहले हम तुमका मेल बता दें।
0: यू है
1: विनय विजयपाल यादव बबलू यादव इनका समस्त परिवार सब जने मिलके सुन रहे हैं प्रोग्राम और कह रहे हैं कार्यक्रम बहुत मस्त लग रहा है, नोक झोंक जो है बहुत अच्छी लग रही है।
0: अच्छा
1: है ना, तो सादर पांच भैया खुश रहो, नीचे रहो भैया बने रहो और
0: इसे
1: कार्यक्रम सुनत रहो और खुश रहो मस्त रहो परिवार के साथ है,
0: हाँ।
1: है ना। और यू देखो यू है यू कौन ईमेल को भेजी से
0: रोशनी रावत यू कहने राम राम
1: विनय भैया फूलमती भौजी आप दोनों कैसन हो, कार्यक्रम बहुत लाजवाब बिंदास कमाल लग रहा है। तो हमका भी देखो बहुत मजा आवती है जब तुम सबसे मिलती है बात करती है, तो आपका सुगंध माटी का प्रोग्राम सुपर से भी ऊपर गजब। और जानियो ये जो है प्रोग्राम चंडीगढ़ से सुन रही है,
0: चंडीगढ़ में बैठी
1: ठंडी हवा खा रही है, मौसम बढ़िया होते चंडीगढ़
0: का मौसम तो नीक लागत
1: है, बहुत सुंदर शहर है। हम देखे नहीं किया,
0: हम गयो तुम कहां कहां गयो हमका यो बताओ।
1: हम बहुत घूमे ने, हमरे पांव में सनीचर है,
0: चंडीगढ़ से लेके आकाशवाणी तक का तुम दौरा करती
1: सब, सब, सब,
0: सनीचर है सनीचर।
1: हाँ वैसे तो यू रही थे सफीपुर जिला उन्नाव में,
0: हाँ।
1: प्रोग्राम आज सुन रहे हैं चंडीगढ़
0: से,
1: यू इनके साथ है बबीता राव नीलू दीदी गुलबशा सिद्दीकी सब सुन रहे ने और कह रहे नाच कूद रहे भैया नाचा कूद भैया। अरे हमका बहुत नीक लागत जब सब जने मिल के जो है, और यू आए मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे
0: प्रोग्राम नहीं चढ़ा तेलंगाना हो भैया मोहम्मद आसिफ भैया अंसारी भैया जब हमारी भौजी आवा है वहाँ हैदराबाद तेलंगाना, तो पहले तेने जलेबी पेड़ा और बसाता
1: हाँ
0: धर रखियो।
1: कह रहे ने तुम्हारी बात सुनी कि हमका अपन गांव याद आएगा,
0: हाँ
1: है तो सुगंध है माटी की जन माटी की याद दिलाए देते। अब भैया यू है टाइगर शर्मा शैलेश कुमार ये कह रहे हैं भौजी हमरे घर आओ मालपुआ खिलाएंगे
0: ले
1: भैया।
0: अब अतनो सनीचर भौजी के लाए चढ़ा पाए
1: भैया
0: भैया देखो बैठे हो दौड़ते बाद दौड़ लिए
1: का बिल्कुल मालपुआ का स्वाद आएगा
0: मालपुआ। देखो अब की जब भौजी आई है तो भाई पठाए दे हो टाइगर शर्मा भाई
1: याद देखो हमारी बात सुन रही कह रहे हम पेड़ लगाएंगे FM रेनबो प्रसार भारती लखनऊ के नाम से।
0: क्या बात है नाम
1: बहुत बढ़िया। और भैया काहे के पेड़ लगायो यू हमका जरूर बतायो, अमरूद लगायो कि आम लगायो का लगायो हम आओ हम अमरूद खाए जरूर आओ।
0: क्या बात है और लेकिन अब ना दोपहरी हम ना जाओ मालपुआ इनके तो बना धल्लीनो मालपुआ बना धल्लीनो जब आईबे तो आपकी आई है तो बताइए।
1: और इनके साथ जानियो सारा पीहू रोशनी बबीता स्नेहा सोनी मनु वंदना कौशल पूर्णिमा जी सब जनी कार्यक्रम सुन रही है।
0: नमस्ते कह रही सबका कि नमस्ते बोल दे रहे हो।
1: नमस्ते
0: देखो तेज बहादुर भैया हमका पंजन मेल आयो फीमेल ना है
1: यू मेल है नाम ते हम जानिए
0: भैया का राम राम बड़की भौजी फूलमती जी जी कहिया जो है सादर
1: चरण भैया खुश रहो खुश रहो भैया
0: हां खुश रहो मुंह मीठा करत रहो जलेबी लेबी खावत रहो लेकिन आप दो जने ने आज तो कुछ अलग अंदाज में कार्यक्रम हो रहा है ठीक है बड़की भौजी के बहुत प्यास लाग रहा है देखो सब जने कह रहे हैं कि बतासा तासा खवाया नहीं हमते शिकायत कह रहे हैं भौजी।
1: हां कह रहे हैं जेठ के घाम बहुत ते भैया जेठ के तो घाम होवे कराती है
0: ये जो है
1: यही के बाद बरखा रानी आई है जब सावन भादो में तब जाकर नीक लागी भैया।
0: और इनके साथ है रोनित और वानिका इनके लड़का है और गांव मऊ सरकी रायबरेली ते नहीं हमरे साथ जुड़े हैं और कही यहू देखो गुरु गांव हरियाणा में यहाँ बैठी है भौजी
1: को
0: यही तेज बहादुर यादव और का
1: अरे दादा रे दादा ये सब जने मायका ससुराल कर रहे छुट्टी है सबके कौनो मायका गांव कौनो ससुराल गांव
0: मैं गयो का
1: कहां
0: हरियाणा
1: मन ना गए ना।
0: अरे चंडीगढ़ गयो खाली चंडीगढ़ गयो तो भाई मतने हम खाली कह दियो हमरे पांव से नीचे रहना है तेलंगाना गयो ना हरियाणा गयो
1: तो ना गए ना का कह झूठ बोल दी तुम का
0: नहीं झूठ यह बात तो देखो बात है। हां अच्छा फीमेल आवा की

0: अलावा बताओ भाजी।
1: फिर मेलिया रमा शंकरिया ना मेलिया हाँ यू मेलिया यू कह रहे ने कि ये दतौली चंदा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से यू चिट्ठी लेकिन कह रहे प्रोग्राम बहुत एंजॉय कराती है हाँ बहुत बढ़िया भैया लेकिन कहरन प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा पूरा परिवार मेले के कार्यक्रम सुन रहा है हैं और यू पढ़ाइयो कर रहे हैं
0: पढ़ाई कर रहे हैं
1: बहुत बढ़िया भैया पढ़ो लिखो
0: पढ़ाई कर रहे हो
1: बड़े बनो अच्छे बनो नीक बनो
0: पढ़ाई करे रहे हो नहीं तो भौजी अगर कहूँ तो एक सवाल कई ली और बता ना पायो तो फिर पता लगी कौन पढ़ाई कर लो चलो अच्छा भाजी गौनई मार उलर रही कह रही हम पहले
1: सुनाओ सुनाओ

0: देखो भौजी देखो है गौनहू जो है इतना उलर रही कहते रहे ना उलर रहे ना तो कहती घूम लड़ाई चल रही कि हम पहले आ गए आप देखो आ गए आप देखो नंबर इनका रहा है आप ही गिरा
1: तो घूंघट डारी है गांव में लग रही घूंघट ना डारी
0: चलो चलो चलो भाई गाओ गाओ गाओ सब जने गाओ सबका मौका मिली परेशान ना हो

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बाबूजी।
2: हाँ भैया।
1: 10:46 हुई गा है और तुम्हारी
2: गठरी हम
1: आज हम गठरी बांध के लाई रहो और रही जाते
2: कहूने गठरी।
1: अरे जो उन खाए पिए खातिन लाई रहो निकारो हम खाए पी तुम तो खाली बातें
2: कर तुम्हारे आगे खोल दे
1: बातें गड़े रहती हो जी नहीं जानती हो कमा भैया यहाँ सवेरे ते नहीं बैठो एक कुछ खवा दे।
2: अब इन खोला बाबा हमने हमने ई ना का करो हमसे गठरी गठरी हम तुमका पहले बताए ना इनकी हम तो हमारे घर आई हो तो का लाई के आई हो तुम्हारे घर जाइबे तो का खिलाई हो हम मुला पहले बता दिन फंडा हमारे बिल्कुल स्पष्ट है
1: लुकाक धरती
2: हूँ हमका भूख लगी तो हम खाइबे
1: तबही ने खवाइयो मतलब बहुजी की जब भूख लागी तबही ने बहुजी निकरिये तबही ने खाए मिली नहीं तो इसे मुंह बांधे चुपके बैठे
2: मुंह बांधे कछु बोले के खाते तुमका मुंह तो खोले पड़ी
1: सही
2: मुंह खोलो कुछ बोलो बतियाओ तो जरूरी थोड़े कि जब मुंह खोलो तब कुछ खाओ
1: यो बात सही है जरूरी है कि जब मैं मुंह खोलो तब चकिया चले लागे
2: खाओ हम खाओ हम बोलो तुम बतियाओ तुम
1: सही बात है
2: हम
1: सही बात
2: हम जानियो या तुमका बताई जब हम नान नान रहे अब तुम कही हो कि तुम और नान रहे
1: हो हम तो तुम कहते नहीं बड़ी देखा बहू जी देखा
2: बेकार बात ना करो हम नान नान रहे तो गर्मी की छुट्टी हो जाए अब सब जने हम अलसाए पड़े कौनो उठे ना सब देर में उठे कौनो काम काज ना तो हमारी अम्मा जो रहे बहुत डटती रहे पड़े सो रहे हो सूरज चढ़ी हवा उठत ना हुई ना की उठो सब जने का चु काम धाम करो हम सब चुप पे चादर हुई चुप पे आके मूंदे पड़े रहे तो जब अच्छा और जब कोनो काम कही दे तो हम सब ऐसी दाई बाई ताकि कि भैया यू कर ले भैया वही कर ले हम ते
1: जौनो
2: पकड़ में आए गए और कौनो काम पकड़ाए दिन तब घिसिर घिसिर घिसिर धीमे धीमे
1: करे रहे
2: कि दूसर काम न कही दे
1: दूसर न बता दिए
2: आईस खत्म हुए तो मालूम पड़ा दूसर बता दे
1: नहीं सही
2: तब वह चिल्ला में और जाने का कहे
1: का
2: कहे हाथ धीरे ऐसे चला रही हाथ चलाए नहीं बना तुम्हार 9 दिन चले 2.5 कोस अच्छा यू कही दे
1: हाँ।
2: तो हम कहें नहीं को चल रहा है कौनो ना चले ना कौनो कोस गिने अब वो डायलॉग बोले 9 दिन चले 2.5 को सुन सुन के हम सब ठठाए के हंसे
1: बुरा फर्जी चिल्ला रही
2: अच्छा और जानो जाने आलस करी जाए कछु चद्दर अद्दर पड़ी है कौनो नहावा ना है ऐस गंदा कुछ पड़ा है तो कहे जाना हाथ पाँव की काहिली अमू मोछे जाए
1: ओफो
2: हाथ पाँव की काहिली अमू मोछे जाए
1: हाथ पाँव डोलावे के ना पर हैं
2: हाँ जाने मतलब समझियो
1: मतलब बताओ
2: मतलब यू भा कि इतना आलस इतना काहिलियत है कि मोछे भरी के मुंह में जा रहे मुला मोछे हटाए नहीं सके थे काट ना
1: भगवान दैया मोर दैया भौजी वह तो ठीक बात है लेकिन जो तुम जो ने कहते बता जो चौवा मार रही हो है हमका लगा पूरा IPL देखे हो अब की तुम
2: कैच कर ले
1: कैच अरे नहीं इतनी तेज चौवा मरतू कैच ना वही छक्का मरियो तो कोशिश करब कि तुम कैच कर ले
2: वही बाउंड्री पार चला जाए
1: बाउंड्री पार चला जाए
2: चला जाए
1: नहीं ठीक अच्छा भौजी कुछ हो सुनाओ यही मारे तो
2: आओ सुनो सुनो जाओ ऐसे हम कौनो अगर कौनो जवाब दे दियो तो कहे सूप बोले तो बोले चलनी का बोले जामे 72 छेद
1: ले वाओ का तुम
2: सुने कहावत घर की उमा सूप और चलनी आएगा
1: हाँ,
2: कहे सूप बोले तो बोले और चलनी का बोले जामे 72 छेद जाने छेदों की नहीं बैठी
1: 72 छेद और चलनी देखो जनती है कि देखो चलनी में यहाँ कुछ धरियो तो खाली वो जो है आटा चली

0: तो सब नीचे
1: गिर गया। वाहू कहे वही चलनी पे एक और ही है।
0: हाँ।
1: कहे चलनी में दूध दो करम को दोष दियो।
0: ले यहो बढ़िया
1: सुने हो कबन सुने हो कि चलनी में दूध दो करम को दोष दियो। मतलब यू भाग काम ऐस करो कि काम बने ना एक बात चलनी को तुम जो है दोष दे रहे हो। अरे काम सही सलीके से करो। अब दूध दुहरे तो कोनो पतीला हड़िया ले लियो। अब दूध दुहे काहे में तुम
0: चलनी में
1: तो यू मार यू मतलब यू भा कि ठीक से करो। जब ठीक तने काम हो तो तुम कोई का दोष न देहो।
0: भाऊजी वारी ज्ञान की बात है तुम्हारी वारी तुम्हारी कहा उत्ता यही मारे हम तो
1: जाने सब सब घरेलू आए।
0: हाँ सब घरेलू आए
1: सूप चलनी दूध सब दही सब हुईगा।
0: हाँ यही मारे तो हम पहले है कहे रहन कि तुम बचपन की बात करती हो हम तो देखें कि भाऊजी आए फिर तुम कहियो तो हमका आंखी बटर तू कहियो बचपन
1: तो सुनो तो गौनो सुना।
0: हाँ गाँव नहीं अरे बिल्कुल तैयार है वह। अब तुम इतनी नेकी नेकी बातें बताती हो तो गाँव नहीं ऐसी आवत हमारे ठेला मारती है चक्कर
1: तो बुलाओ
0: कहा कि हम बाजब तो वही के हमें ठेला मारी थे हम रुकी रहो।

0: करती हो, हम तो देखें कि भौजी आई, फिर तुम कहियो तो हाँ हमका आँखी बटर तू कहियो कि ज्यादा से बचपन
1: तो सुनो तो गौनो समा।
0: हाँ गौनई, अरे बिल्कुल तैयार है वह। अब तुम इतनी नेकी नेकी बातें बताती हो तो गौनई ऐसी आवत हमारे ठेला मारती है चक्कई।
1: तो बुलाओ गौनई,
0: कहत कि हम बाजब तो हाँ। भाई वही के हम ऐसी ठेला मारी थे कि हम रुकी रहो
1: ना, ना ठेला ठेली ना।
0: अच्छा अच्छा, हम देखो बाजो बाजो भाई, बाजो बाजो
1: बाजो भाई बाजो
0: बाजो बाजो।

0: ಅಬ್ಬ ಅಯ್ಯದ್ ಯಾಕೋ ಹಮಕ ಇವ್ ಲಾಗತಿ ಔರ್ ಮೇಲಿ ಆಯ್ಗೆ
1: हाँ हाँ का फीमेलो आए हैं बहुजी
0: तुम तुम्हारा नजर जो हमका ठीक ना लग रही फीमेल फीमेल ना क्या क्या
1: करती रहो कि मेल और फीमेल का होती वाहे
0: तब तुम फीमेल पे काहे बात करते
1: अरे तुम मेल को कहा तू कि मेल आओ तुम फीमेल को तुम तो मार रही हूं
0: अब रुक जाओ यू हाँ। सुधांशु भैया है यू भेजिन है यू भेजिन है मेल कहाँ थे यू भेजिन है पोस्ट महोना थाना इटौंजा बक्सी का तालाब जिला लखनऊ थे कहन है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और आप दोनों की बातें बड़ी प्यारी लग रही है
1: अरे वाह भैया वाह यही
0: भैया हम हैं प्यारे प्यारे तो कहाँ किया जाए
1: हाँ नहीं
0: है ना और यू देखो यू है एम के राज मुनेश कुमार राज गांव भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी थे यू कह रहे राम राम विनय भैया भौजी का भैया राम राम हो कह रहे कार्यक्रम बेमिसाल सुनते सुनते हो गए कई साल क्या बात है और यू देखो कुछ पंक्ति लिख के भेजी नहीं यू कहने पेड़ नहीं लगावती है गर्मी गर्मी चिल्लावती है बिल्कुल सही कही नहीं ज्यादा बारिश तो गरिया में ना बरसे तब भी गरिया में बिजली गई तो झगड़ा करे आई गई तो फिर भी बकरे पानी बहे तो कीचड़ कहे सूखा पड़े तो धूल उड़े तो भैया यू सब दूर करो
1: और भौजी
0: बिरवा लगाओ
1: देखो नेहा वर्मा करीनी है मेल कहती है गुड़िया गुड्डक भौजी बिहाव करा दिए नी बहुत नीक लाग
0: भैया तुम सज्जने भी कराओ ऐसे घर में केला केला करो करो और मोबाइल ऐसे दूर रहो है ना और यू है गुलफसा सिद्दीकी संडीला से यू कह रहे तुमका भौजी तुमका नमस्ते विनय भैया का नमस्ते प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है और गाने भी एकदम मस्त लग रहे हैं तो भैया बहुत बढ़िया तुम सब जने नीक रहो सब जने सुनते रहो यह तो हम चाहती है और यू देखो कह रहे हैं कि

0: वकील अमित करन की गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं यू खेत में।
1: अच्छा
0: हाँ, हाँ। करन सुगंध माटी के कार्यक्रम अच्छा लगता है, लोग गीत बज रहे हैं, इस समय आम के बाग में है, कच्चे आम लगे हैं। अब भैया हम कुछ शरबत अरबत पी रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये सब जने सुन रहे हैं, अनीस अहमद, बबलू यादव, भूपेंद्र यादव, जाहिद अली, सब जने सुन रहे हैं भैया।
1: मीनाक्षी भेजनी है मेलू,
0: यू का कह
1: कहते हैं कि राम राम और राम राम और इनका कार्यक्रम नीक लाग रहा है।
0: हाँ।
1: और छोटकऊ वाला कुछ बात कह रही है, त्रिवेणी नगर तेने हमका मेल करी ने लखनऊ तेने।
0: अच्छा अच्छा हाँ। यो देखो इंदरपाल मिसर भैया है, यू मोहली सीतापुर ते कहने इंदरपाल मिश्रा, अवनीश विनीश, अक्षत गरिमा, रजनी और करण अवधि मीठी बोली कर कार्यक्रम बहुत नीक लग रहा है। पर्यावरण दिवस पे हमारे यहाँ बहुत से पेड़ लगाए गए भैया, तो पेड़ तो लगाए बिरवा लगाए, लेकिन देख रेख करो भैया, यू जाने लियो कि वो कद रख रखाव ना करियो तो मुरझाए जाइए, जुराए जाइए तो काउन फायदा ना है, बचाए रहो।
1: भाजी
0: बोलो,
1: ओ भाजी
0: बोलो बोलो।
1: 10:56 और 52 सेकंड हो गए,
0: तो क्या करियो,
1: अब चलो तुम जाओ।
0: रुको, यू अरुण कुमार कहीं
1: नहीं,
0: यू कहीं ने अरुण कुमार कुशवाहा घमोइया हरदोई से कह रहे ने प्यार भरा नमस्कार भैया, नमस्कार कह रहे बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे गीत सुन रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत आप सबे का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बारिश अली खान भौजी रहे जाती
0: पढ़ो पढ़ो
1: कहत की ना भौजी और भैया का प्रणाम, सुगंध माटी बहुत नीक लाग रहा, हमारे घर आए हो तो लेके आयो और का खवैयो, तो पता नहीं भैया का खवैयो तुम हमका, अब भौजी हमारी
0: पकौड़ी कचौड़ी कुछ बनाए के रखो हमका बताओ हम आइबो।
1: और देखो कह रहे कि हमारा जो है भतीजी है और वह खूब गीत गम नहीं सुन रही हो, तुम अपनी बातें।
0: अरे भैया बहुत बढ़िया, क्या बात है।
1: अरे भौजी तो भौजी फिर का यही मारे तो कही थी ना,
0: और पढ़ी का ए, या, ए, यू, ए,
1: पढ़ी लो
0: यू कह रहे हमारे खेत में एक बीघे में अमरूद के पेड़ लगे, मुझे आम का पेड़, जामुन, नीम, शीशम सभी लगाने, भैया खूब लगाओ।
1: हाँ, लगाओ
0: खूब लगाओ
1: हाँ।
0: नीम का पेड़ ऑक्सीजन देगा, शीशम की लकड़ी है, है ना भौजी, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं फीमेल हूँ, प्यार से हमको टाइगर कहते हैं। अच्छा भैया मानिए तुम्हारी बात, अब तुम कह दियो हम मानिए,
1: ठीक
0: है ना। अयु पवन कुमार यहू देखो मेल भेजी नहीं, सब नमस्ते कहीं ना कहीं, कार्यक्रम बहुत नीक लग रहा
1: है, मजा लग रहा है,
0: नीके रहो नीके सुनते रहो।
1: हाँ भौजी यू गान गाना कह रहा है कि 10:58 और 27 सेकंड का समय होगा है, ओ भौजी हमारी तुम जा रहे हो हमका नीक नहीं लागत,
0: अब जाए का परिये जो अब ना जाओ तो फिर कैसे आऊ हम।
1: हाँ यह बात सही
0: है ना, तो परी है। तो भैया सब जने अपन ख्याल रखो, देखे रहो और घाम गर्मी से बचे रहो, पेड़ पौधा लगाए रहो, पानी डाले रहो, अगली बार मिला तो हमका बताया का पौधा लगाए
1: का करियो है,
0: बचाए के रखे हो, कौन गैया बकरी चरी ना जाए, हम कहीं दे रहे हैं।
1: और अबे हम जो है 11 बजे के बाद हम मुलाकात करी,
0: तुम करो हम चली, हम हमार गठरिया पकड़ा
1: उठाओ
0: ना,
1: नहीं
0: चलो सब।

नमस्कार, 11 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के में डबल इंजन की सरकार ने राज्य के हर जनपद का विकास किया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश अपनी अलग पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडा में आज शुरू होने वाली परियोजनाएं जनपद के विकास को नई दिशा देंगी और जनसुविधाओं का विस्तार करेंगी। बिजनौर के गंगा बैराज में डॉल्फिन संरक्षण के लिए वन विभाग और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की ओर से चल रहे अभियान के तहत खास कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रयासों के तहत डॉल्फिन मित्र बनाए गए हैं जो समय समय पर गश्त और अवैध शिकार या हानि से बचाया जा सके। साथ ही बोट्स को इलेक्ट्रिक इंजन में बदला जा रहा है ताकि ध्वनि प्रदूषण से डॉल्फिन को बचाया जा सके। वन विभाग के मुताबिक डॉल्फिनों की संख्या में कुछ सालों में लगातार सुधार हुआ है। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू की गई है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में आने वाले पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। यह पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, जनसंपर्क, सिविल सेवा और व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और सेवा के लिए दिए जाते हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मेगाहारा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। तीसरे स्थान के लिए खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: कहिए,
1: सुनिए,
4: सुनिए,
2: कहिए, कहिए ना,
1: सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
5: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: हाँ जी, 11:08 का वक्त शुरू हो चुका है और शुरू हो चुका है प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे एक्साइटमेंट देखिए। और कहते हैं ना कि दिल तुम्हें दें ये खता हम क्यों करें, दिल तुम्हें हम दें ये खता हम क्यों करें। सुना है तुम किसी के दिल की नहीं सुनते हो जनाब, इसीलिए हम हाजिर हुए हैं आपके दिल की बात सुनने के लिए। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं और कॉल के भी जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आपके दिल की आवाज़ रेनबो 100.7 FM।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शहर आपका, धुन आपकी।

हाँ जी, और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। और संदेश, आपके गीत हमारे प्रोग्राम शुरू हो चुका है 11:14:40 का वक्त, और हमारे पास मेल्स आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रहे हैं। चलिए मेल की बात करें तो रामराज जी ने मेल लिखा है, और ये लिखते हैं रामराज, राजभानु, शंकर भैया, पप्पू जी और धीरज, मधु, और बहुत सारे नाम इन्होंने लिखे हैं। प्यार भरा नमस्कार लिखा है, और लिखते हैं कि हमारा संदेश ये है कि लोग गाय पालते हैं, जब तक दूध देती हैं तब तक ही रखते हैं, और नहीं तो घर से खदेड़ देते हैं और लोगों का नुकसान कराते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही और बहुत अच्छी बात कही है। गाँव में अक्सर ऐसी समस्या देखी जाती है। तो भाई, आपका जो मैसेज है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका है, और आई होप इस चीज़ से लोग बचने की कोशिश करेंगे कि जब तक वो दूध देती है और नहीं देती तभी उसकी सेवा करें और घर पे रखें। राजबाबू मैलहन फूलपुर प्रयागराज से इन्होंने मेल किया है, और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, और प्रोग्राम की तारीफें इन्होंने की हैं जो पिछला भौजी के साथ में था। और मोहम्मद आसिफ जी लिखते हैं कि तेलंगाना से ये सुनते हैं, और लिखते हैं अपने आसपास तालाबों की साफ़ सफाई रखें, कूड़ा वगैरह ना डालें, इससे जो उसमें जली जीव

हैं उनके लिए और हमारे पशु पक्षी के लिए बहुत ही नुकसान होता है। एक्चुअली मैं रहने वाला कटरा अहमदपुर बाराबंकी से कहते हैं कि वहाँ के रहने वाला है। आपको बताएं कि ये तो संदेश आपके हैं, गीत हमारे बहुत एक्साइटेड है कि आपसे जुड़े। उसके अलावा आप हमसे 0522223 8845 यानी 0522 22 38 845 और 22 38 852 पर भी जुड़ सकते हैं आपकी कॉल्स लेने के लिए। हम बेकरार हैं और बेकरार है ये गीत आप तक पहुँचने के लिए।

11:20 और 12 सेकंड्स का वक्त हो चला है। आप हैं संदेश आपके गीत हमारे में प्रोग्राम में और मैं आपके साथ हूं आपका दोस्त विनय यादव और एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी कॉल्स हम तक पहुंच गए, कहते हैं कि भैया मेल्स आप पढ़ लेते हैं और कॉल्स के लिए आप हमें वेट कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप अगर हमारे पास आएँ, हमारे साथ आएँ, हमारे दोस्त हैं, हमारे अजीज़ हैं, तो हम ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। हमने पहले ही कहा था ना, जो दिल की बात नहीं सुनता है उसको भला दिल कैसे दें, तो हम आपकी दिल की बात सुनने के लिए तैयार बैठे हैं जी। देखते हैं कौन है फोन लाइन पे। हेलो हेलो जी, क्या नाम बताया आपने अपना?

सत्यम कुमार जी, बहुत कम आवाज़ आपकी आ रही है, या यूं कह लें कि नहीं आ रही है नहीं? हेलो, क्या कह रहे हैं जी आप? सत्यम कुमार जी, हाँ जी, जल्दी से अपना संदेश बताएं, हम आप क्या कहना चाहते हैं हमें? अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, आवाज़ कट रही है, अच्छे से बात नहीं हो पा रही, लेकिन आप हमसे जुड़े और हमसे बात की, और जो भी मैसेज आपका था वो आपने हम तक भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल करके, और बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते रहिए। एक से बढ़कर एक खूबसूरत ट्रैक, 11:21 और 38 सेकेंड्स का वक्त, संदेश आपके, गीत हमारे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
2: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
3: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

एक मेल हम ले लेते हैं। विपिन मौर्या जी खंजन नगर मितौली लखीमपुर से लिखते हैं कि आज हम कोई संदेश नहीं देना चाहते। अच्छा जी, देखें नाराज तो नहीं आप, तो सुन लो साथ एफएम रेनबो की पूरी फैमिली को दिल से धन्यवाद जरूर देंगे। और कहते हैं कि जब से एफएम रेनबो सुनना चालू किया है तब से आज तक के सारे प्रोग्राम कुछ न कुछ संदेश, मनोरंजन, शिक्षा प्रद जानकारी और बहुत कुछ किसानों और परिवार की महिलाओं के लिए प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं।

फ्रेंड्स, इस सॉन्ग के बाद हम अपने दिल्ली केंद्र से जुड़ेंगे और उसके बाद हम लौट कर आएंगे, आपके संदेश पढ़ेंगे और आप अपने गीत हम आप तक पहुंचाएंगे।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: हाँ जी दोस्तों, 100.7 FM रेनबो पर हैं आप। 11:49 और 40 सेकंड का वक्त हो चला है। आप हैं विनय यादव के साथ, जाकर रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके, और गीत हमारे तालिब अंसारी जी ने मेल किया है और लिखते हैं कि खुद से प्यार करना खुशी का पहला रहस्य है, ये इनका मैसेज है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जावेद अख्तर साहब ने मेल किया है और इन्होंने प्रोग्राम की तारीफें की हैं और संदेश से लिखा है कि ये बिजवान पंछी पशु हैं, उनका पूरा ध्यान रखें, अपने छतों के ऊपर पानी दाना घर के बाहर ज़रूर रखें। मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने हमें मेल किया है शमशुल कमर राही बेगम रुखसार राकीबा शाहीन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आपके इस बेहतरीन मैसेज के लिए जावेद अख्तर साहब। और इंद्रपाल जी भी मेल करते हैं और लिखते हैं कि ये जो नशे की आदत होती है ना, ये बहुत ख़राब होती है। अमृता मोहली सीतापुर से आपने हमें मेल किया है। इंद्रपाल मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छे मैसेज के लिए। गुलाबशाह जी ने मेल किया है, क्या लिखते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग जी विनय जी, गुड मॉर्निंग अभी तो आफ्टरनून होने वाला है।

आ रहा है। लेकिन लिखती है गुलाब साहब सिद्दीकी संडीला से, और क्या बताएं आपको, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, धन्यवाद। और लिखती हैं कि पिछले मेरे 32 के 32 दांत खुले रहे, इतना हंसे हम सब, क्या बात है। चलिए इसीलिए तो हम आते हैं कि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही इंजॉय करते रहें। और आप इंजॉय करिए, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। जैसे हमने कहा था ना कि आपसे कि आप इंजॉय करेंगे, गीत हमारे और संदेश आपके होंगे। 11:51:30 का वक्त, इस सॉन्ग के बाद जल्दी से आते हैं और सबके मेल्स लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है।

यास्मीन बानो जी ने मेल किया है और ये लिखती हैं कि प्रोग्राम ठीक है, और बिस्वा सीतापुर से आपने मेल किया संदेश आपने लिखा है, लेकिन ठीक है अच्छी बात है। और सबरीन जी ने मेल किया है बलिया संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, बिलाई संडीला से आपने विलेज, बिलाई है आपका विलेज और संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से मेल कर रही हैं और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और लिखती हैं कि संदेश हमारा ये है कि कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। बहुत अच्छी बात सबरीन आपने लिखी है, बहुत अच्छी बात। 11:55 एक और मेल है, लिखते हैं सर जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, मेरा कहना है कि जो लोग अपने छत से कूड़ा रोड पे फेंक देते हैं, बहुत बड़ी बात आपने लिखी, बहुत अच्छा मैसेज है। और इन्होंने टिकैत नगर बाराबंकी से मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कुलदीप, आकाश, रिंकी, पिंकी और सभी लिसनर्स का मेल है, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।

फिर से 11:55 और 53 सेकंड्स का वक्त हो चला है और ये वक्त कहता है कि मैं विनय यादव आपसे इजाजत लूं। तो चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे कि प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर कभी मुलाकात करेंगे। बाय बाय।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने नागरिकों को आश्वासन दिया कि देश गरीबों के लिए व्यापक अवसंरचना विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने राज्य के हर जनपद का विकास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडा में आज शुरू होने वाली परियोजनाएं जनपद के विकास को नई दिशा देंगी और जन सुविधाओं का विस्तार करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनपद के विकास के लिए लंबित कई मांगों को स्वीकृति दी है, जिसमें घाघरा नदी में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम भी शामिल है। IIM लखनऊ में अब 12वीं पास छात्र छात्राओं को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। संस्थान के शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2025 या 2026 में 12वीं पास करने वाले छात्र

तरह इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को जेई एडवांस 2026 की कॉमन रैंकिंग में होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। इच्छुक छात्र आईआईएम लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर के छप्पर थाना क्षेत्र में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई। बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एसपी संजय कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पा रही है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 12:04:50 हो चले हैं। प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा, जिसमें शालिनी है आपके साथ लेकर फन। और कौन सा फन? फैमिली वाला फन। देखिए फन बहुत सारे होते हैं, हम बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, लेकिन जो फन हम अपनी फैमिली के साथ करते हैं ना दोस्तों, उसकी बात ही कुछ और होती है। वो दिल से जुड़ा होता है, एहसास से जुड़ा होता है, प्यार से जुड़ा होता है ना। तो बस सैटरडे को हम करने आते हैं आपके साथ यही फैमिली वाला फन। तो तैयार हो जाइए, कैसे होगा फन? हमारे साथ बने रहना होगा, अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करना होगा आपको 100.7 FM रेनबो, और साथ में इतने प्यारे से ट्रैक कि आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। और क्या क्या होंगी बातें बताएंगे जरूर इस गाने के बाद, लेकिन तब तक कि पूरी फैमिली को रेडी कर लीजिए, फन के लिए तैयार कर लीजिए।

और इसी प्यार के साथ शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की, जिसमें करने वाले हैं हम ढेर सारा फन। तो बताइए, सभी लोग एक साथ हो गए? अरे हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है एक साथ होना, क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना दोस्तों, सब साथ होते हुए भी अलग अलग लगते हैं। कोई किसी चीज़ में बिजी है तो कोई किसी चीज़ में। हाँ, होता एक चीज़ है हाथ में, हमारा स्मार्टफोन, है ना। और जब गैदरिंग होती है ना, अब कहते हैं ना कि पिक्चर नहीं दिखाई जा सकती, कैसे दिखाई जाए, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं उसको आप महसूस कर सकते हैं, चाहे पार्टी में हो, चाहे कहीं पर भी जगह में आप बैठे हो।

घूमने जाते हैं लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन करते हैं बस उसी में लग जाते हैं, तो पास रहते हुए भी पास नहीं होते हैं। तो घर में आज आप अपने काम में लगे रहिए लेकिन दिल एक दूसरे से कनेक्ट करिए। और ज़रा सोचिए कि लास्ट टाइम कौन सी ऐसी बात आपकी थी जो किसी के दिल को छू गई थी, यानी कि दिल में चुभ गई थी। क्या ऐसा कहा था आपने? अगर वो आपको याद आ रहा है ना, तो बिना किसी झिझक के अंदर की आत्मा को मजबूत करके उस इंसान से आप आज सॉरी बोल दीजिए। जी हाँ, प्यार से बोलिए, देखिए कितना बदलाव आप खुद में महसूस करेंगे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: सात रंग का इंद्रधनुष है,
5: सात सुरों की सरगम है,
6: सात जन्म है सात समंदर,
4: साथ हमारा हरदम है,
6: जिंदगी के सतरंगी रंग
5: FM रेनबो के संग।

दोस्तों, जब हम एक दूसरे से दिल से मिलते हैं ना, तो जो खुशी होती है उसका एहसास तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो आज हम फैमिली के साथ हैं, फन के साथ हैं, और आज का जो फन है वो थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, आज का जो फन है वो हम दिल से अपने प्यार की बातें एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, है ना। काम चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, हैं घर के ही अंदर, और कुछ देर के लिए मोबाइल फोन को आप अपने से दूर कर दें। अब ये आप कहेंगे कि कैसे कर दें, उसी से तो हम एफएम रेनबो सुन रहे हैं, तो वॉल्यूम तेज करिए और उसको हाथ से दूर करिए। कई बार होता है कि एक साथ हम कई सारे काम कर रहे होते हैं, जो दूसरा कुछ हमसे कह रहा होता है उससे बोलते हैं हाँ हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ, और अपने काम में लगे रहते हैं। और जब कोई चुप हो जाता है अचानक, तब फिर से याद आती, अच्छा हाँ बताया नहीं अपनी बात, जबकि अगला पूरी बात कह चुका है। तो ये इस तरह का जो काम हम करते हैं ना, नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। जब कोई बात आपसे कर रहा है, अपनी बात बता रहा है, तो उसे पूरा अटेंशन दें और पूरी तरह से उस बात को सुने। उतनी देर में कुछ देर नहीं हो जा रही है ना। तो बस परिवार की बात

है परिवार के साथ रहना है, परिवार में हंसी खुशी आपके हाथ में है, क्योंकि एक एक इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कहते ना कि पूरा शरीर हमारा एक है, उसी तरह से परिवार एक है। शरीर में कहीं पर भी अगर जरा सी भी चोट है ना, तो पूरे शरीर को तकलीफ होती है। ठीक वैसे ही परिवार में भी होता है हर इंसान का खुश रहना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना ठेरिये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

इसी तरह से आप भी किसी से कह सकते हैं ना, जैसे कहा ना, कभी तू भी तो मेरे संग टोल। घर पे कई बार ऐसा होता है कि एक साथ रहकर भी हम कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, उसका हाल चाल नहीं ले पाते, और हाँ, लेकिन स्टेटस जरूर लगा लेते हैं, है ना, कि आज उसका बर्थडे है, आज उसकी एनिवर्सरी है, आज ये है, आज वो है। यहाँ तक कि नाराज़गी को भी हम जाहिर कर देते हैं, हम दुखी हैं ये भी कर देते हैं। जितना समय हम इस काम में लगा रहे हैं ना दोस्तों, रियल में उस इंसान से बात करने में लगाए ना, तो जितनी परेशानी है ना, सब एकदम फुर हो जाएगी। जी हाँ, चाहे किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, किसी भी चीज़ को आप विश करना चाहते हैं, तो उस इंसान से एक बार ज़रूर कुछ मिनट क्या, कुछ सेकंड निकाल कर कॉल करके उसे मिल के उसे बधाई ज़रूर दें। आज ये काम कर लें, अपने परिवार का ही कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से, अरे कुछ नहीं तो हैप्पी सैटरडे बोल दीजिए भाई, कि सैटरडे है, खुश रहो, और क्या हो रहा है, क्या एक कप चाय पर एक दूसरे के साथ हो जाएं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों 12:54 और 50 सेकंड का वक्त हो चला है और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा यहीं पर फाइंड अप, और इसी के साथ बस आपसे ये कहना है कि थैंक यू ज़रूर बोले आज एक दूसरे से किसी भी छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ पर।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने राज्य के हर जनपद का विकास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडा में आज शुरू होने वाली परियोजनाएं जनपद के विकास को नई दिशा देंगी और जन सुविधाओं का विस्तार करेंगी। लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज शाम शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद और बैठक करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण किया और वायु युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने भगवान बुद्ध के उपदेश स्थलीय सारनाथ का भ्रमण किया। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से काफी प्रभावित हुए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है, ताकि वे भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी वैश्विक प्रासंगिकता को समझ सकें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों की बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर

आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। सुल्तानपुर में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले सीताकुंड घाट को गोमती कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए भूमि पूजन कर परियोजना का शुभारंभ किया गया। भूमि पूजन के दौरान स्थानीय विधायक विनोद सिंह ने कहा कि लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से सीताकुंड घाट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक घाट, शौचालय, स्नानागार, प्रकाश व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग ने 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों 1:04 और 24 सेकंड हो चले हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है ओठों पे तेरी बात। और आज है सैटरडे, तो बस आपका जो मस्ती वाला प्लान है, आप क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, वीकेंड में क्या तैयारियां हैं। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और अब ज़्यादा कहेंगे ना तो ये 5-10 दिन पता नहीं चलते कब कहाँ चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे, हो सकता है। तो सारी प्लानिंग आपकी क्या है वो सब हमें बता डालिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। जी हाँ, मेल आईडी तो पता ही है आपको, तो बस फटाफट जुड़िए हमारे साथ और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ। जी हाँ, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, आपकी फरमाइश के गाने सॉरी हम इस प्रोग्राम में नहीं प्ले कर सकते। तो उसके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम होगा हॉट मेल 2 बजे से, बस तब उसमें आप हमें अपनी पसंद भेजिएगा। अभी आपको तो बस हमसे बातें करनी है।

0: और अब सुनिए इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए के 262 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संघ की बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट और चेक दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत ने रियासत के हर जिले को तरक्की दी है। उन्होंने कहा कि रियासत अब मुल्क और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है। वजीर आला ने कहा कि आज गोंडा में शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्टों से जिले की तरक्की और अवामी सहूलियात को वुसअत मिलेगी।
2: उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं।
1: महाकुंभ 2025 ने मरकजी हुकूमत के जरिए ऐलान करदा नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड जीता है। इस साल मरकजी हुकूमत ने नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स के तहत 11 गोल्ड अवार्ड्स, 6 सिल्वर अवार्ड्स और 1 ज्यूरी अवार्ड का ऐलान किया। महाकुंभ 2025 को मुल्क की बेहतरीन ई गवर्नेंस ईजादात में से एक तस्लीम किया गया है। महाकुंभ गोल्ड अवार्ड हासिल करने वाले इदारों को 10 लाख की रकम मिलेगी और सिल्वर अवार्ड हासिल करने वाले इदारों को 5 लाख मिलेंगे।

0: नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 की रस्मी पेशकश की तकरीब जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनक्किद की जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत अब अपनी सरमायाकारी और सलामती के माहौल के लिए पहचानी जाती है। उन्होंने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत हर जिले की मजमूई तरक्की के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: रियासत के वजीर तवानाई ए के शर्मा ने पीएम सूर्यघर पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वजीर आजम की तरगीब पर मुल्क में सोलर तवानाई में तेजी से तौसी हो रही है। वाराणसी में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश मुल्क में अव्वल मुकाम पर है और वाराणसी मुल्क में सोलर तवानाई में 11वें मुकाम पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर एक खसूसी मुहिम कल शुरू हुई। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रियासत के तमाम अजला के इंचार्ज वजरा और अवामी नुमाइंदे 21 जून तक समाज के रोशन ख्याल तबकों के साथ बातचीत करेंगे। वो अवामी मसाइल के हल के लिए देही इलाकों में रात के चौपाल का भी अहतमाम करेंगे। इस तनाजुर में काबिनी वजीर ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में दरख्त लगाकर एक मरबूत अवामी फलाह बहबूद और बेदारी मुहिम का आगाज किया। मुहिम के बारे में मालूमात फराहम करते हुए रियासत के जल शक्ति के वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में दुनिया भर में मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में एकेडमी अवार्ड तकरीब में 2021 से 2024 के लिए मुंतखब फनकारों को एजाज से नवाजा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के जेर एहतमाम तकरीब में 51 मुमताज फनकारों को मौसिकी, रक्स, ड्रामा और लोक फनून में नुमाया खिदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। वाराणसी मुनक्किदा ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप का 2 रोज़ा इजलास कल इख्तिताम पजीर हुआ। आखिरी दिन ब्रिक्स के रुकन ममालिक के नुमाइंदों ने सकाफती ताउन और बाहिमी शराकत दारी को मजीद मस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। हिंदुस्तान की सदारत में होने वाली इस अहम मीटिंग में ब्राजील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका और सऊदी अरब समेत 11 ममालिक ने शिरकत की। सकाफत की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी अमिता प्रसाद सरभाई ने कहा कि मीटिंग में हिंदुस्तान के कीमती विरसे की वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान तरक्की और सकाफत के मुतफा तफहूम के साथ आगे बढ़ने के तौर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बलिया के जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुराताल को मुल्क के सवा रामसर साइट करार दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि यह मुल्क के कुदरती माहौल, खास तौर पर उसकी आबी जमीन के तहफ़ के लिए हिंदुस्तान की गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी का था। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने माहौलियाती तहफ़ हयाती तनु के तहफ़ और वेट लैंड के तहफ़ के शोबों में काबिल ज़िक्र तरक्की की है। मुजफ्फरनगर जिले के छपर थाना इलाके में दिल्ली देहरादून कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ट्रक से टकरा गए और मौके पर ही हलाक हो गए। आंसू वाकये के बाद पुलिस और इंतजामी अहलकार जाय वकूअ पर पहुंचे। पुलिस सुपरिटेंडेंट संजय कुमार ने कहा कि मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: रोज सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है। सुबह 6 बजे पुष्पांजलि से पहली मुलाकात होती है। दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है।
3: रंग दे
2: रात में तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है।
4: मन क्यों बहका रात को।
2: तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर सुनना ना भूलें। सुबह 6 से रात 12 बजे तक
5: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

1:23:23 प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात में शालिनी आपके साथ। और शालिनी के साथ ढेर सारे ईमेल्स आ चुके हैं। सुल्तान रजा का मेल आया है और इन्होंने हमें कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से लिखा हुआ है और इनके साथ में ढेर सारे लोग हैं, सादिक, मुनीश, जिशान, अफजाल और मम्मी पापा, पूरा रजा परिवार है। इस समय घर की छुट्टी है स्कूल की, तो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, सभी परिवार की तरफ से है छुट्टी चल रही है। अच्छा, आपने कहीं पर कॉमा और पूर्व विराम नहीं लगाया है तो समझ में नहीं आती ना पूरी बात। स्कूल की छुट्टी इसलिए सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं और बाकी सब तो ये घूम चुके हैं। हाँ, अच्छा, अच्छी बात ये है कि अब हमारा टिकट भी कंफर्म हो चुका है। भाई ये बहुत ज़रूरी बात है, पहले से प्लानिंग कर लेना किसी भी चीज़ के लिए। राजकमल यादव का मेल आया सूरतगंज बाराबंकी से और कैसे हो मैम, इस चिलचिलाती गर्मी में आपका प्रोग्राम कूलिंग है नीम की छांव जैसा। अरे चलिए, थैंक यू। अच्छा, ये अपना सिलाई का काम करते हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। लेकिन राजकमल जी, आपने अपना वीकेंड का प्लान नहीं बताया कि सैटरडे संडे क्या करने वाले, या आगे का जो भी प्लान आपने बनाया हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और मोहम्मद आसिफ अंसारी का तेलंगाना से ये हमें सुन रहे हैं और संडे गोलकुंडा फोर्ट जाएंगे और चार मीनार जाएंगे और आप लोग भी आइए हैदराबाद, बिल्कुल आते हैं घूमने के लिए। और दोस्तों, बाकी के ईमेल जरूर पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा ट्रैक आप सब के लिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना

0: 21 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों ये 1:38 और 2 सेकंड हो चले प्रोग्राम ओटो पे तेरी बात में शालिनी आपके साथ लेकर वकील अहमद जी का ईमेल और इनके साथ ना इन्होंने हमें मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से लिखा है। साहिबा साजिया शमा पिंकी रिंकी महक और गुलफसा एनम नवाब और सभी का नाम अनीश फारूक सभी के नाम इन्होंने लिए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जाएंगे तो कहीं नहीं घूमने लेकिन गन्ने की सिंचाई हो रही है और इस समय हम आम के बाग में हैं और कच्चे आम लगे हैं अभी भाई पके कि नहीं। सुधाकर राधे जाधव का भी मेल आ चुका है जाफराबाद से प्रशांत संचित प्रथमेश और पूरी फैमिली के साथ लिख रहे हैं और अच्छा आप सुन नहीं पाए भाई आज सैटरडे और सैटरडे को हम बात करते हैं आपसे आपके ही वीकेंड का आप क्या प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने फिरने का। और बाबू अंसारी जी आप भी अब सुन चुके होंगे जो बात अभी हमने कही 12 मंकी से आपका मेल आया है कुछ अच्छी सी मंथ की बात बता दीजिए। और हेमंत वाजपेयी का मेल आया है नमस्ते मैम गर्मी बहुत कड़क के पड़ रही है जिससे मैं लोगों को पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत है बिल्कुल और थोड़ा सा इसे और हम बढ़ा दें साफ पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत है। और मेल आ चुका है राय बरेली से गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु और शंकर पप्पू मनीष नीरज मधु काका और अच्छा ढेर सारा प्यार है हमारे लिए थैंक यू और हमारी घूमने की कोई वजह नहीं है। और इन्होंने लिखा है मेल आया है जो रामराज की जी की तरफ से और ये घर पर बकरी चराने जाते हैं उसी में मस्त रहते हैं चलिए इसी बहाने आपका टहलना तो हो जाता है ज़रूरी है थोड़ा सा चलना फिरना। और रामेश्वर कठेरिया का मेल आया है उमा कांति कमलेश और निशा प्रज्ञा प्रतिबिंब और बेदू वेद बाबू का है और इन्होंने मुंगिसा पर कानपुर देहात से मेल हमें लिखकर भेजा है और ये लिख रहे हैं कि हम अपने नाना नानी के घर घूमने जा रहे हैं हम साल में एक बार नाना नानी के घर जाते हैं घूमने बढ़िया है खूब मस्ती करिएगा लेकिन हाँ वहाँ ज़्यादा सबको परेशान नहीं। मोनू सेठ जी का मेल आया है इन्होंने प्लास्टिक के बारे में लिखकर भेजा है कि प्लास्टिक कभी भी जैविक रूप से सड़ता नहीं है या सिर्फ धूप और हवा के कारण छोटे छोटे रिकड़ों में बदल जाता है और जो सर्दियों तक हमारी मिट्टी और पानी में मौजूद रहता है और इसका बाकी का भी मापदंड बताया है कितने साल तक ये डिस्पोज नहीं होती है बहुत अच्छी जानकारी दी है मोनू आपने लेकिन प्रोग्राम ओटो पे तेरी बात में हम आपकी प्लानिंग जान रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं इस वीकेंड तो चलिए अभी और भी मेल लेंगे लेकिन पहले ये गाना आप तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों अगर आप भी सुन रहे हैं और चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना इस प्रोग्राम में तो आपको हमें ईमेल करना होगा कहाँ पर FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

दोस्तों ढेर सारे ईमेल्स आ रहे हैं और ये फारूक अहमद जी का मेल आया हुआ है और इन्होंने मसौली बाराबंकी से लिखा है और इनका लिखना है कि कल संडे में हमारे रिलेशन में एक शादी है जिसमें इन्हें जाना है। भाई शादी बारात अभी से सेलेक्ट कर लीजिए, क्या पहन के जाना है, कैसे जाना है। और इन्होंने लिखा है कि अभी लंच करके आराम कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। बढ़िया, आपने अपने सही टाइम पर आपने लंच कर लिया। और पिंकू सोनी का भी मेल आया है। अच्छा, इन्होंने ये आज का प्रोग्राम केवल सुन के एंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने कुछ कहा नहीं है, बाराबंकी से ये हमें लिख के भेज रहे हैं। कुलदीप, आकाश, रिंकी, पिंकी और सभी लिसनर्स को इन्होंने नमस्ते कहा है। भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आपको कुछ लिख कर भी भेजना चाहिए। और मोनू कुमार जी का भी मेल आया, इन्होंने लिखा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस बच्चों के साथ खेलेंगे और आनंद ही आनंद लेंगे। अच्छा वाह। गुलफ्सा सिद्दीकी का मेल आया है, संडीला से ये लिख रही हैं। इन्होंने लिखा है अपने बच्चों को लेकर अपनी नानी के घर जाऊंगी मलिहाबाद में आम खाने। वाह भाई वाह, क्या बात है। और आम का नाम सुनते ही तो दोस्तों मुंह में पानी आ जाता है ना। सुधाकर राधे जाधव जी का मेल जाफराबाद से आ चुका है। इन्होंने लिखा है कि हम किसान हैं, हम कहीं घूमने तो नहीं जाएंगे अभी क्योंकि खेत में काम चालू है और हम खेती में मस्त रहते हैं। भाई आप खेती करते हैं तभी तो हम सब तक अनाज पहुंचता है ना। सारे किसानों को सलाम। और मेल आया है किसका? अच्छा, पिंकू सोनी जी, आपने दो बार मेल किया, एक बार किया। संतोष चौरसिया जी का भी मेल आ चुका है और गुरुग्राम से ये लिख रहे हैं। और ये लिख रहे हैं कि घूमने जाने का मन तो बहुत है लेकिन धूप की वजह से कहीं नहीं जाऊंगा। पूजा का भी नाम ले लीजिएगा, ले लिया बिल्कुल। और अब ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए है।

और दोस्तों 1:55 हो चला है, विनीत कुमार का मेल रामगढ़ से आया है और इन्होंने लिखा है कि नैमिष धाम चले जाएं ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन धूप बहुत हो रही तो कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है, जब मौसम सही होगा तब ये जाएंगे घूमने। और सतीश अनेजा जी का मेल आया है, इनकी कुछ तबीयत नहीं ठीक है और लेकिन प्रोग्राम सुन के इनको रौनक आ गई है। चलिए थैंक यू, हमारा रेनबो है ही ऐसा। और कल कसौली हिमाचल जाना है दोस्तों के साथ, लेकिन सतीश जी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और उसके बाद कहीं जाइए। चंडीगढ़ से ये हमें मेल लिख रहे हैं और मेल आ चुका है, संजीव सिंह का भी आया है। और ये कहाँ घूमने जा सकते हैं, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है, सभी के सभी जा सकते हैं घूमने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर करते हैं वाइंड अप, और ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम हॉच मेल में भी शालिनी इंतजार कर रही है आप सभी के ईमेल्स का। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल करिए।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में निर्मित भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और अंतर्निहित मजबूती को दिखाती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ऊर्जा मंत्री ने वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। आईआईएम लखनऊ में आज अब 12वीं पास छात्राओं को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2025 या 26 में 12वीं पास करने वाले छात्र छात्राएं इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को जेई एडवांस 2026 की कॉमन रैंकिंग में होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। इच्छुक छात्र आईआईएम लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के एल्फोसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा और दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल थे। अमेरिका की सेनेटर मंका डिंगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं पूरी करता, बल्कि यह मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। इसी के साथ ये समाचार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: दोस्तों 2:04 हो चले हैं और शुरुआत हो चुकी है प्रोग्राम हॉटमेल की, जिसमें गाने के हर प्रकार शामिल होते हैं क्योंकि सबकी अलग अलग पसंद होती है और सब अलग अलग पसंद के गाने मिलके एक प्रोग्राम बनता है जो हॉट हो जाता है। और देखिए शुरुआत हो चुकी है आलोक कुमार खरे, अरुण, अनिल, संजय, सुनील जी के शाहबाद पिहानी हरदोई से इन्होंने हमें मेल भेजा है। और टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, मनदीप, शुभचंद्र, साहिल और बिट्टा जी का मेल मोहाली, चंडीगढ़ और कालका से आया हुआ है। बोधराज खोरवाल जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश के साथ उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने मेल किया है। महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा जी का मेल छत्तीसगढ़ से आ चुका है। बहुत दूर दूर से मेल आता है भाई, और भाई जब एक बार आपका मेल हम शामिल कर ले तो प्लीज़ दोबारा मेल ना करें। और जयराम जी थोड़ा सा वेट किया करिए, मेल शामिल ही किया जा रहा है, तपाक तपाक मेल कर देते ना, टाइम नहीं लगता है। और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमनदीप, पांशु का मेल आ चुका है। मेल आया है सोपान तांडे और वसंत राव, पी एन नोहाकर, तुसार जी का है और ये महाराष्ट्र से हमें मेल कर रहे हैं। विनीत कुमार जी का अर्थापुर पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल सीतापुर से मेल आया हुआ है। सुबह दोपहरिया इनका कहने का जो ये अंदाज है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तुलसी मस्कीन जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें कहाँ से मेल किया है, दिल्ली से ये हमें मेल कर रहे हैं। वीना, चैतन्य चंडीगढ़ से हैं, राहुल और रचित और केशु इनके साथ हैं। बाबू अंसारी का भी मेल बाराबंकी से आ चुका है। बाबू अंसारी जी आपकी पसंद हमने देख ली है। और सतीश अनेजा जी का विमला के साथ में चंडीगढ़ से मेल आया हुआ है, अभी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए थे। और भैया बिना किसी का वेट किए हुए भी आप लोग ना इतना फटाफट इतना ज़्यादा मेल करते हैं। और अच्छा आप तो मेल आईडी भी चेंज कर करके करने लगे, ऐसा ना किया करिए। जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा के साथ में कैथल हरियाणा से ये हमें मेल कर रहे हैं। और भैया जितने लिसनर्स हैं उसके लिस्ट इनके पास है और सभी को ये नमस्ते बोल रहे हैं। कमलकांत गुप्ता, रिदीपा रिमछिम ने पिपरिया से, और समझी लवापारा से श्रद्धा, अदिति, राधे, अंकुर, राघव और दीपक का भी मेल आ चुका है। और अब क्या किया जाए, अब पहले गाना पहुंचा दिया जाए आप सब तक।

लेकिन दोस्तों आज का समय थोड़ा सा बदल गया है, आप हमें ईमेल के जरिए फूल भेज देते हैं फूल लेकिन ज़रूर पहुंचता है। और दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति शिवांश का मेल आया है पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। सुदर्शन शाह का भी मेल आया है, प्रखर नीति सुरभि अश्विनी मंगलाबेन के साथ नेपा नगर से ये हमें मेल कर रहे हैं। और किसका मेल है भाई, अशोक कुमार जी का भी मेल आया है और इन्होंने अशोक राज जी हैं और

इन्होंने मितौली लखीमपुर से हमें मेल किया हुआ है। गोविंद परमार जी का भी मेल है और गांधी नगर गुजरात से ये हमें मेल कर रहे हैं, और ज्योत्सना दीपल और हर्ष के साथ भाई, और हरजिंदर छिंदा जी का है, जसवीर जस्सी सीता और गीता के साथ में पंजाब नथाना से हमें मेल कर रहे हैं। यासीन अनजान, साइमा हसन बाबू, अहद मिफ्रा बेबी चाहत सादिया है और ये झारखंड से हमें मेल कर रहे हैं और बड़े ही प्यारे से गाने की फरमाइश की है, और सुनते हैं पहले ये प्यारा सा ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

दोस्तों 2:22 और 35 सेकंड हो चले हैं और ढेर सारी ईमेल्स आ चुके हैं और शामिल करते हैं फटाफट बिना किसी देर के। जोन डिक्रोस्टो रोजी पर्ल विलेस का जनकपुरी सहारनपुर से मेल आया हुआ है और

0: दिलीप कुमार का मेल है, दिलीप कुमार सोनी है ये, मुंदी चक का भागलपुर बिहार से ये हमें मेल कर रहे हैं। सुनील पाठक जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने कमल दीपिका गायकवा और भाई सुच्चा सिंह पाठक के साथ में जगराव पंजाब से हमें मेल किया हुआ है। और ये नजीम ओस्मानी जी का भी मेल आ चुका है, इन्होंने कहाँ से, सीतापुर से ये हमें मेल कर रहे हैं। दिग्दर्शन कौर जी का भी मेल, अच्छा दिग्दर्शन है, और कविता कर्ण शक्ति रिया जया दर्शन भाई मेरठ कैंट से हमें मेल कर रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से मेल कर रहे हैं। उत्तम कुमार भगत, श्वेता केशु, ताशु अर्णव, सत्यम आनंद और मुन्ना मुन्नी के साथ में झारखंड से मेल आया हुआ है। टीटी मल्होत्रा जी का मेल आ चुका है, हमने पहुंचा दिया है आप तक। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, ठाकुरावाला से हमें मेल कर रहे हैं। और ये मेल आया है सोपान ताइंडे और वसंत राव, पीएस नोहाकर, तुसार, महाराष्ट्र से ये हमें मेल कर रहे हैं। आफ्ताब अंसारी, रियाज, लुबना, आलिया का गंग जुंडवारा से मेल आया है। शाहरुन अंसारी के साथ में फरियाद, शकील, मोइन, तस्लीन, डीजे प्रधान जी, मचकली, बरेली से हमें मेल कर रहे हैं आप। और बसंत कुमार सिन्हा का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से मेल किया है। अजय, रेखा, अवंतिका, रिम्मी, तनुश्री और अभय, शिवानी, प्रियंका, नन्हे मुन्ने, अनिरुद्ध भाभी, सभी का इन्होंने नाम लिखकर हमें भेज दिया है। और राधेश्याम शर्मा का भी मेल इंदिरा और सार्थक के साथ में हरियाणा से आ चुका है। वारिस अली खान जी का भी मेल ऐशबाग लखनऊ से आया है। सुरेश नागर जी का मेल सोनाली और के साथ में, आशा के साथ में सहारनपुर से आ गया है। और ये किसका मेल है, अच्छा पिंकू सोनी टिकैत नगर से इन्होंने हमें मेल किया है, अपनी फरमाइश भेजी है। प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजल, सोहम, सदानंद, विरार, स्वीटी, अंशुमन, बेबी ओमी के साथ सामाजी नगर से मेल आया है। दोस्तों आप बारी है प्यारे से ट्रैक के, उसके बाद और ढेर सारे मेल भी करेंगे शामिल।
1: पवन करे सोरू

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:36 हो चले हैं दोस्तों, ढेर सारे फरमाइशी गाने आप तक पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ अभी बाकी हैं, वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट मेल पहुंचाते हैं। दीपेश पूनम ज्योति शिवांश का मेल सरगांव छत्तीसगढ़ से आ चुका है। रामेश्वर कछारिया उमाकांती कमलेश और अच्छा इनका सबका मेल मुंगिसापुर कानपुर देहात से आ चुका है। सीताराम कांगड़ा बबीता बोच निखिल तन्वी और अंकित का मेल आया हुआ है एकता कॉलोनी रोहतक से। और ये देखिए सिटी मुंबई से अहमद भाई दुखनी या सफ़द जूही इकबाल इमरान अहमद ने मेल कर दिया है। आमना नसरीन आसमा पर ही राबिया मंतशा और आशु अहमद ने मेल किया हुए। जावेद अख्तर जी का भी मेल आ चुका है। आजमगढ़ से समशूल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा तूपा और आफरीन शमीम अख्तर के साथ इन्होंने मेल हमें किया है। और ये राधे कुमार विद्यार्थी जी का भी गुंजेश कुमकुम कुमारी साक्षी बुल्की और फलना झा के साथ संजय भी हैं साथ में और इन्होंने हमें बिहार से मेल किया हुआ है। इसके अलावा रविंद्र मोहनदास आशा देवी अनुराग मोहन के साथ किशनगंज बिहार से हमें मेल कर रहे हैं। रामराज जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने राजू भानु शंकर पप्पू मनीष नीरज मधु बजरंगी काका के साथ में हमें मेल रायबरेली पहाड़ीपुर गांव से किया हुआ है। और सुरेश नांग नारंग

सोनाली के साथ में सहारनपुर से आशा के साथ मेल कर रहे हैं। मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका का श्री गंगानगर राजस्थान से मेल आया हुआ है। संजय निगया जी का भी मेल नमन अपार के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से मेल आ चुका है। और ये डीके जी हैं यानी कि कमलेश मुकुल सचिन दीपांशु का मेल न्यू दिल्ली से आया हुआ है। शाहरुख नूर अंसारी का भी मेल फरियाद शकील मोइन तस्लीना ये मटकली बरेली से हमें मेल कर रहे हैं। और एक ही मेल कई बार आ जाते हैं दोस्तों, तो आपके ही मेल हम खोज नहीं पाते हैं। मनीराम पाल मलखान सिंह और सुधांशु हिमांशु का मेल हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आ चुका है। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

और प्यार में तो अच्छे अच्छे लोग कवि बन जाते हैं ना दोस्तों। 2:43 का वक्त, विजय मोहबिया जी का मेल आ चुका है। कविता सपना शिवी सलोनी ईश्वर पेंटर बाबू रामगंज खंड, कहाँ से इन्होंने लिखा है, खंडवा उत्तर मध्य प्रदेश से इन्होंने मेल किया है। और नवी हसन जी का मेल आया है, शहनाज नावेद हसन रसीद वारिस सुहेल हसन अनम यसफ का साथ में, दरवाजा एटा से सिकंदरा राव से मुनीब और इशरत का मेल है। सुधाकर राजे जाधव का भी मेल जाफराबाद से है। और प्रशांत राजे संचित प्रथमेश प्रणाली और सर्वद सानवी कल्पना के साथ में ये हमें मेल कर रहे हैं। और ये पूनम गगनेजा सुरेश जलालाबाद से विशाल प्रिया दिशानी निमित के साथ मेल कर रहे हैं। नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य लाडो कोयल पापा जी नानक चंद्र शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल डुग्गू भौमिक सिक्का और बाकी लोगों ने पानीपत से मेल किया है। गुरमीत सिंह मीता का भी मेल नई दिल्ली से आया हुआ है। ब्रिजेश विश्वकर्मा तारा सोनाली सोनम आशीष के साथ में पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मेल कर रहे हैं। हीरामणि वर्मा पारस मणि पुष्पेंद्र नोखेलाल के साथ भाटापारा से मेल किया है इन्होंने। और अहमद जी का मेल आ गया है। नूर आयशा अहमद इकबाल अखलाल आलमा आसमा आमना राबिया जूही सफद और इन्होंने हमें बलिया से मेल किया है। अदीबा इस्माइल लन्ने राजा फैज फिरोज आलम शाह आलम और मनोज बंसल जी का भी जस्ट अभी मेल हांसी से आ चुका है। किसी भी गीत में नाम आपका जरूर शामिल कर लेंगे। बोधराज खोरवाल जी का नई दिल्ली उत्तम नगर से कमला रानी भानु प्रकाश गीतिका के साथ में मेल आया हुआ है। मोहम्मद सादिक जी का मेल सनावत से आया है। और रणधीर गुप्ता का मेल बबीता रानी सत्यम सुंदरम के साथ ओखला संगम बिहार दिल्ली से मेल आया है। और ये संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत का मेल सीकर राजस्थान से आ गया है। उदय भानपाल जी का भी मेल हमें मिल चुका है, बुंदेलखंड से है। जय हिंद पाल दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश दिव्यांश के साथ ये हमें मेल कर रहे हैं। और किसका किसका मेल आ चुका है फटाफट आप तक पहुंचाते हैं। और पहुंचाने का तो प्रयास ये रहता है कि बहुत जल्दी से आप तक पहुंचा दिया जाए। बाबू अंसारी का महेंद्र दीपेन कुलदीप फैज अंसारी के साथ, अच्छा इन्होंने डेडिकेट किया है, बाराबंकी से ये हमें मेल कर रहे हैं। और ये मेल आ चुका है अक्रम हुसैन कभी, इन्होंने हमें कहाँ से किया है, ये सीतामढ़ी से मेल करते। साजिया शाहीन नाज नाजिया नूज़हत जहाँ के साथ में। और अब गाना पहुँचा देते हैं और उसके बाद मेल शामिल करेंगे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 2:54 और 42 सेकेंड हो चले और इसी के साथ इस प्रोग्राम को करना होगा वाइंड अप, लेकिन सभी के नाम सब तक पहुंचा देते हैं। रमेश चौहान जी का मेल आया हुआ है और मोहिनी और कल्पित के साथ जोधपुर राजस्थान से। अंशु गुप्ता का भी मेल नारायण प्रजापति धाम टिकैत नगर से इन्होंने मेल किया हुआ है। और जगदीश जी का भी मेल आ चुका है और अब किसका है ये किसका, संदीप मकर का भी मेल है, एमके राज हैं, सराफुद्दीन अंसारी हैं, नरेश मल्होत्रा हैं, आजमत अंसारी हैं और किसका मेल रह गया है, फटाफट सबके नाम पहुंचाते हैं। आफ्ताब अंसारी, मसरूर हसन और पूना जी नहाकर हैं, मोहम्मद शादाब हैं, अरविंद कुमार, दिलीप कुमार, सराफुद्दीन अंसारी, स्वर्ण बोधराज को और मुकेश कश्यप जी का मेल है। बहुत ढेर सारे मेल आ चुके थे। हिमकेश्वर साहू जी का भी मेल आया हुआ है, शिवम कसोधन है और गगनदीन थांदी हैं, फगुराम हैं, हरजिंदर सिंधे हैं, आर कुमार हैं, राधेश्याम शर्मा, बलवेश पवार, पंकज शर्मा और अनिल वर्मा के साथ में इतने ढेर सारे ईमेल्स आए थे दोस्तों। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की, लेकिन आप सभी लोग सुनते रहे 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जनपद में 516 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार चुनने का नतीजा है कि आज गोंडा का विकास हो रहा है, वह अपनी खोई हुई पहचान को वापस पा रहा है। मुख्यमंत्री ने जिले के धार्मिक स्थलों को याद करते हुए कहा कि यहाँ का अपना पौराणिक इतिहास है। श्री योगी ने कहा कि आज गोंडा सहित आसपास के जिलों के युवा सरकारी नौकरी हासिल कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। ऊर्जा मंत्री ने वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वाराणसी देश में 4वें स्थान पर है और इसे प्रथम स्थान पर पहुंचने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश के पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता विश्वास करती है और उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मंत्री राजभर ने बस्ती में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि श्री मोदी का 10 जून को 12 साल का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही वह आज़ादी के बाद लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अमरोहा में आज जिलाधिकारी नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील नौगावा सादात में जन शिकायतों को सुना गया। अधिकारियों ने राजस्व और पुलिस टीम को मौके पर जाकर समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
2: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
4: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

3:13 का वक्त, शालिनी आपके साथ प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में दोस्तों, और आप सभी लोग सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, जो कि क्या है, धड़कन लखनऊ की। लंच हो गया होगा, लंच का टाइम भी हो चुका है, तो अच्छी बात है आपने धीरे धीरे अपनी आदत को चेंज किया है, और अगर अभी तक नहीं लंच किया है तो समय निकाल कर ज़रूर कर ले। और हाँ, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने की तरफ ना रहें, कभी कदार की तो अलग बात।

है, क्योंकि देखिए गर्मी भी हो रही है, तो कोशिश करिए फ्रूट्स जरूर खाएं, क्योंकि नेचर हमें जो दे रही है उसको जरूर लेना चाहिए, है ना। और अब सुनते ही ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए।

0: डाटा टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।

दोस्तों 3:25 का वक्त हो चला है और आपको पता है कल है 7 जून यानी कि रविवार, और रविवार को हमारे एफएम रेनबो पर 12 बजे से 1 बजे के बीच, जी हाँ, हम दोपहर की ही बात कर रहे हैं, हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम जाता है जिसमें इस बार दौरा पड़ने पर घबराएं नहीं, सही कदम उठाएं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, जो कि एमटी बाल रोग पीजीआई चंडीगढ़ से की हैं, स्पेशलिस्ट हैं। और मुख्य बिंदु जो हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके उत्तर जान सकते, वो ये हैं कि दौरा क्या होता है, यानी कि जो फिट्स पड़ते हैं ना, अचानक से आदमी आधे हिस्से से कहते हैं कि लकवा मार गया या वो काम करना बंद कर रहा है, मुंह से झाग निकल आती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और दौरे पड़ने के समय क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अगर हम करेंगे तो वो जानलेवा हो सकती हैं, या कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर हम तुरंत डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाएं रोगी को, ये सारी जानकारी आपको डॉक्टर दीक्षा गुप्ता जी देंगी। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमें आप कॉल कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 0522-2238-845 और 2238-852, और इसके अलावा आपको मेल करना है, हमारी मेल आईडी fmakashwani@gmail.com है। और कहते हैं कि सही जानकारी ज़रूरी है, और अगर आपको सही जानकारी पता है तो आप लोगों की जान भी बचा सकते हैं। तो बस इसीलिए बस सुनते रहिए हमारा एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 3:34 और देखिए एक सेकंड रुक गए तो 34 मिनट भी हो गया। 3:34 ये टाइम जब था बड़ा अच्छा लगता है ना, इस तरह का जब घड़ी में टाइम बजता है और आपकी नज़र पहुंच जाए। चलिए वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं सतरंगी दुनिया शालिनी के साथ, और आपको बता दें कल 7 जून रविवार को, अभी बताया ना 12 से एक हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम की बात करी, अब हम बताने वाले हैं जो 11 बजे से प्रोग्राम आता है हमारा आज के मेहमान, और उसमें आज के मेहमान में हमारे साथ होंगे सुप्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री अनिल रस्तोगी जी। जी हाँ, तो सुनना मत भूलिएगा कल रविवार 7 जून को प्रातः 10 बजे से कार्यक्रम आज के मेहमान।
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुनि की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: story mein emotion hai, drama hai, tragedy hai.
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 3:48 हुए हैं और आप सभी लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में। शालिनी है आपके साथ और क्या ही कहा जाए, एक से एक बढ़कर प्यारे प्यारे से गीत हैं आपके लिए, सुनिए और एंजॉय कीजिए।

और इनका पिया तो घर आ गया, लेकिन शालिनी अपने घर जाने वाली है क्योंकि कोई आ चुका है आपके साथ रहेगा 4 बजे से। और मीठी सी आवाज़ है, कौन है ये आपको उसी प्रोग्राम में पता चलेगा। लेकिन शालिनी करती है टाटा बाय बाय, आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और झूमते रहिए इस गाने के साथ।

नमस्कार, आप सुनिए FM समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौरे में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आलंकन प्रस्तुत किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश भर के हवाई यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से दो निजी कैब कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन समझौतों के अंतर्गत प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों को निर्बाध किफायती और विश्वसनीय कैब सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनेगी। मिर्जापुर में बिजली उपभोक्ता के कथित अभद्र व्यवहार और शिकायतों के समाधान में लापरवाही के आरोपों के चलते जमालपुर विद्युत उपकेंद्र पर तैनात अवर अभियंता जेई गजानन चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिले के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता संज्ञान लेने के बाद अधीक्षक अभियंता अंकुर अवस्थी द्वारा की गई। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीना और सदर विधायक पंकज गुप्ता ने तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों को की सुनवाई की। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारियों को शिकायतें और उनकी शिकायतों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाने का निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस पर 232 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 26 शिकायतों का निस्तारण मौके पर जिलाधिकारी द्वारा किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। मुंबई में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और BCCI सचिव देवजीत सेकिया की अध्यक्षता में भारतीय टीम की चयन समिति की बैठक के बाद टीम की घोषणा की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम को 5 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए FM रेनबो इस घंटे श्वेता के साथ।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
1: लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई चिकी चक चोगिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़दुम चगड़दुम चिकी चक चो।
0: जी, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट चैनल 107 FM मेगाहर्ट्ज पर। इस घंटे आप बने रहेंगे मेरे यानी श्वेता राजवंशी के साथ। टाइम हो रहा है 4:04 और शुरू हो गया है प्रोग्राम यूथ वेव। और अब से कुछ ही देर में मैं आपको याद दिलाती हूँ 4:25 से आप सुनेंगे हमारा रोजगार समाचार जो दिल्ली केंद्र से प्रसारित होता है। सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए FM रेनबो 107 FM, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: मुस्कुराइए
1: कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ वेव। जी हाँ, क्या बातें होती हैं उनकी जो है वॉइसेस ऑफ टुडे एंड लीडर्स ऑफ टुमारो। जी हाँ, आपके साथ साझा करते हैं हम हमारे युवा साथियों से जुड़ी कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन, और उसके साथ ही साथ हम आपको सुनाते हैं कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स, जो एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि लाइफ में तो चैलेंजेस आएंगे बिल्कुल, पर हमारा और आपका काम है हर मैदान फतेह करना। जी तो सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए एफएम रेनबो इस घंटे श्वेता के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: 덩글 덩글.
1: जी हाँ दोस्तों, दंगल दंगल बेहतरीन आवाज़ दिलीर मेहंदी जी की आप सुन रहे थे। और ये गाना ऐसा है ना कि इतना मोटिवेशनल और एकदम से जोश भर देता है हमें। बिल्कुल, तो मैं आज यूथ वेव में आपसे ये कहना चाहूँगी कि चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, डांसर हो, कोडर हो, कंटेंट क्रिएटर, शेफ या एंटरप्रेन्योर, हर फील्ड में प्रैक्टिकल स्किल्स तो भाई मैटर करती है। और इसी विजन को स्ट्रांग बनाने के लिए इंडिया में चल रहे हैं कई प्रोग्राम्स, और उसमें से एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है स्किल इंडिया मिशन। जी हाँ, जिसके अंडर गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स भी हर लेवल पर चल रही है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया डिजिटल, जन शिक्षण संस्थान और कौशल बोध जैसे कई इनिशिएटिव्स यूथ को फ्यूचर रेडी बनाने की ओर एक बहुत ही सुनहरा पहल है। जी हाँ, इस तरीके के इनिशिएटिव्स के बारे में आप जरूर जानिए, इनके वेबसाइट्स को आप देखिए और उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल पढ़िए। और साथ ही साथ मैं आपको ये रिमाइंड करूंगी कि अब से कुछ ही देर में 4:25 से आप सुनेंगे रोजगार समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके बाद फिर मिलेंगे हम यूथ वेव में, क्योंकि हमारा सिलसिला तो जारी रहेगा बेहतरीन गानों के साथ, फुल ऑन इंफोटेनमेंट। जी हाँ, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM, जो है धड़कन लखनऊ की।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। स्टाफ नर्स एक पद, प्रयोगशाला तकनीशियन दो पद, तैराकी प्रशिक्षक एक पद, नेटवर्क प्रशासक दो पद, कैमरामैन दो पद और एक्सरे तकनीशियन एक पद। प्रत्येक पद के लिए वेतन, आवश्यक योग्यताएं, अन्य पात्रता मानदंड संबंधी विवरण और आवेदन प्रपत्र अकादमी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका पता है www.svpnpa.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट के विभिन्न विभागों में भारत सरकार की रेजिडेंसी योजना के तहत 88 सीनियर रेजिडेंट गैर शैक्षणिक पदों के लिए पात्र और इच्छुक भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 8 जून 2026। पूरी जानकारी के लिए विस्तृत विज्ञापन अवश्य देखें, जो संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है www.aimsrajkot.edu.in/recruitment। इस भर्ती से संबंधित आगे की सारी सूचनाएं, यहां तक कि अंतिम तिथि के विस्तार यदि हो तो सिर्फ संस्थान की वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उप प्रबंधक तकनीक 60 पद उपलब्ध हैं। आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी हेतु देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख रहेगी 15 जून 2026। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान देहरादून में कनिष्ठ शोध अध्येता के एक पद के लिए रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत विज्ञापन जिसमें परियोजना का ब्यौरा, फेलोशिप, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, वॉक इन इंटरव्यू की तिथि आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.wihg.res.in। निदेशक वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वे बगैर कारण बताए पदों की भर्ती को निरस्त कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सैनिकपुरी डाक सिकंदराबाद में इन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं। सिविलियन मोटर चालक सामान्य ग्रेड एक पद, बावर्ची एक पद, मल्टीटास्किंग स्टाफ 5 पद, आशुलिपिक ग्रेड 2 एक पद। विस्तृत पात्रता मानदंड और आवेदन पत्र के प्रारूप की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.indianarmy.nic.in। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नई दिल्ली में सदस्य के पद को भर

0: करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप, पात्रता और सेवा की शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है mopng.gov.in तथा pngrb.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दोस्तों प्रोग्राम यूथ वेव सुन रहे हैं आप, श्वेता है आपके साथ। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स की जो गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के अंदर चल रही हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट एंड स्किल इंडिया मिशन। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ और इनिशिएटिव्स के बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें से एक है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसे हम कौशल बोध स्किल डेवलपमेंट की योजना के अंतर्गत जानते हैं। कौशल यानी कि स्किल्स एंड बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग। तो ये गवर्नमेंट ने क्लासेस 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। ये कौशल बोध एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां बच्चे सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स सीखेंगे स्कूल में ही, जैसे कि गार्डनिंग, मशीन हैंडलिंग, टीम वर्क, बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन सर्विसेज, कम्युनिकेशन और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। है ना बहुत इंटरेस्टिंग? जस्ट इमेजिन, इतनी ढेर सारी और इतनी इंटरैक्टिव चीज़ें अगर आपको करने को मिले किसी के अंडर, आपको गाइडेंस के थ्रू एक अर्ली लाइफ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, तो आप बिल्कुल अवेयरनेस के साथ साथ अपने हुनर को और बढ़ा पाएंगे। इनफैक्ट आप अपने पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स एंड जो भी अगर नेगेटिव्स हैं तो उस पर भी काम कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप जानेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इन फैक्ट इट मीन्स दैट एजुकेशन सिर्फ किताब तक लिमिटेड नहीं है, इनफैक्ट अब ये क्लासरूम से लाइफ तक कनेक्ट हो रही है। जी हाँ, सुन रहे हैं आप एफएम रेनबो श्वेता के साथ। इस वक्त टाइम हो रहा है 4:32 और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गाने की ओर, आपके लिए बहुत ही सुंदर सा बेहतरीन सा गाना, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

तो दोस्तों, बात हो रही थी स्किल डेवलपमेंट की, और हमने अभी कुछ देर पहले कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात की। आप खुद ही सोचिए कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट खुद में है स्किल डेवलपमेंट। मतलब सारे झमेले, सारे स्ट्रेस भूल के, और ये जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में शुरू हुआ है, तो मतलब बच्चों के लिए कितना बढ़िया है कि भाई सब ये दीन दुनिया से हटो और लग जाओ, इंजॉय करो, और एंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ सीखो, अपने हुनर को पहचानो, और साथ ही साथ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से बच्चों की होगी इस पहल से। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि कई स्कूल्स ने तो क्लास थर्ड से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और ये कई लेवल पे हो रहे हैं, कई कॉलेजेस में शुरू हो गए हैं, कि ये एक्चुअली चाहते हैं कि वो सच में फ्यूचर रेडी बनाना चाहते हैं। और आप भी खुद सोचिए कि फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही है भाई हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी, तो फिर स्कूल्स कॉलेजेस पीछे क्यों छूटे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स के निर्देशानुसार कई स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने स्किल हब्स और कंपोजिट स्किल लैब्स भी बनवाना शुरू किया है, इनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना शुरू किया है, जहाँ पे स्टूडेंट्स रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टोरी टेलिंग, डिजाइन थिंकिंग और एंटरप्रेन्योर जैसे स्किल्स काफी अर्ली लाइफ में, काफी अर्ली स्टेजेस में सीखना शुरू कर सकते हैं। है ना कितनी मजेदार बात। जस्ट इमेजिन, एक बच्चे को इस तरीके से डेवलप होते देख आपको खुद ही कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से एकदम बेफिक्री के साथ हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने जो आपको मोटिवेट करेंगे लाइफ में कुछ करने का। माना वीकेंड है, आज सैटरडे है, पर भाई सैटरडे है तो शुरू हो जाइए एकदम फुल एंजॉयमेंट के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य को पहचानने के लिए। चलिए सुनते रहिए 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

भैया ऑल इज वेल। बिल्कुल, ये मेरा तो मंत्र है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों का भी मंत्र होगा कि जब भी कुछ हल्की सी उलझन होती है या लगता है कि ओ माय गॉड व्हाट विल हैपन, कब क्या होगा, हम तुरंत हाथ रख के बोलते हैं दिल पे ऑल इज वेल, सब ठीक होगा। जी हाँ, तो यूथ वेव लिसनर्स एक बात याद रखिए भाई, हमें तो सीखते रहना है और फ्यूचर उनका ही होता है जो सीखना कभी नहीं छोड़ते हैं। बात हो रही थी स्किल डेवलपमेंट में आज प्रोग्राम यूथ वेव में, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे आप स्टूडेंट्स हो, फ्रेशर हो या करियर स्विच करना चाहते हो, एक नई स्किल्स तो ज़रूर सीखिए। इनफैक्ट ये वक्त चल रहा है गर्मियों की छुट्टियों का, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से कॉलेज गोअर्स इस वक्त ज़्यादा प्रेशर में नहीं होंगे, छुट्टियां मना रहे होंगे, तो ये बहुत बेहतरीन एक समय होता है कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का। तो बिल्कुल आप ये लाइफ में एक नया मंत्रा जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसको मान लीजिए, ठान लीजिए और एकदम गांठी मान के रख लीजिए।

that you have to learn, upgrade and grow. राइट इसी पॉजिटिव वाइब के साथ मैं आरजे श्वेता राजवंशी वाइंड अप करती हूँ प्रोग्राम यूथ वेव को. 4:54 हो रहा है और गानों का सिलसिला जारी रहेगा. आपसे मैं कुछ ही देर में फिर मिलूंगी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM स्टेशन ऑफ द नेशन.

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियां का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं महोबा में परीक्षा को सकुशल एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी गजल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय जायजा लिया। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में निर्मित उप मंदिरों के शिखरों पर ध्वजारोहण के कार्य अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इसी क्रम में शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया, कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इटावा के तहसील सैफई में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने लोगों से शिकायतों के प्रार्थना पत्र प्राप्त किए और संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतों के समय से निस्तारण के निर्देश दिए गए। वहीं फरुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर की अध्यक्षता में भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भी प्रदेश के मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इसी बुलेटिन के साथ अगला बुलेटिन शाम के 6 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए FM रेनबो इस घंटे श्वेता राजवंशी के साथ।

0: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बस्ती में प्रदूषण का शिकार रही मनोरमा नदी की सफाई के लिए अपनी टीम के साथ जन आंदोलन खड़ा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से चर्चा में आए आकाश गुप्ता से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी प्रतिनिधि अमित सिंह।
1: कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, या कभी दुष्यंत कुमार की लाइन है जो बस्ती के आकाश गुप्ता पर सटीक बैठती। बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने

0: सात साथियों के साथ इन्होंने जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके कार्यों की चर्चा करके पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आकाश गुप्ता जी, जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं। आकाश गुप्ता जी, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप यह अभियान मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
1: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा, जानवरों के मल मूत्र और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी। किसी के यहाँ पे भागवत कथा, रामायण कार्यक्रम होता था तो वही लोग आकर अपना जो भी सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था, क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी। जब नदी इतनी गंदी हो जाएगी तो वहां पर पानी पीना तो दूर, वहां पे कोई जानवर दिखेगा भी। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर जैसे कि हमारी ये नदी है, हम लोग आके गर्मियों के मौसम में यहाँ आकर बैठते हैं, यहाँ पर हम लोग जब बैठते थे तो यहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आती थी। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहाँ पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं है? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज के टाइम पे नदी की सफाई ऐसी हो चुकी है, हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं।
0: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतनी गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई, ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ इस अभियान में?
1: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था, क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे। लेकिन हम लोगों ने, इन 7 लोगों की टीम ने नदी को इतना साफ कर दिया है कि अभी नदी का पानी जानवरों के पीने लायक हो गया।
0: आप जब उस समय नदी की स्थिति या उसकी हालात देखे तो कैसा लगा आपको?
1: पहले के टाइम पे?
0: जी, पहले
1: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी। हम लोग गर्मियों के मौसम में, हमारे यहाँ पे गांव का माहौल गांव है तो यहाँ पे लाइट बहुत कम ही रहती है, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
0: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
1: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी, सवाल आने लगे ढेर सारे, और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते, उसके बाद 4 बातें भी सुनाते हैं।
0: इस अभियान में आप 68 दिन हो गए आपको नदी की सफाई करते, गांव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
1: गांव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गांव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम 7 लोगों की टीम है, हम 7 ही लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं। अगर और भी लोग जुड़ते हैं तो हम भी मानेंगे कि हमारा कार्य भी सफल हो रहा है और सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
0: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
1: अभी तक कोई भी सहयोग नहीं रहा। हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो आप लोग योगी जी को टैग करके जितना हो सके शेयर किए, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी 1 दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और अभी उस पर 2 करोड़ से ज्यादा का व्यूज है और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
0: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
1: जब हमने स्टार्ट किया था पहले दिन से तो हमें नहीं लगा था कि इतनी साफ हमारी मनोरमा नदी हो जाएगी जैसे कि अभी हो चुकी है, और ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का।

0: लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है, बिना एक भी दिन स्किप किए हुए, बिना एक भी दिन रुके हुए, बिना कोई बहाना बनाए।
1: आपकी मेहनत तो रंग लाई, लेकिन आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनरामा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते, तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है, क्योंकि अब इसे साफ करने में कई सालों का समय लग जाएगा। जब तक बहुत सारे लोग हमें जुड़ेंगे नहीं हमसे, तब तक ये नदी पूरी साफ नहीं हो पाएगी।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए, तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हमें बहुत ही ज्यादा गौरव महसूस हुआ, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा?
0: हमारी टीम पर अब ये प्रभाव पड़ रहा है कि और लोग साथ में जुड़ रहे हैं। और
1: क्या ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई आपकी?
0: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: इसमें क्या आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है उसको हमें बनाने का ना अधिकार है ना बिगाड़ने का अधिकार है। तो जैसे हमें नेचर ने दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, और ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बस्ती में प्रदूषण का शिकार रही मनोरमा नदी की सफाई के लिए अपनी टीम के साथ जन आंदोलन खड़ा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से चर्चा में आए आकाश गुप्ता से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी प्रतिनिधि अमित सिंह।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
9: दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और आ गए हैं हम लेके प्रोग्राम थीम ट्रैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेगमेंट में। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट चैनल 100.7 FM मेगा हर्ट्ज़ पर, और इस घंटे आप बने रहेंगे मेरे यानी श्वेता राजवंशी के साथ। टाइम हो रहा है 5:12, और आज की थीम ट्रैक में भाई है कुछ खास, क्योंकि हम लेके आए हैं। तो आज हम बात करेंगे उन सॉन्ग्स की जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड फॉर्मूला से बिल्कुल अलग, बिल्कुल हट के, कोई एकदम मतलब कि जो कन्वेंशनल म्यूजिक और कन्वेंशनल सॉन्ग्स होते हैं उनसे एकदम अलग, जैसे कि कोई अजीब लिरिक्स के साथ सॉन्ग्स आए या किसी ने अनयूजुअल म्यूजिक यूज़ किया। और कुछ ऐसे थे भाई जिनके बारे में एक्सपर्ट्स ने तो कह दिया ये नहीं चलेगा, लेकिन ऑडियंस ने कहा बॉस रिपीट पे लगाओ। जी हाँ, जिक्र होगी उन आवाज़ों की जो बॉलीवुड के रेगुलर प्लेबैक सिंगर्स जैसी नहीं लगती थी। ना टिपिकल हीरो वाली वॉइस थी उनके पास, ना ही कोई कन्वेंशनल स्टाइल। फिर भी इन सिंगर्स ने दिलों पर राज किया। जी हाँ, वो मेरे आपके हम सबके फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं। तो तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल काउंटडाउन के लिए, जहाँ हर

नहीं के साथ मैं बताऊंगी आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी। जी हाँ, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मेरे साथ वॉल्यूम हाई रखिए, स्माइल और भी हाई रखिए। एंजॉय एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM स्टेशन ऑफ द नेशन।

5:18 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है FM Top 10। आप बने रहेंगे श्वेता के साथ इस घंटे, सुनते रहिए FM Rainbow 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, तो आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में इतना बेहतरीन गाना। कितनों को याद आ गया वो टाइम जब ये गाना लॉन्च हुआ था और ये बन गया था हमारे देश का एक न्यू एंथम। जी, चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, हर जगह ये सॉन्ग तो ज़रूर बजता था, है ना। और डांस फ्लोर्स में तो डेफिनेटली कितने लोग नाचते थे। इनफैक्ट उस वक्त तो इंटरनेट इतना नहीं पॉपुलर था ही नहीं इनफैक्ट, मगर अगर होता तो डांस रील्स की तो भाई लड़ियाँ ही लग जाती। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर, मुझे याद आया वो टाइम, क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम हु यूज़ टू परफॉर्म ऑन दिस सॉन्ग। आई यूज़ टू लव द वॉइस एंड दिस सॉन्ग, बिकॉज गाना ही इतना खूबसूरत है, उसका मतलब ही इतना मीनिंगफुल, इतना सोलफुल सॉन्ग और इतनी सोलफुल आवाज़ में। जी हाँ, तो बात करते हैं, ये वो टाइम है जब ऋतिक रोशन लॉन्च हुए थे, राइट। ऋतिक रोशन इस वक्त लॉन्च हुए थे और उनके साथ ही साथ ये सॉन्ग भी आया। और हम लोग ये चीज नहीं भूलेंगे कि ये जो सिंगर की आवाज थी, उसने भी सबका ध्यान एक ही बार में खींच लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लकी अली की। लकी अली की रिलैक्स्ड और कन्वेंशनल जो आवाज, उनकी जो इस सिंगिंग ने भाई लोगों के दिलों के तार छेड़ दिए थे। उस वक्त बॉलीवुड के लिए ये बहुत ही अनयूजुअल था। लकी अली एक ट्रेंड बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर नहीं थे। ये मतलब ये देखिए कितनी कॉन्ट्रास्टिंग सी बात है कि वो एक ट्रेंड सिंगर नहीं थे, बट स्टिल उस रूहानी आवाज़ को जब भी कोई सुनता है तो एकदम पिघल सा जाता है। उनकी इसी नेचुरल स्टाइल ने ही उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई इंडस्ट्री में। और फिर कई सालों बाद जब इंडस्ट्री में एक समय आया कि भाई वो दौर चल रहा था जब सिर्फ और सिर्फ डांस ट्रैक्स बन रहे थे, उस समय के दौरान, उस समय के बीच एक ट्रैवल सॉन्ग आया। और वो जो ट्रैवल सॉन्ग था वो डायरी के पेजेस सा लगता था, मतलब उसे सुनो तो एहसास होता था जैसे लगता था कि हम निकल पड़े हैं किसी सफ़र पर, इमेजिनेटिव सफ़र पर। इतना खूबसूरत सा गाना, क्योंकि AR रहमान ने स्पेसिफिकली ये कह दिया था कि भाई इस सॉन्ग में लकी अली को ही मैं चूज करूँगा, और किया भी, क्योंकि उनकी जो आवाज़ में वो जर्नी का फील था, ये वो ही जस्टिस दे सकते थे। बिल्कुल आपने सही फरमाया, हम सुनते हैं हमारा ये नेक्स्ट सॉन्ग जो आपको ले जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर। Enjoy and keep listening to 100.7 FM धड़कन लखनऊ की श्वेता के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
6: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
5: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

तो दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है 5:32 और आप सुन रहे थे खूबसूरत से गाने एक खूबसूरत आवाज में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लकी अली की और उनके गानों की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये टेक्निकली बॉलीवुड सॉन्ग नहीं है, जो भी आपने सुना ओ सनम तेरी कसम, बिल्कुल ये एक इतनी खूबसूरत सी आवाज़, एक इतना खूबसूरत सा गाना जब आया था तो मतलब हर चार्ट में, चाहे वो कहीं भी आते हो या कहीं बजते हो किसी भी प्रोग्राम में, ये टॉप पे होता था। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या कोई प्रोग्राम हो या कोई फंक्शन हो, ये गाने के बगैर तो जैसे लगता था कि कुछ अधूरा है। इनफैक्ट लकी अली के कोई भी गाने, आप किसी भी गाने की बात कर ले, है ही कोई एक अलग सा चार्म। इस ट्रैक ने पूरी जनरेशन की प्लेलिस्ट ही मतलब एकदम बदल दिया, न्यू डिफिनेशन दे दी, क्योंकि इनके अक्सर गानों में ना कोई हैवी ऑर्केस्ट्रेशन नहीं होता था, ना कोई फ्लैशी वीडियो, स्पेशली इस सॉन्ग में ना ही कोई फ्लैशी वीडियो था, ना ही कोई डांस था। था तो सिर्फ एक चीज जो थी, उनकी आवाज, उनकी एक खूबसूरत बेहतरीन रूहानी सूफियाना एकदम अलग सी आवाज और एक गिटार और ढेर सारी फीलिंग्स। बिल्कुल जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं उन आवाजों की कहानियां जिन्होंने बॉलीवुड को एक नई डायरेक्शन दी और साथ ही साथ हमारे युवाओं में एक गाने की न्यू, मतलब हमारी जनरेशन में एक गाने का नया आयाम खोला। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM पे, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए मेरे साथ यानी श्वेता राजवंशी के साथ इस घंटे ओनली ऑन 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, तो आप सुन रहे थे खूबसूरत सा गाना और एक खूबसूरत सी आवाज में। देखिए, इनका इंट्रोडक्शन तो किसी भी लफ्जों के मोहताज में नहीं है और मैं कुछ भी बोलूं वो कम है, क्योंकि है ही इतनी पहुंची हुई आवाज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो साल था 2005 जब ये सॉन्ग आया था, और ये जब सॉन्ग आया तो एवरीबडी वाज शॉक्ड, क्योंकि आवाज ही एकदम अलग थी। जहां बॉलीवुड में उस वक्त एक स्मूथ रोमांटिक आवाजों का दौर था, मतलब गाने जो आ रहे थे एक अलग ही रूहानी और एक खूबसूरत अंदाज में आते थे, रोमांटिक जो ट्रैक्स थे वो छाए हुए थे, वैसी ही आवाजें छाई हुई थी। लेकिन तब ही एक अलग सी रॉ आवाज ने एंट्री ली। इस आवाज में था एक सूफियाना अंदाज। जी हाँ, वो टाइम था

रही थी? बिल्कुल सही फरमाया, कैलाश खेर। इन्होंने जब बॉलीवुड की इंडस्ट्री में एंट्री ली तो इनकी वॉइस को तो पहले तो शुरुआत के समय में इसको रेडियो फ्रेंडली नहीं माना जाता था, क्योंकि आवाज़ भाई थी ही इतनी हैवी, इतनी अलग, इतनी बेहतरीन, एकदम मतलब कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इसी यूनिकनेस ने उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया, गानों का शहंशाह बना दिया। इन्होंने अपने करियर के इनिशियल डेज में काफ़ी स्ट्रगल्स देखे, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा, और आप लोगों ने ज़रूर ऐसे उनके कई एपिसोड्स एंड प्रोग्राम्स देखे होंगे जहाँ उन्होंने ये शेयर किया है लोगों से, अपने फैन से, कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, कितनी स्ट्रगल्स के बाद, कैसे उतार चढ़ाव जिंदगी के होते हुए एकदम घूमते रहे, गोल गोल गोल गोल घूमते घूमते वो पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो भाई सबको पीछे छोड़ दिए और इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही आवाज़ छा रही थी बुलंदियों पे, वो थी कैलाश खेर की आवाज़। जी हाँ, और एक और आवाज़ थी जहाँ एक तरफ ये बुलंदियों को छूती हुई आवाज़ थी, वहीं दूसरी तरफ एक और आवाज़ थी जो धीरे धीरे से बॉलीवुड के गलियारे में होते हुए अपनी जगह बना रही थी। ये एक बैंड जिसे हम लोग सिल्क रूट बैंड कहते थे, उसके फॉर्मर सिंगर, अगर आप जानते होंगे तो आपने गेस कर लिया होगा। जी मैं बात कर रही हूँ मोहित चौहान की। जी हाँ, उनकी आवाज़ मेन स्ट्रीम आवाज़ में पहचानी जाती थी, मतलब क्योंकि एक तो वो बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक गाने गाते हैं, तो उन्होंने एक पहचान धीरे धीरे अपनी बना ली थी। पर ये बॉलीवुड के नाम से थोड़ी अलग थी। आपके रेडियो सेट्स पर आने वाले इस गाने ने प्रूफ किया कि सॉफ्टनेस भी पावरफुल हो सकता है। बिल्कुल ओके, सुनते हैं ये बेहतरीन सा गाना ओनली ऑन 100.7 FM धड़कन लखनऊ की। बने रहिए श्वेता के साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

जी हाँ, तो आप सुन रहे थे इतनी खूबसूरत सी आवाज, एक खूबसूरत सा गाना मायरी। जानते होंगे कि इस गाने के पीछे किस आवाज का नाम है। जी मैं बात कर रही हूँ पलाश सेन। बिल्कुल मायरी फिल्म सॉन्ग नहीं था, फिर भी हर घर में सुना गया। इनफैक्ट एमटीवी जनरेशन के लिए गाना तो एक इमोशनल एंथम बन गया। भाई ये वो टाइम था जब मैं भी अपने कॉलेज डेज में थी, एंड इवन आई ऑल्सो यूज टू गेट सो एक्साइटेड एंड आई यूज टू चेरिश दिस सॉन्ग। मतलब मुझे बेहतरीन गानों में से एक ये एक गाना और ये एक आवाज़ लगती थी। हालांकि बहुत ही अनकन्वेंशनल गाने इन्होंने गाए हैं डॉक्टर पलाश सेन ने, और इनका करियर भी बहुत ही अनकन्वेंशनल रहा है। जी प्रोग्राम चल रहा है टॉप 10 और आप सुन रहे हैं उन आवाज़ों की कहानियाँ जिन्होंने बॉलीवुड को एक नई डायरेक्शन दी। ऐसे ही एक ट्रेडिशनल कव्वाली बैकग्राउंड से आने वाले सिंगर की आवाज को बॉलीवुड ने इनिशियली रिस्की चॉइस माना। भाई जाहिर सी बात है, थोड़े से जो लीक से हटके लोग आते हैं उनके लिए हर काम बेहद पेचीदा हो जाता है। बड़ा यही तो मतलब एक कहते हैं ना, याद करने वाली चीज भी होती है कि जो स्ट्रगल होती है ना, जो एंट्री पॉइंट होता है, सबका एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। और वही कहानियाँ वही किस्से लोगों को मोटिवेट करते हैं। और इसी के साथ ये जो सिंगर हैं इन्होंने भी एक लंबी छलांग मारी और इन्होंने अपना एक इतना बड़ा नाम बनाया इंडस्ट्री में और लोगों के दिलों पे राज किया। उसी के साथ जब ये गाना आया, माइंड यू ये गाना आप सुनिएगा अभी, सब बदल गया। इतनी रूहानी आवाज, इतना खूबसूरत अंदाज। चलिए देर किस बात की, सुनते हैं अपना अगला गाना टॉप 10 में।

दोस्तों ये गाने जो आप सुन रहे हैं कभी आउटडेटेड नहीं हो सकते. क्यों? मैं सही कह रही हूँ ना? आज भी जब दुनिया ऑटो ट्यून और वायरल बीट्स पर बिजी है और हम सीक्रेटली चाहे जो हो जाए इन्हीं मेलोडीज की तरफ ना लौट कर आते हैं और यही लिरिक्स सुनते हैं, क्योंकि भाई ये गाने ही तो हैं जो हमें इतने मीनिंगफुल लगते हैं. इनकी म्यूजिक इतनी सोलफुल है और इमोशंस भी ना इस गाने के रियल से लगते हैं. कहते हैं ना, हर जमाने में कुछ आवाजें ट्रेंड फॉलो नहीं करती, वो ट्रेंड क्रिएट करती हैं. ये वही सॉन्ग्स हैं जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि ये कभी मास हिट्स बनेंगे, लेकिन आज ये कल्ट क्लासिक्स बन चुके हैं. चलिए इसी के साथ मैं वाइंड अप करती हूँ प्रोग्राम FM Top 10 को. इजाजत दीजिए मुझे, कुछ ही देर में फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। वहीं विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य और शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों, नई शिक्षा नीति तथा विकसित भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका का सार्थक चर्चा किया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल के संयुक्त मंडलीय खरीक उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन के में आज प्रदेश का किसान खुशहाल है, उनकी उपज का उचित मूल्य उन्हें मिल रहा है। श्री शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला प्रदेश बन गया है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 8 जून से 11 जून तक सभी विकास खंडों में जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में से यात्राएं निकाली जाएंगी। ब्रिक्स इंडिया के विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। उन्होंने शिल्प संग्रहालय का भ्रमण किया, साथ ही वाराणसी की सांस्कृतिक परंपराओं और शिल्प विरासत पर विशेष रूप से तैयार की गई एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति को भी देखा। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय हस्तशिल्पों में गहरी रुचि दिखाई और कारीगरों के कौशल और उत्कृष्टता की सराहना की। इस दौरे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रदर्शित करने और ब्रिक्स देशों के साथ सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने आज परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फरुखाबाद पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी ने विद्यालय में छात्राओं को उनके अधिकारों, साइबर अपराधों से बचाव तथा हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूक किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम को 7 बजे प्रसारित होगा। तब तक सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो श्वेता के साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: दोस्तों वेलकम बैक, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे शहरे नवाबों। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 FM मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये वक्त होता है शाम का जब आप इंजॉय करते हैं आपका शो, आपका प्रोग्राम शामे या वक्त। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता राजवंशी, इस घंटे एक बार फिर से आपकी खिदमत में आपके साथ। स्वागत करती हूं आप सबका प्रोग्राम शामे अवध में। भाई शामे अवध प्रोग्राम है और यहां पे लखनऊ का दिल धड़कता है। हां जी, बात होगी तमाम अपडेट्स की, उससे पहले लेट्स टेक अ क्विक म्यूजिकल ब्रेक एंड यू नो इट, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

मतलब कि कह रह सकते हैं कि इस वक्त गर्मी चरम सीमा पर है। और ठीक है, कुछ दिन में हमारे यहाँ भी बारिश की दस्तक हो जाएगी, तब तक हम भी इंतज़ार कर लेंगे। क्या हुआ भाई, हम लोग हैं ही बड़े दिल वाले। कोई बात नहीं, इस घंटे आप बने रहेंगे मेरे यानी श्वेता राजवंशी के साथ। टाइम हो रहा है 6:20। दोस्तों, इस हीट वेव में आप ना ये ध्यान रखिए कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, बिकॉज इस चीज़ का बहुत ज़रूरी आपको ध्यान देना है। और मैं बस एक आपको गाना बजाने से पहले एक चीज़ बोलूँगी कि चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, आप कभी भी निकल रहे हो उस गर्मी में, वाटर बॉटल एंड कुछ हैंकी या कुछ ऐसा ज़रूर अपने साथ लेकर निकलें। और दोपहर में निकल रहे हैं तो स्कार्फ या सनग्लासेस, जिससे कि आप अपने आप को और साथ ही साथ इन गर्मियों की छुट्टियों में जो बच्चे खेल रहे हैं या बड़े बूढ़े बाहर निकल रहे हैं उनका आप ध्यान रख सकें और उस हीट वेव से उनको बचा सकें। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए, बिकॉज सावधानी में ही समझदारी है। तो इंफरटेनमेंट बरकरार रहेगा क्योंकि आप हैं मेरे साथ यानी श्वेता के साथ। तो चलिए, लेट्स एंजॉय सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ओनली ऑन 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

तो दोस्तों वीकेंड पर आप बाहर निकल ही रहे होंगे भाई, गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं और वीकेंड है तो फिर बहुत लोग इसी इंतजार में रहते हैं कि यही मौका है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ निकल लिया जाए, थोड़ा घूम घूम आ जाए। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, पीक आवर्स में आप निकल रहे होंगे अगर, इनफैक्ट अभी ये शाम का वक्त है तो मेट्रो फ्रीक्वेंसी जो इस वक्त है ना लगभग हर 5 से 7 मिनट पर चल रही है, तो आप अवॉइड करिए अपने अपने ट्रांसपोर्ट ले जाना इस वक्त, स्पेशली अगर आप जा रहे हैं अपने लखनऊ के इंटीरियर्स में कंजस्टेड एरिया में, क्यों ना मेट्रो ले ली जाए, राइट। और सिटी में यूपी मेट्रो की अवेयरनेस कैंपेन की अगर बात चलें तो ये जोरों शोरों से चल रहा है, जहां सिटीजन्स को इको फ्रेंडली ट्रैवल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। भाई ज़रूरी भी है, क्यों क्या कहते हैं। और हजरतगंज, चारबाग और आलमबाग साइट पर शाम में ट्रैफिक हैवी रह सकता है। भाई ये तो है ही हमारे वो एरिया जहाँ पे चाहे वीकेंड हो, चाहे वीकडे हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों का तांता लगा रहता है और भीड़ तो लगी रहती है, स्पेशली शहीद पथ और पॉलीटेक्निक क्रॉसिंग के आसपास। भाई सैटरडे इवनिंग है, ओवर क्राउडेड एरिया है, ओवर क्राउडेड तो रहेगा ही है ना, तो बिल्कुल घर से निकलने से पहले आप रूट चेक कर लीजिएगा और तभी निकलिएगा। एक हिदायत देती हूँ, ड्राइव सेफली, राइट। तो इस घंटे आप बने रहेंगे श्वेता राजवंशी के साथ और टाइम हो रहा है 6:28 और बढ़ते हैं हम अपने अगले से खूबसूरत से ट्रैक की ओर। सुनते रहिए हर रात 7 FM, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
4: तो दोस्तों, वीकेंड ट्रैवल को देखते हुए इस वक्त चारबाग रेलवे स्टेशन और कुमती नगर टर्मिनल पर पैसेंजर्स रश जो है ना एक्सपेक्टेड है। जाहिर सी बात है, छुट्टियों का टाइम चल रहा है और लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, वीकेंड भी है, तो आपको रश तो मिलेगा ही। तो अगर आप ट्रेन जर्नी कर रहे हैं या आपको कोई काम है जहाँ पे आपको छोटी सी ट्रैवल के लिए निकलना है, तो स्टेशन थोड़ा अर्ली पहुँचना बेटर रहेगा। आप जानते हैं आप शहर लखनऊ में हैं और वीकेंड पे मेन जो यहाँ पे सिटी सेंटर्स हैं वो क्राउडेड हो सकते हैं, क्राउडेड मिल सकते हैं। तो बिल्कुल

आप थोड़ा अर्ली निकलिए, और साथ ही साथ आप ज़रूर अपना जो ट्रेन का स्टेटस है या जो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म डिटेल्स हैं, ये सब पहले से ही चेक करके निकलिए। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो सिटी कनेक्टिविटी को और फास्ट बनाने के लिए हम लोग इतने दिनों से ये बस सुन रहे हैं ना, कानपुर लखनऊ अवध एक्सप्रेस प्रोजेक्ट का, ये भी काफ़ी डिस्कशंस में चल रहा है। मतलब मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, जल्दी से ये जो है ना ये खुले और फिर हमारा जो ट्रैवल टाइम है ना वो इतना कम हो जाएगा, और मतलब इतनी बेहतरीन ये बढ़िया रूट होगा कि मतलब मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। बिकॉज़ आना जाना तो लगा ही रहता है भाई, लखनऊ कानपुर ये तो आप जानते हैं, हम जानते हैं। तो साथ ही साथ एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगी कि लखनऊ सिटी को ना ईवी फ्रेंडली और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए मल्टीपल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इनिशिएटिव्स पर काम किया जा रहा है ना, ये कायदे की बात। तो बिल्कुल, जहाँ हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसी ओर ये कदम है, जहाँ पे हमारे शहर लखनऊ में ये कदम उठाया जा रहा है जिससे कि हम ईवी फ्रेंडली हो सके और थोड़ा सा हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सके। भाई देखिए, घूमना घुमाना चलता रहेगा और हम घूमने भी निकलते क्यों हैं भाई, अपनी कुछ दूरियों को मिटाने के लिए, दूरियों को ख़त्म करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी और आपकी इस दूरियों को ख़त्म करते हैं और सुनते हैं अगला प्यारा सा खूबसूरत सा सॉन्ग ओनली ऑन 100.7 पे। सुनते रहिए इस घंटे, आप बने रहेंगे मेरे यानी श्वेता राजवंशी के साथ।

तो दोस्तों प्रोग्राम सुन रहे हैं श्यामी अवध और आप हैं श्वेता के साथ। तो मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे देती हूँ अपने शहर लखनऊ के बारे में। बात हो रही थी ट्रैवलिंग की, बात हो रही थी सिटी ट्रैफिक की, बात हो रही थी ईवी ट्रैवलिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी मेट्रो कम्यूटर्स के लिए गुड न्यूज है कि सिटी का ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर फ्यूचर एक्सपेंशन मोड में है। भाई ये तो अपकमिंग न्यूज जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज ये फेज जो लॉन्च होने वाला है, जो ये प्लानिंग जो चल रही है, ये ड्राइवरलेस ट्रेन की मतलब को लेके आएगा। इसकी प्लानिंग की जा रही है भाई। ये तो मतलब अभी तक आपने सुना है टेस्ला गाड़ियाँ, अब भाई हम लखनऊ वाले तो मेट्रो ये लाने वाले हैं जो ड्राइवर लेस होंगे। माय गुडनेस, दिस इज सो सुपर, दिस इज फैंटास्टिक न्यूज़। और भाई

समर्स में इसके चलते रश चल रहा है हर तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ट्रैवलिंग के वक्त ज़रूर चेक करके निकले, क्योंकि क्राउडेड एक्सपेक्टेड है, क्राउडेड प्लेसेस पे स्पेशली। और वैसे भी सिटी में इतने इवेंट्स होते रहते हैं, और चाहे आप मॉल्स चले जाएं, चाहे आप अमीनाबाद चले जाएं, हजरतगंज चले जाएं, चारबाग चले जाएं, हर जगह आपको लोग तो मिलेंगे, बेशुमार तादाद पे लोग निकल ही रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो आप भी अपना ध्यान रखिए और जब भी बाहर निकलिए सब प्री प्लान्ड हो के निकलिए। और साथ ही साथ अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो ध्यान रखिए कि आप अपनी जो सहूलियतें जो आपको रखनी है चीज़ें, स्पेशली पानी और कुछ खाने की चीज़ें ज़रूर कैरी करें। और साथ ही साथ वो बच्चे जो इस वक्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए ये मैं एक सलाह दूंगी कि कई ढेर सारे शहर में काउंसलिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, और साथ ही साथ आप अप्रोच भी कर सकते हैं काउंसलर्स को जो आपको करियर रिलेटेड सजेशंस दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक सुविधा मिलती है जहाँ पे आप जो करना चाहते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं उस बारे में, एजुकेशन फील्ड में, करियर फील्ड में, क्योंकि ये ज़माना तेज़ी से बदल रहा है और हमारे पास इतने ढेर सारे करियर ऑप्शंस हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। आज के दौर पे हमें बेहद ये ज़रूरी है, ये बेहद मतलब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें एक राइट गाइडेंस जो है वो चाहिए। और कितने ढेर सारे हमारे सामने फील्ड्स हैं, करियर फील्ड्स हैं, उसको चुनने के लिए भी एक सही सलाह, एक सही सपोर्ट चाहिए जो एक एक्सपर्ट ही दे सकता है। तो डेफिनेटली आप काउंसलर्स को अप्रोच करिए और जो करियर फेयर्स होते हैं शहर में आप वहाँ जाइए, विज़िट करिए एंड अपनी इन्फॉर्मेशन तगड़ी करिए, प्रॉपर करिए और अपने भविष्य का सही चुनाव कीजिए। जी हाँ, तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, इसी के साथ हम सुनते हैं आपके रेडियो सेट्स पे आने वाला ये अगला गीत जो इतना खूबसूरत है ना कि ये हमारी शाम ही बना देता है, क्योंकि भाई चाहे इमेजिन कर लो चाहे सुन लो, ये गाना तो हम सबके फेवरेट एक्टर का है और ये गाना भी जिन्होंने गाया है, क्या हा क्या खूबसूरत आवाज़ है भैया। चलिए सुनते हैं, लुफ्त उठाते हैं, मज़े लेते हैं इस प्यारे से गाने की जो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पे ओनली 100.7 FM। सुनते रहिए श्वेता के साथ।

दोस्तों इस घंटे आप बने थे श्वेता के साथ. टाइम हो रहा है 6:56 और चलिए इसी के साथ मैं वाइंड अप करती हूँ हमारा आज का प्रोग्राम शामी आवाज को. इजाजत दीजिए मुझे, कुछ ही देर में हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम एफएम, हेलो एफएम में. यस, और बने रहिए श्वेता के साथ. मिलते हैं टॉप 10 न्यूज ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 एफएम, स्टेशन ऑफ द नेशन.

नमस्कार, अब सुनिए यूपी की दिन भर की टॉप 10 न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। केंद्रीय वित्त मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी महाराजगंज में प्रचार और शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री चौधरी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीक उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला प्रदेश बन गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने वाराणसी में बताया कि नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान पा रहा है। प्रदेश के पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को 12 साल का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही आजादी के बाद लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। उन्होंने वाराणसी स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल का भी दौरा किया। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए आज विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 8 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए FM Rainbow 100.7 FM श्वेता के साथ।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दोस्तों शाम के साथ बज चुके हैं और आप बने हैं श्वेता राजवंशी के साथ और इस घंटे आप बने रहेंगे मेरे साथ। प्रोग्राम शुरू हो गया है हेलो एफएम, जहां आप ही चाह रहे होंगे कि भाई हमारा फोन लग जाए आज, जी हमारी भी फरमाइश पूरी हो जाए। बिल्कुल आप यही चाह रहे होंगे तो बिल्कुल होगी आपकी ख्वाहिश पूरी और आपकी होगी फरमाइश पूरी अगर आप फोन लगाएंगे तब ना। तो जल्दी से नंबर घुमाइए, फोन मिलाइए, डायल कीजिए, हम तक पहुंचिए और ट्रिंग ट्रिंग करके हमें बोलिए हेलो। तो ज़रूर हम बैठे हैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए और आपकी आवाज़ को सुनने के लिए। तो आप कहीं भी हैं जल्दी से रुक जाइए और हमारे नंबर्स पे डायल कीजिए, हम तक पहुंचिए और आपको पता है किसे बात करनी है। आज है ऑन एयर श्वेता राजवंशी। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस प्रोग्राम में और आपको सुनाते हैं तड़कता भड़कता पहला गाना सिर्फ आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर ओनली ऑन 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

0: बिल्कुल, दिल में हमारे रहने वाले आप हैं और सिर्फ आप हैं। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फरमाइश और आपकी ख्वाहिश पूरी हो तो जल्दी से डायल कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनका नाम सुनते हैं। हेलो हेलो, हेलो हेलो,
1: हेलो
0: क्या आप मुझे सुन सकती हैं?
1: जी मैम, आवाज आ रही है?
0: हाँ जी, अब आई आपकी आवाज।
1: नमस्ते मैम
0: नमस्ते,
1: जी,
0: आप
1: नाम सुषमा
0: अपना?
1: यादव, रही बाबा लखनऊ से बोल रहे।
0: सुषमा यादव।
1: जी मैम,
0: ओके, हाँ जी सुषमा जी,
1: जी मैम,
0: तो बताइए, आपने हमें याद किया, आप हमें बताइए कि आप हमारी रेगुलर लिसनर हैं।
1: जी मैम,
0: क्या बात है, तो आपकी ख्वाहिश तो आज हम पूरी करेंगे। आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: जीना सिर्फ तेरे लिए,
0: यही
1: बेटर
0: गाना
1: सॉन्ग।
0: क्यों, किसके लिए आप जी रही हैं? जीना
1: मैं
0: सिर्फ
1: तो रेनबो के लिए, हस्बैंड के लिए, परिवार के लिए।
0: क्या बात है अच्छा जी,
1: मैम जिस दिन कॉल नहीं लगती है, पर दूसरी बार कॉल लगी है मैम, 6 महीने से ट्राई करते हैं।
0: देखिए कितनी खूबसूरत बात है, आज आपकी कॉल लग गई और आज आप पहली कॉलर
1: पहली
0: हैं,
1: बार आपसे मैम बात हो रही है। जी
0: हमसे भी पहली बार बात हो रही है और आपकी आज के प्रोग्राम में भी पहली कॉल लगी है,
1: जी जी मैम,
0: यही
1: ट्राई
0: होता है
1: कर रहे थे,
0: इत्तेफाक।
1: लग गया कॉल,
0: हाँ जी,
1: लकी है मैम आप, हम भी।
0: हाँ मैं भी आपके लिए लकी हूँ, बिल्कुल। तो इसी बात पे हम आपका फेवरेट सॉन्ग तो बिल्कुल हम प्ले करेंगे, मैंने क्यू
1: और
0: करके
1: मैम
0: रख
1: आप
0: दिया है।
1: बताइए, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी आवाज़ सुन के और भी अच्छी हो गई हूँ। भाई देखिए, जब हमें कॉलर्स इतने प्यार से कॉल करते हैं और पूछते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं जी, तो आपकी ये फरमाइश किन किन को आपको पहुँचानी है, नाम आप बताना चाहें तो बता सकती हैं जल्दी से।
1: मैम सबसे पहले आपको,
0: थैंक यू।
1: और मैम एक मेरी फ्रेंड है सीमा रावत जी, वो कॉल नहीं कर रही, बहुत दिन से उनकी आवाज नहीं सुने मैम,
0: अरे
1: अगर
0: भाई
1: मेरी आवाज को सुन
0: सीमा
1: रही हो तो
0: जी
1: जरूर कॉल करेंगी।
0: कहाँ है, कॉल कर लो अपनी दोस्त को जल्दी से
1: जी
0: जी
1: बहुत दिन से उनकी कॉल नहीं लगी मैम, बीबी भारती सुनते हैं और एफएम रेनबो भी सुनते हैं। जी
0: अच्छा, तो इसका मतलब वो भी एफएम रेनबो सुनती हैं?
1: मैम सुनती हैं, कॉल भी करती हैं, रेगुलर
0: हाँ
1: लिसनर
0: तो
1: मैं भी हूँ, वो
0: भाई
1: भी है।
0: मैं प्रे करती हूँ कि ये आवाज उन तक पहुंचे, आपकी और मेरी भी। भाई कॉल कर लो
1: जी मैम आवाज नहीं मिली, पर
0: वीक
1: मैम एफएम रेनबो के जरिए से हम सारे दो दोस्त एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है, यही है रिश्ता हमारा और आपका जो दूरियां कम
1: जी
0: करता है जी। चलिए सुषमा जी, मैं आपका गाना प्ले करूं?
1: मैम, नाम लेना चाहते हैं
0: हाँ
1: दोस्तों का?
0: जी
1: मैम
0: जल्दी से नाम लीजिए।
1: सीमा रावत है, ओमकार भैया है, सुरभि सिंह है, और वो सीतापुर से मैम, वो समा परवीन जी हैं, रिंकी पिंकी है मैम, शिव भैया है, इंदिरा नगर संतोष भैया है, नवनीत मौर्या है। जी मैम, और आपको भी साधना और सभी सुनने वाले को।
0: ऑल राइट, थैंक यू सुषमा जी, मैं अब आपका सॉन्ग प्ले करती हूँ हमारे
1: थैंक यू मैम,
0: स्टूडियो से आपके रेडियो सेट्स पर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये प्यारा सा गीत।
1: थैंक यू मैम।

मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव की सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 200

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में सहभागिता भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं।
1: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही है और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
0: प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा की तैयारियों को परखा। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की, साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने यहां भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थस्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
2: ब्रिक्स मीटिंग उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, एनवायरनमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
3: प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा और इसके लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है और यह संख्या भी जैसा बताया गया ट्रस्ट के द्वारा 3000 से ऊपर संख्या होगी और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह शेषावतार का जो मंदिर है, जो शिखर है, वह बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद अब उस पर ध्वजारोहण होने जा रहा है।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, पिछले 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: तो दोस्तों इस वक्त 7:30 हो चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम, आप बनी है श्वेता के साथ। जी हाँ, मैं हूँ यहाँ पे आपकी फरमाइश पूरी करने, आपका फोन अटेंड करने। तो भाई देर किस बात की, शुरू हो जाइए, लग जाइए और उठाइए अपना फोन, लगा दीजिए हमारा नंबर। तो फिलहाल तो मेरे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। चलिए हम जानते हैं उनका नाम। हेलो
1: श्वेता जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: अरे वाह, देखिए महाकाल की नगरी से हमें कॉल आया है, उज्जैन से हमें कॉल किया है प्रेम जी ने। हाँ जी,
1: बिल्कुल, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल
1: जी। और मैं बताऊँ, मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनता हूँ एफएम रेनबो के में।
0: क्या बात है, आप हमें लगता है मेल भी भेजते हैं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने शायद आपके मेल्स भी पढ़े हैं।
1: जी हाँ, वो आपको बताऊं, जब मैं आकाशवाणी लखनऊ वो रेनबो सुनने लगा हूँ ना,
0: हाँ जी,
1: तो मुझे नए नए दोस्त मिले हैं आकाशवाणी लखनऊ।
0: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई।
1: जी आपको बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले एक नए दोस्त बने हैं हमारे, मिंटू तिवारी।
0: जी राइट,
1: वो भी कार्यक्रम सुनते हैं, फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं, फिलहाल अभी वो भी सुन रहे हैं।
0: देखिए ये बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि एफएम ही मतलब खुद में एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी बना रहा है। देखिए इसी तरीके से लोग जुड़ते जाते हैं और कारवा बनता जाता है।
1: श्रद्धा जी आपको बताऊं, श्रोता भी दोस्त बन रहे हैं हमारे और आरजे भी दोस्त बन रहे हैं।
0: अरे
1: जैसे कि आपके यहाँ के अलका सिंह जी हमारे दोस्त हैं, उसके बाद में चंद्रकला जी हमारे दोस्त हैं।
0: जी जी जी जी
1: जी, जी और आकाशवाणी लखनऊ से दीप्ति जोशी हमारे दोस्त है, निधि तिवारी जी है, बहुत सारे मतलब ऐसे दोस्त है ना हमारे जो बनते जा रहे हैं आकाशवाणी के
0: लिए। बहुत अच्छी बात है, और आई एम श्योर आप खुद में बहुत एक अच्छे इंसान हैं, जिस वजह से आपसे इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज हमारे थ्रू।
1: जी चेता जी, फिल्म का नाम है सरगम और गाने के बोले डफली वाले डफली बजा।
0: बिल्कुल, मैं आपके लिए आपकी फरमाइश प्ले करूंगी, आपकी फरमाइश पूरी करूंगी। बताइए आप किस तक ये गाना पहुँचाना चाहेंगे।
1: जी जैसे की आपको बताया मैंने, एक तो हमारे खास दोस्त है मिंटू तिवारी जी, और इनके अलावा जैसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है हेलो फरमाइश रेडियो एक्स्ट्रा ग्रुप, उसके भगवान सिंह वर्मा, लोकेंद्र वर्मा और कानपुर से पुनन जी भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
0: ओके ठीक है, चलिए।
1: और श्वेता जी ये गाना आपके लिए भी डेडिकेट रहेगा और अलका सिंह जी के भी लिए रहेगा।
0: ओके थैंक यू
1: जी, थैंक यू सो मच। और एक बात और है, ये मेरे जब से भी मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है ना, मुझे काफी खुशी हो रही है।
0: क्या बात है जी, बिल्कुल ये बहुत एक हेल्दी हैबिट भी है आकाशवाणी एफएम रेनबो सुनना, गाने सुनते रहना, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी खुद की एक हैप्पीनेस कोशेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा एक डेली डोज है। बहुत जान के अच्छा लगा
1: जी। आपको बताऊं, जैसे गाने तो हमें हर जगह सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन जब एफएम पे या फिर आकाशवाणी पे अपनी पसंद का गाना अपनी आवाज के साथ में सुनने को मिलता है ना, तो मतलब खुशी दोगुना हो जाती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी फीलिंग्स बिल्कुल समझ रही हूँ और आपके लिए ये गाना मैं प्ले करती हूँ और आप अब मजे उठाइए, लुफ्त उठाइए अपने इस फरमाइश का। ठीक है
1: जी, थैंक यू सो मच।
0: ओके
1: ओके, बाय
0: बाय बाय। चलिए तो मैं प्ले करती हूँ ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर, ओनली ऑन 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

हाँ जी, डफली तो बजती ही रहेगी जब तक आप सुनते रहेंगे एफएम रेनबो हमारे साथ। तो देखिए, बातों का सिलसिला जारी है और हम तक बहुत से कॉलर्स पहुंच रहे हैं। आप भी चाहते हैं अगर आपकी फरमाइश पूरी हो तो जल्दी से हमें कॉल करिए और हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाइए। और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो,

0: दुनिया।
1: क्या
0: नमस्ते
1: बात
0: मैम।
1: है, आपने तो वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग गा दिया। आपको पता है ये
0: जी
1: गाना हर बार मैं जब भी आती हूँ स्टूडियो में ये गाना
0: मैम, यूथ
1: जरूर
0: फेस्ट
1: प्ले
0: में आज
1: करती
0: बहुत
1: हूँ।
0: अच्छे अच्छे गाने बजे हैं,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: इसमें से ये गाना मेरा फेवरेट है।
1: अरे वाह, क्या बात है, गाया भी तो कितनी खूबसूरत बेहतरीन इंसान ने। हाँ
0: मैं अब अपने सुनने वालों को अपना परिचय दे दूं।
1: जी बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जी मैं ग्राम पोस्ट प्रचंडी कैसरगंज बहराइच से आपका छोटा भाई सत्यम कुमार बात कर रहा हूं मैम। जी
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: मैम, और कहती हैं आप,
1: मैं
0: आपकी
1: बहुत
0: टीम
1: बढ़िया
0: कैसी
1: हूँ।
0: है
1: और आप आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे सत्यम जी,
0: मैम? गाना जो मैं सुनना चाहूंगा उसकी भी एक वजह है। जैसे
1: बताइए। हाय
0: 2 दिनों से हमारे यहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही थी, तो
1: हाय,
0: जो मतलब विविध भारती पर एक मैम ने बताया था कि कल तक हमारे, यानी कि आज को बताया था कि हमारे अधिकारी ने कहा है कि फ्रीक्वेंसी
1: अच्छा,
0: आ जाएगी, लेकिन वादे के मुताबिक हमारे यहाँ कल यानी कि शुक्रवार को ही शाम को 4 बजे तक फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इसीलिए उन अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कड़ी
1: जी
0: मेहनत की
1: ओके
0: फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए।
1: जी बिल्कुल।
0: मैम गाना,
1: आप
0: इसीलिए मैं गाना सुनना चाहूंगा राम जी की निकली सवारी, भगवान
1: क्या बात है, ठीक है, मैंने
0: से मैंने
1: आपका
0: प्रार्थना की थी। जी
1: आपका गाना मैंने क्यों कर
0: मैम
1: दिया
0: नाम
1: है।
0: लेना चाहूंगा
1: हाँ जी ले
0: मैम,
1: लीजिए
0: सीतापुर
1: नाम।
0: से हैं सिस्टर समा परवीन अंसारी,
1: ओके
0: और लखीमपुर से हैं साहिबा अंसारी, लखनऊ से हैं बबलू यादव और आप, और मैम कुछ और श्रोताओं को मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मैम मैं ऑनलाइन जोड़ नहीं सकता हूँ, इनसे कहना चाहता हूँ।
1: जी
0: इसलिए रायबरेली से हैं हमारी सिस्टर रिंकी पिंकी,
1: ओके
0: बाराबंकी से हैं बाबू अंसारी भाई, फैज अंसारी भाई, इन लोगों को मैं गाना डेडिकेट करता हूँ। और मैम उन्नाव से हैं हमारे एक दादा कॉल करते हैं, श्री प्रकाश तिवारी नाम है उनका।
1: अच्छा जी, ठीक है, आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत
0: जी
1: जो
0: मैम, खासकर उन अधिकारियों को जिन्होंने मेहनत की।
1: जी आपकी, देखिए सबसे बड़ा तो ईश्वर होता है और उसने आपकी इच्छा पूरी कर दी। तो चलिए हम सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और आप भी इंजॉय कीजिए, हम भी इंजॉय करें ये गाना। ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, मेरे यानी श्वेता राजवंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी, इस वक्त आप सुन रहे हैं FM रेनबो और हमारा प्रोग्राम चल रहा है हेलो FM जी। तो हमारे साथ कई कॉलर्स इस वक्त जुड़े हैं और हम उनसे बात करेंगे, पर आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे, आप भी अगर हम मुझसे बात करना चाहते हैं, तो अभी भी वक्त है। आप नंबर घुमाइए, कॉल करिए हमें और हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाइए। चलिए, इससे पहले कि थोड़ी देर हो, हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो।
1: हेलो, अभी सुनने वाले को मेरा अस्सलाम वालेकुम।
0: क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम।
1: ये मेरा पहली बार फोन लगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहूँ क्या।
0: हाँ, पहले तो आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मतलब जो संदेश आपके गीत आप मतलब मेरे उसमें तो कई बार कॉल लग चुकी है मेरी।
0: ओके।
1: मगर इस प्रोग्राम में पहली बार लगी हूँ।
0: अच्छा, बहुत बहुत।
1: इसमें जो है मैं सन 2008 से फोन लगा रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो आप हमारे बहुत ही पुराने लिसनर हैं, जान के बहुत खुशी हुई।
1: मैंने शायद सुनना, मैं सन तो नहीं याद है, जब ये FM शुरू हुआ था जब से मैं सुन रहा हूँ अपने बचपने से।
0: मतलब आप अपने बचपने, ये बहुत।
1: आज मेरी उम्र हो गई 33 साल।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आप की जो ये फीलिंग है मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये जो होता है ना कनेक्शन, ये बहुत ही रूहानी, बहुत ही प्यारा होता है और बहुत लॉयल होता है कि आप ये चैनल सुनना है और भाई हमें इसके लॉयल बने रहना है। तो ये तो मैं जानती हूँ और बिल्कुल ये समझती हूँ आपकी भावना। और बताइए, आप आज कौन सा गाना प्ले करवाना चाहते हैं, किस किस तक पहुँचाना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना ये सुनना चाहूँगा, सौरंग मोहब्बत की मुस्क दिखाती है
0: जी।
1: क्योंकि ये गाना सिर्फ इसलिए कि मेरा फोन जो है पहली बार लगा हुआ है और किसी खास को नाम लेना चाहेंगे।
0: अच्छा ठीक है, गुमनाम। चलिए ठीक है,
1: बस इतना कहते हैं कि अगर वो सुन रहे तो वो मुर्गी चोर है।
0: अरे अरे अच्छा ठीक है, चलिए मैं ये प्रे करती हूँ।
1: कुछ लोगों के नाम ले लूँ।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: हमारे संदीला से गुलफ्शा जी है।
0: ओके।
1: सीतापुर से समा परमीन, रिंकी पिंकी, फैज भाई।
0: अच्छा।
1: जावेद अख्तर भाई मुबारकपुर। मैं मुबारकपुर से जो फोन करते हैं रेशमी नगरी से, मैं उनके घर के आस ही पास जाया करता हूँ क्योंकि मेरे ससुराल वही की है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये गाने जो मैं प्ले करने वाली हूँ आप
1: और बाकी जो लोग सुने सभी के लोगों
0: जी, सभी के लिए और खासकर उनके लिए जिनके लिए आप ये गाना बजवाना चाहते हैं।
1: जी जी जी जी।
0: ठीक है, चलिए फिर आप इंजॉय करिए ये सॉन्ग। ओके।

को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, निदेशकों, रसोइयों, अन्य स्टाफ को सरकार के द्वारा कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। गौतम बुद्ध नगर में सातवें वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो 2026 का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 3-6 जून तक किया गया। इस एक्सपो में वर्ल्ड एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, बायोफ्यूल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मेयर्स एंड आरडब्ल्यूए समिट, सस्टेनेबिलिटी, क्लीन एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। एक्सपो के अंतिम दिन आज भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और एग्जिबिटर्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टेक होल्डर्स से बातचीत की। रायबरेली, गोरखपुर और जौनपुर सहित विभिन्न जिलों में आज संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मध्य कमान मुख्यालय ने ऑफिसर्स सिक्स ए साइड हॉकी टूर्नामेंट 2026 का खिताब शानदार जीत के साथ 2-1 से अपने नाम कर लिया। लखनऊ स्थित 11 गोरखा राइफल सेंटर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल मैच में मध्य कमान ने मध्य यूपी सवेरिया को पेनाल्टी स्ट्रोक में 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। निर्धारित समय में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसके बाद विजेता का फैसला पेनाल्टी स्ट्रोक के माध्यम से किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता ने विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया।

मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वसल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आबशार 100.7 FM रेनबो पर। साइमीन इस्तकबाल करता हूं आपका प्रोग्राम आबशार में सुनील आज FM रेनबो 100.7 पर।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है, कोई शबे गम गुजार के वसल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आपशार 100.7 FM रेनबो पर।

इंसान इबादत में पड़े हुए इंसान की ही माफिक उसी की तरह दीवाना हो जाता है, और जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर ना अपना ख्याल रहता है ना अपनों का, बस उस नशे में चूर रहता है वो शख्स जिसे मोहब्बत कहते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आबशार सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी FM रेनबो लखनऊ पर।

अगले पेशकश उनके लिए जिन्हें हमराह चाहिए, ऐसे हमराह जो उनकी हर पागलपन हर दीवानियत के दीवाने हो।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आबशार सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी FM रेनबो लखनऊ पर। जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए, और फिर अकेले बैठकर चाय का मजा लीजिए। जी हाँ, आप मजा ले रहे हैं प्रोग्राम आबशार का सुनील के साथ, बने रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को

0: आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में

0: नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नार्को दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। दो दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी।

मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विकास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

मेड इन इंडिया को लव करने वाले हमारे दोस्त, अगर आप हमारा जो प्रोग्राम है पॉप टाइम उसको भी लव करते हैं तो फटाफट अपनी जो मेल है हमें भेज दीजिए fmakashwani@gmail.com. फिलहाल अलीशा चिनॉय का एक सुपर हिट गोल्डन पॉप मेड इन इंडिया.

मोनोसेट जी कह रहे हैं कि मैंने इंडिया सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा। विजय पास जी कह रहे हैं कि कार्यक्रम पॉप टाइम सुनील भैया के साथ, थैंक यू सो मच, दिल के जज्बात को लफ्जों में पिरोया नहीं करते, तुम जैसे सच्चे दोस्तों को कभी भी खोया नहीं करते। वाह विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अंसारी जी हमें मेल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं प्रोग्राम पर रोज़ाना सुनता हूँ, प्रोग्राम के जो गाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। रामराज जी आपका मेल हमें मिल चुका है, और आप सुल्तान रजा साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत सा हमें एक फ़ोटो भेजा हुआ है, इसमें फ्रूट केक है, इसमें कुछ कुकीज़ हैं और साथ में इसमें रस्क भी है और चाय है और मेरे ख्याल में हॉट डॉग है। तो काफ़ी चीज़ें आपने भेज दी मुझे नाश्ते के लिए, मतलब नाश्ते का जो फ़ोटो है वो आपने भेजा है। अब नाश्ता कितनी देर में भेजते हैं इसका मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि 12 बजे तक इधर रहूँगा मैं, तो प्लीज़ फ़ोटो से काम नहीं चलेगा सुल्तान साहब, प्लीज़ आप कुछ मतलब भौतिक रूप से भी भेजें तो बेहतर होगा। विनोद कुमार जी हमें मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल ज़िला सीतापुर से मैं मेल कर रहा हूँ, और आप आए तो बाहर आई। थैंक यू सो मच विनोद जी, और आपका मैसेज आया तो बाहर आई। और अब अगला जो गाना है उसके लिए थोड़ा सा आपको

समझना पड़ा इसलिए क्योंकि लैटिन अमेरिकी भाषा में ये गाना है और इसको गाया है जूलियो इग्लेशियस ने, और इसके जो लिरिक्स हैं वो कोन ला मिज़मा पियरा। तो कोन ला मिज़मा पियरा का मतलब होता है कि वही गलती जो मैंने की है मोहब्बत करने की, प्यार करने की, वो मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ। यानी मैं जानता हूँ कि ये पत्थर से सर टकराने जैसा काम है मोहब्बत। मतलब देखिए कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, लेकिन मोहब्बत की जो भाषा होती है वो एक ही होती है। मैं जब देखता हूँ कि हर एक गाने में बातें वही होती हैं, बस उसका जो तरीका है वो बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, संगीत अलग हो जाता है, लेकिन जो बात है वो वही रहती है, और वो है मोहब्बत। और ये मोहब्बत में इनका परसिवरेंस है, मतलब मोहब्बत को पूरी शिद्दत से करने का इनका तरीका है, कौन ले मियाज़मा पियाडा। तो जूलियो इग्लेशियस साहब को सुनिए आप इस प्रोग्राम में। हाँ, हमें मेल भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा जो मेल आईडी है वो fmakashwanilakhnow@gmail.com। अगर आपका आपको इसका लिरिक्स अगर नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक इसका बहुत वायरल हो रहा है। भाई आप सुन रहे हैं सुनील को।

तो इस पूरे गाने में एक ही चीज समझ में आई, करेजा और पियरा। पियरा सरसों को भी हमारी तरफ कहते हैं, आपकी तरफ तो सरसों कहते होंगे और करेजा भी कहते हैं। मतलब लैटिन अमेरिकी जो गाना ये रहा जूलियो ग्लेशियस की आवाज में, ये इसका दो तीन शब्द मुझे समझ में आया। मतलब उनका इंटरप्रिटेशन मैंने किया है, पता नहीं वो, खैर इसका मजमून तो मैंने आपको बता ही दिया कि मोहब्बत वाला गाना है, मोहब्बत में धोखा खाए व्यक्ति का गाना है जो फिर से एक बार वो मोहब्बत है। वो गाना सुना था ना, फिर मोहब्बत करने चला है दिल, ऐसा कहा ना, तो बिल्कुल उसी का लैतिन अमेरिकी भाषा में एक गाना है ये। अच्छा, बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं, और मेल तो उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा मूड मस्ती का हो रहा है भाई, रेडियो दोस्त का नाम भी शामिल कर लीजिए, थैंक यू सो मच। और इन्होंने इनके अपनी एक शॉप है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग की शॉप। अच्छा, इन्होंने पूरा पूरा म्यूजिक सिस्टम ही अपना खोल डाला, पता नहीं क्यों भाई, इसमें क्या दिक्कत आ गई है। आपने मतलब पूरा फोटो भेजा हुआ है मुझे, और बगल में बहुत सारे मतलब वायर वगैरह हैं, क्या है एग्जैक्टली इसको थोड़ा मुझे बताइएगा बाबू अंसारी जी। और हमें मेल कर रहे हैं वकील अहमद जी, कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लगता है, गाने भी अच्छे बज रहे हैं, अच्छा रेनबो कैफे भी अच्छा लगता है। अहमद मंसूरी साहब थैंक यू सो मच, रेनबो कैफे आप बहुत आपको अच्छा लगता है, पॉप टाइम भी अच्छा लगता है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अशोक कुमार जी हमें मेल कर रहे हैं रायपुर ओडारा मिथौली लखीमपुर खीरी से, और कह रहे हैं कि प्रोग्राम जान आ गई, थैंक यू सो मच। जितेंद्र नामदेव जी आपका मेल आ चुका है, जितेंद्र नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरूही नामदेव, सौम्या, जिला शहडोल एमपी से आप हमें मेल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आनंद तिवारी जी हमें मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ख्वाबों की ख्वाहिश में इस दुनिया में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। ये दारू कुइयां मल्लामा हरदोई से आप मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम की शुरुआत बहुत सुंदर हुई थी, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम की शुरुआत यानी आगाज़ अच्छा हुआ है तो दोस्त अंजाम भी अच्छा होगा। और आप ज़रूर अपनी पसंद बताइए कि आप किस तरह, हरियाणवी सुनना है, पंजाबी सुनना है, या भोजपुरी या तड़का लगाना है, क्या करना है, ये सब भी बताइए ना भाई। शेर तो अच्छी बात है। कृष्णकांत सिंह जी नमस्कार, रेनबो कैफे कार्यक्रम जैसे शुरू होता है ऐसा लगता है जैसे सिंदूरी शाम के समय किसी म्यूजिकल कैफे में बैठे हों। थैंक यू सो मच डियर, जब आप अपने मनमोहक अंदाज में इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक घंटा कैसे निकल जाता है इस मस्ती भरे प्रोग्राम में, पता ही नहीं चलता। सुनील जी आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच भैया, कैसरगंज बहराइच से आप इतने बड़े हमारे सपोर्टर हैं, इतना बड़ा आपका मतलब क्या कहें कि कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रोग्राम में, कि मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो ठीक है, तो आपके मूड को थोड़ा सा लिफ्ट कराते हैं, है ना, अदनान सानी की आवाज़ में। लेकिन आप ज़रूर हमें मेल करिए भाई, अपनी दिली ख्वाहिश बताइए, दिल की क्या इच्छा है वो बताइए, कैसा महसूस कर रहे हो बताइए। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com इस पर अपना मेल करके सुनील के साथ।

तो भैया आप सबकी भारी मांग पर अब लियो भोजपुरी तड़का लगे वाला है। अगर आपको भोजपुरी में कुछ वाइब मैच करानी है हमसे, वाइब मैच कराने का मतलब समझ रहे हैं आप जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी प्लेलिस्ट में है, अगर आपके भी दिमाग में चल रहा है तो आप हमें लिख भेजिए ना हमारे मेल आईडी पर। हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। आप सुन रहे हैं आज रेनबो कैफे में तड़कते भड़कते गाने, चाहे वो पंजाबी हो, हरियाणवी हो, भोजपुरी हो या फिर बुंदेली हो। मिल करिए फटाफट और ये तड़का भोजपुरी का।

भैया, तो आपके जबरदस्त मांग पर ये गाना आपकी पसंद का है, मतलब आपके रिस्क पे है, और RDSO आलमबाग लखनऊ में आप सुन रही हैं। झारखंड का की रहने वाली हैं, श्रेया कुमारी आपका नाम है। अच्छा, थैंक यू सो मच जी। और आप झारखंड का जो है कोई गाना सुनना चाहते हैं? अच्छा जी, तो आप गाने का लिरिक्स वगैरह भेजिए, हमें थोड़ा डिटेल भेजिए। आंचल जी, थैंक यू सो मच कह रहे हैं। पॉप टाइम और रेनबो कैफे मुझे दोनों ही अच्छा लग रहा है, एकदम मज़ा आ जाता है, थैंक यू सो मच। गीता सेठ जी, उम्दा, ज़बरदस्त, शानदार, बेमिसाल, थैंक यू सो मच। भोजपुरिया तड़का, ज़बरदस्त, थैंक यू। विजेश भाई, आंचल, गीता और रामराज जी, और ये वाला जो गाना फुलौरी बिना चटनी वाला गाना है, अच्छा मैं समझ नहीं आता था फुलौरी क्या है, मतलब फुलौरी, अच्छा एक पेड़ होता है ना शायद पीले कलर का, रामराज जी मुझे बताइएगा कि अगर आपके यहाँ जो फुलौरी का पेड़ है वो होता है कि नहीं होता?

क्योंकि मेरे बचपन में तो होता था मेरे गांव में, लेकिन अब फ्लोरी का पेड़ कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब शिवराज जी, आपका भी मेल आ चुका है, बबुरिया पोस्ट बरौली मालिक ज़रा बाराबंकी से, और कह रहे हैं कि कोई भोजपुरिया अच्छा सा गाना। अच्छा, दो भोजपुरिया तो मैंने बजाया भाई, अगर आपको और कोई अच्छा सा गाना कुछ सजेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बजाऊंगा, बजाने की कोशिश करूंगा आपकी पसंद को। बाबू अंसारी जी, थैंक यू सो मच, और फुलौरी का जो कंसेप्ट है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आखिर फुलौरी क्या चीज़ है, और पेड़ पर उगता है या फिर कढ़ाई में बनता है, क्योंकि अगर चटनी बनने में इसका प्रयोग होता है तो ज़रूर ये कहीं पेड़ पर उगता होगा। अभी आजकल फुलौरी दिखाई पड़ता नहीं, दिखाई पड़ता। हमें मेल करिए ये किस चीज़ पे, किस मेल आईडी पे करेंगे, जान रहे ना, fmakashwani@gmail.com। अच्छा, ये चीज़ है, मोनू भाई कह रहे हैं कि पहले लग रहा है जैसे पैदल चल रहे हैं, अब लग रहा है जैसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस पर सवार हो गए। ठीक है भैया, तो मतलब सब कुछ चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब सुपर फास्ट ही चलता रहेगा, थोड़ा मतलब वैरायटी चाहिए ना भाई, समझे हो मोनू भाई। शिवराज जी, थैंक यू सो मच, भोजपुरिया गाना बजाएंगे, लेकिन अभी फ्लोरे बिना चटनी वाला जो गाना है वो एंजॉय करिए।

रामराज भाई, आपने बिल्कुल नहीं बताया कि ये फुलौरी का क्या सीन है और कौन सी फुलौरी है और किस कहाँ पाई जाती है, आपके गांव के आसपास पाई जाती है कि नहीं। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन आपकी फरमाइश मेरी फरमाइश के साथ बिल्कुल मैच कर गई है। मतलब नागपुरी गाने की बात कर रहे थे और आप नागपुरी गाना तो आधा जानलेवा इस प्रोग्राम में जिसका नाम रेनबो कैफे है उसमें चल रहा है। अगर आपको ही पंजाबी, नागौरी, नागपुरी या फिर दिल्ली गाना या फिर भोजपुरी गाना आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, जो काफ़ी दिन से आपने सुना नहीं है, रेडियो पर सुनना चाहते हैं, थोड़ा झूमना चाहते हैं, थोड़ा नाचना चाहते हैं, थोड़ा गाना चाहते हैं, थोड़ा कमर हिलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल देर मत करिए इसलिए क्योंकि केवल 20 ही मिनट बाकी है इस प्रोग्राम के लिए भैया सुनील के साथ। और हमारा मेल आई डी आप जानते ही हैं, मेल आई डी फिर से बता दे रहा हूँ, जो मेरा मेल आई डी है वो है कौन सा, समझ रहे हैं ना, मतलब मेरा FM@lucknow.gmail.com। सुनील सिंह जी इटहुआ कैसरगंज बहराइच से, रात्रि का कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, भोजपुरी गाने मुझे बहुत अच्छा ठीक है बजा दे रहे हैं। शिवराज जी, मैं बाबुरिया पोस्ट बरौली ज़िला बाराबंकी से हूँ, अच्छा ठीक है, ओके। छोटू सिंह जी कैसरगंज से, ओके ठीक है। सोनू भार्गव जी हमें मेल कर रहे हैं, ओके ठीक है। झरेखापुर जिला सीतापुर से, शैलेश कुमार जी दुबग्गा लखनऊ से, अच्छा ओके, कह रहे हैं कि जब फुलौरी बिना चटनी बन सकता है तो ये, अच्छा ओके ओके ठीक है। बट चलिए, आपके बहुत सारे मेल से मुझे मिल रहे हैं, बहुत सारे। रणधीर गुप्ता जी हमें मेल कर चुके हैं, जावेद अख्तर भाई मेल कर चुके हैं, जिनको सबको गाने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको गाना सजेस्ट करना चाहते हैं तो फटाफट हमें मेल करिए। फिलहाल संतोष दासवाली और अंजलि टिग्गा का फीचर किया हुआ ये नागपुरी गाना।

तो भाई आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो कैफे, और रेनबो कैफे में आपकी जो पसंद है वो बहुत ही तगड़े से बज रही है। एकदम झकझकाऊ बज रही भैया। न्यू दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु, प्रोग्राम के सभी सॉन्ग बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। और लक्ष्मीधर कुमार, मैं मेल कर रहा हूँ सकरन सीतापुर से, प्रोग्राम सुन रहा हूँ रेनबो कैफे का, थैंक यू सो मच। और सुल्तान राजा साहब, पहली बार गाने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एवन नवाब कह रही हैं कि हाय डियर सुनील जी, मेरे गांव में फुलौरी पकौड़ी को बोलते हैं, वो इसलिए मुझे पता है, एक बार भाभी ने मुझसे कहा था कि बिटिया फुलौरी खाओगी, मैंने कहा कभी नाम नहीं सुना, तो उन्होंने बताया ये इसी फुलौरी, मतलब जो पकौड़ियाँ होती हैं जिन्हें कहीं भजिया भी बोलते हैं उसे ही फुलौरी कहते हैं। अच्छा, इन्होंने अमन ने मुझे एक शायरी भी भेजी है कि तुम्हारा कम मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं, सुना है नायाब चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं मिलती। थैंक यू सो मच अमन जी। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है अमन नवाब संडीला से कि आप सभी लोग जो मेल करते हैं हमें, मेल में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी कभी भी किसी भी सार्वजनिक मेल आईडी पर मत दिया करिए। रजिस्ट्रेशन की मेल आईडी है और ये ओपन एक्सेस मेल आईडी होती है, तो कोई भी व्यक्तिगत जानकारी कभी भी, हमारे जो श्रोता हैं उनसे अनुरोध है कि जब भी आप मेल करें तो कोई भी अपनी पर्सनल जानकारी, हाँ हम ज़रूर अपील करते हैं कि आप अपनी लोकेशन, तो लोकेशन में आप ज़रूर आपके, हाँ भाई मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मेरे गाँव का नाम ये है, लेकिन और जो दूसरी व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो आप ना दें, ये प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। महेंद्र दपन जी राजस्थान नागौर से कह रहे हैं कि रेनबो कैफे प्रोग्राम में बहुत सुनता हूं, गर्दा उड़ाने वाला है, यहां बारिश हो रही है और आपकी आवाज प्रोग्राम में इस मौसम का मजा दोगुना कर रहे हैं, मेरी एक छोटी सी फरमाइश है। अच्छा, राजा जी वाला गाना तो बजा दिया, क्या दूसरा भी बजाएं क्या? शुभकामनाओं सहित। तो महेंद्र देपन रूंड नागौर राजस्थान से मेल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। गुलफसा, सुनील सिंह, जितेंद्र नामदेव, ओके, अच्छा, शिवराज, छोटू सिंह, आप सबका मेल। श्रेया कुमारी झारखंड से, थैंक यू सो मच। डीके भाई, आप थैंक यू सो मच। अच्छा, ये अगला गाना है, रिक्वेस्ट की है आपने, तो बिना देर किए सुनते हैं अगला गाना। लेकिन आप अपनी मेल जो है भेजना बिल्कुल बंद मत करिए, इसलिए क्योंकि आपकी मेल से ही ये प्रोग्राम चलता है, मतलब आपकी मेल की एनर्जी मुझे मिलती है, तो इधर से मैं भी थोड़ा एक्साइटेड होता हूँ ना कि हाँ अच्छे गाने या आपके पसंद के गाने, भोजपुरी गाने, नागौरी नागपुरी गाने, या फिर जो रीजनल बुंदेली गाने, या आपका जो रीजन है, आपका जो क्षेत्र है, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर लखनऊ में रहते हैं या राजस्थान में रहते हैं या यहाँ के रहने वाले हैं, कहीं बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तब भी आप अपनी जो लोकल म्यूज़िक है वो खुद भी सुन सकते हैं और हमारे जो और दूसरे श्रोता हैं उन्हें भी सुना सकते हैं, है ना। तो जो मेल आईडी हमारी आप जानते ही हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो मेरे यहाँ एफएम की ईमेल आईडी है, एफएम रेनबो की, एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com, इस पर फटाफट मेल भेज दीजिए, हमारे पास पहुँच जाएगा। ओके, ठीक है।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। जापान के काका मेगाहारा में भारत के अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने जापान को 4-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप जीतने पर भारतीय पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीमवर्क का प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा फाइनल में मिली यादगार जीत के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा कि युवा हॉकी खिलाड़ियों की ये एक शानदार उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप 2026 में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला अंडर 18 हॉकी टीम को बधाई दी। वाराणसी नगर निगम ने शहर के 2,33,000 भवन स्वामियों के लिए अत्यंत सुविधाजनक सेवा शुरू की है। AI आधारित चैटबॉट व्हाट्सएप के माध्यम से अब भवन स्वामी घर बैठे संपत्ति कर, गृह कर, जल कर, सीवर कर जमा कर सकते हैं। सदन की बैठक में इसका शुभारंभ महापौर अशोक कुमार तिवारी ने किया। वाराणसी ये सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी जनपद के मिड़ावली स्थित प्राचीन माता मंदिर के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। लगभग 1,18,00,000 रुपए की लागत से कराए गए इन कार्यों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा, विंध्याचल, चित्रकूट और नैमिषारण्य जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हुए विकास कार्यों से उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिली। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी के निर्देशन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की बगिया में 1 माह तक लगातार पौधरोपण अभियान चलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल उनके अगले दिन आज परिसर में 1,500 पौधे लगाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

पानी इश्क की मध्यम लौ में पकता, सर्दियों की सुबह किसी झील के शिकारे पे रखी कांगड़ी से निकलते कहवे की माफिक लज्जतदार, खामोश निगाहों के पीछे छुपी कोई चिंगारी जो सुर्ख रोहे की शक्ल में आंखों में पड़ती नजर आ जाए, सर्द रातों में पश्मीने की माफिक जवां दिलों में हौले से मुकम्मल होते हुए किसी सुनहरे ख्वाब की ताबीर बताता। रेडियो प्रोग्राम रजनीकंदा सुनिए हर रात 10 से 12 100.7 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी FM रेनबो लखनऊ पर। पंद्रह हजार, 10,000, 5,000, छोटे शहरों में 3,000। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कौन से गिनतियां पढ़ रहा हूँ, किस तरह के नंबर्स हैं ये, क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि इंसानी रिश्तों की धड़कती बुनियाद की तिरछी लकीरें हैं। ये लकीर भी नहीं है बल्कि उस बाहरी टूटी हुई एतबार की दीवारें हैं जिनकी लकीरें दिखाई तो नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम पैच लगा देते हैं शराफत का, लेगेसी का, खानदान का। और ये तमाम बोझ जब हमारे गर्दन टेढ़ी करने लगता है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिर पे लिया गया ये बेजान रिश्तों का बोझ, वक्त के साथ जब कमर टेढ़ी करने लगता है तो इंसान शून्य हो जाता है। और ये शून्य उन आंकड़ों में जाकर फिट हो जाता है जो अदालती कार्रवाइयों और पारिवारिक न्यायालयों में वाद के रूप में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। न जाने कौन सी हवा है, न जाने कौन सा वक्त है कि किसी में किसी को सुनने, किसी को सहने की कोई ताकत ही नहीं बची। हर कोई सुनने के बजाय सुना देना चाहता है, हर कोई सहने के बजाय जुल्म करना जानता है। न जाने कैसा वक्त है, न जाने कैसा मोड़ है ये वक्त का, जो इंसानियत और रिश्तों को न जाने कहाँ ले जाएगा।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांधा सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी एफएम रेनबो लखनऊ पर। मैं बात कर रहा था कि जो दिल्ली मामले हैं, जो मोहब्बत, फिर शादी, फिर जीने मरने की कस्में, फिर साथ रहना, फिर साथ रहना, थोड़ा सा भारी लगना, साथ रहना, भारी लगने के बाद थोड़ी सी तकरार, थोड़ी तकरार के बाद झगड़े, फिर तमाम क्लेश, उसके बाद फिर और लोगों का शामिल होना, और लोगों के शामिल होने के बाद अपनी अना का खुद पे हावी हो जाना, और अपनी अना के हावी होने के बाद फिर और लोगों का शामिल होना, फिर और लोगों का, फिर पूरे सिस्टम का, फिर पूरे सिस्टम के शामिल होने के बाद दो लोग जो एक दूसरे को दिलो जान से एक वक्त में चाहते थे, जीने मरने की कस्में खाते थे, मोहब्बत के फरिश्ते बना करते थे, वो एक दिन किसी तहरीर में अपनी

जिंदगी का फलसफा लिखा करते हैं, और वो तहरीर तमाम दावों और मुनसिफ और वकालतों के बीच कहीं दब के रह जाता है। ये कागज़ के टुकड़े जिसमें लोगों के दिलों की इबारतें लिखने की कोशिश की जाती है, ये सब झूठे होते हैं, क्योंकि चाहे तड़प हो या फिर मोहब्बत, चाहे नफरत हो या दिल लगी, कोई ऐसा शायर नहीं, कोई ऐसा लिखने वाला नहीं जो हूबहू दिल के जज्बात को कागज पे ले आए। वहां तो स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं ना, आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। और शायद जिंदगियां लग जाती हैं इस बात में कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो कह सकें, और हम किसी अपने से नहीं कह पाते जिसके लिए महसूस कर रहे हैं, तो भारी अदालत में क्या कह पाएंगे। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांत सुनील के साथ।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांधा सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी FM रेनबो लखनऊ पर। आज गुफ्तगू हो रही है उन मुद्दों पर, उन बातों पर जो बातें तो दिली होती हैं लेकिन वक्त की धूप के साथ वो दिल से निकलकर किसी और शख्स में, किसी और शख्स से फिर पूरे कुनबे में, और एक कुनबे से फिर समाज में, समाज से फिर अदालतों में, और अदालतों से एक अंतहीन प्रक्रिया में चले जाते हैं। कुछ आंकड़े आए थे कि 15,000 से भी ज़्यादा ऐसे मामले पिछले 3 सालों में सिर्फ लखनऊ जैसे शहर में रजिस्टर हुए हैं। ये जगाने वाला मामला है, अलार्मिंग सिचुएशन। खुद पे और अपनी जो परिवार संस्था है उस पे प्रश्न उठाने वाली बात है। एक अरसे में मानव सभ्यता जब अस्तित्व में आई तो उसने परिवार बनाने का, परिवार से समाज बनाने का और समाज से देश बनाने का एक खाका तैयार किया और इसी से सब कुछ चलता रहा। एक ज़माना था जब 3 पीढ़ियों का सिजरा देखा परखा जाता था कहीं भी रिश्ता बनाने से पहले। तो क्या देखा जाता रहा होगा सिजरे में कि तमाम जो शख्सियतों की ज़िंदगी है उनकी इबारत में वो तहरीरें जो केवल इबारतों तक सीमित रह गईं, या फिर वो कहानियाँ जो शायद जोश में ली गईं, जोश में लिखी गईं और तारीखी फैसले पीढ़ियों के लिए एक दर्द का सबब बन गए।

वो चेक पॉइंट्स जिनमें किसी की ज़िंदगी का और उसकी पीढ़ियों का सिजरा देखा जाता था, ये देखा जाता था कि कहीं किसी ने अपने कबीले से बिलग किसी दूसरे हुक्का पानी के यहाँ तो रिश्ता नहीं कर लिया। जातियों की कल्पना सिर्फ हमारे सिस्टम का एक अंग है, इसका विज्ञान और इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। वो डीएनए जिसे हम मिलाने की कोशिश करते हैं, वो डीएनए हर वक्त खुद को म्यूटेट कर रहा होता है। कई बार वो डीएनए का इम्प्रिंट आखिरी होता है, उसके बाद कोई इम्प्रिंट नहीं बनाता, म्यूटेंट से नया डीएनए बन जाता है, है ना? शायद वो आखिरी गीत मोहब्बत का होता है जिसे वो गाता है, भूल जाता है और फिर नया गीत तैयार करता है। कोशिश करिए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, नए इंसानों को और साथ में नए विचारों को भी।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रोशनी का अंधा सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी एफएम रेनबो लखनऊ पर। जब किसी का वक्त ठीक नहीं चल रहा होता है ना, तो हम उसे कहते हैं कि भाई आपके जो सितारे हैं वो जरा गर्दिश में चल रहे हैं, है ना भाई साहब, ये सितारों तक जाने की जरूरत नहीं है। आग, हवा, पानी, धरती, आकाश, ये इतने ताकतवर है ना, जो सीधे हमारे होने और ना होने के सबब बन सकते हैं। इनसे खेलना ठीक नहीं है। कुछ लोग इन्हें ईश्वर के दूतों के रूप में मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, और फिर इन्हें खुदा मान के सिर्फ इबादत के वक्त तक सीमित कर देते हैं, है ना। ये जो एंटिटीज है ना, ये हमारे हर पल में, हमारा अस्तित्व है इनसे। ये जो सितारे ठीक नहीं हो रहे ना, सबसे पहले तो पानी ठीक नहीं है, आसमान और जमीन ठीक नहीं है, आग गलत जगह लगी हुई है, हवा तेज हो गई है, और ज्यादा तेज हो गई ना तो दरख्त खाक हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस, पखवाड़े, माह, वर्ष क्यों मना रहे हैं, जब केवल और केवल ये चिंता किसी एक दिन के किसी एक वक्त पर लाकर लाद देनी है। बाकी दिन क्या होगा, ये तो पांच ही है, पांच चीजें हैं, इन्हीं से सूरज चांद देख पाते हैं, यही पांच चीजें ताकत पैदा करते हैं हमारे शरीर में, कि हम सूरज को, चांद को, सितारों को, ग्रह को, नक्षत्र को देख पाए। अगर इन पांचों में से कोई भी एक ऑफ ट्रैक हो जाए ना, तो इंसानी जिंदगी तुरंत प्रभावित हो जाएगी, बिल्कुल देर नहीं होगा। न कोई दिवस, न कोई पखवाड़ा, न कोई वर्ष, न कोई माह कुछ राहत नहीं देगा, गोष्ठियां और चिंतन शिविर भी नहीं, है ना। तो कोशिश करिए कि हवा, पानी, आग, जमीन, आसमान सही रहे, और हाँ, इन्हीं के सही रहने से हमारा जो पल है, आने वाला वक्त है, वो भी सही रह पाएगा और पूरी शिद्दत से हम जी पाएंगे, है ना, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप हो या फिर हमारी निजी जिंदगी, हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर हो।

0: आंखों में पड़ती नजर आ जाए। सर्द रातों में पश्मीने की माफिक, जवान दिलों में हौले से मुकम्मल होते हुए किसी सुनहरे ख्वाब की ताबीर बताता। रेडियो प्रोग्राम रजनीकंधा सुनिए हर रात 10 से 12 100.7 FM रेनबो पर।
1: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी, कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खामोशी।

रूहानी इश्क की मध्यम लौ में पकता, सर्दियों की सुबह किसी झील के शिकारे पे रखी कांगड़ी से निकलते कहवे की माफिक लज्जतदार, खामोश निगाहों के पीछे छुपी कोई चिंगारी जो सुर्ख रोहे की शक्ल में

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा और मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 किलो, 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए व करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री व 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। अयोध्या नगर निगम ने श्रीराम नगरी में यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब शहर के 5 प्रमुख चौराहों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसमें यातायात नियंत्रण अधिक व्यवस्थित होगा और नागरिकों को रेड एवं ग्रीन सिग्नल के अनुसार सुरक्षित आवागमन की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा 100.7 आकाशवाणी एफएम रेनबो लखनऊ पर। अच्छा, एक चीज आपने गौर किया होगा कि हम जिंदगी में हर चीज के लिए, मतलब हर कोई हर चीज के लिए जैसे एफर्टलेसली उसे नहीं चाहता, मतलब जैसे मैं थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ इसको, जैसे हम आउट ऑफ लव नहीं चलते हैं, आउट ऑफ फियर चलते हैं कई बार, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई ईस्ट है, हम किसी को पूजते हैं, तो कई बार मोहब्बत से कहीं ज़्यादा डर उस पूजने के पीछे कारण होता है, या फिर किसी का हम सम्मान करते हैं, कई बार रिस्पेक्ट भी आउट ऑफ फियर ही लोग कई बार करते हैं, मतलब हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो रिस्पेक्ट होती है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ फियर किसी को नमस्कार करते हैं, मतलब डर की वजह से। सोचिए अगर कोई सांप हो, जहरीला ना हो, कोई उसे डरेगा नहीं। मतलब ये है कि किसी को भी अगर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या किसी से भी हम दूरी बना रहे हैं, या किसी को, आजकल तो ह्यूमन बीइंग में तो ये होता है ना कि हाँ भाई ये ताकतवर आदमी है, है ना। ताकत या शक्ति एक बड़ी चीज़ है किसी को मानने के लिए, है ना। तो हर कोई शक्ति के पीछे ही भाग रहा है, भगवान श्री राम भी शक्ति की पूजा उन्होंने की थी, है ना, कि क्योंकि मतलब बिना शक्ति के तो सब कुछ अधूरा है। हमारा शरीर भी जो पांच तत्वों से बना, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि वो पांच तत्व अगर हम साध लें तो शायद सूरज चांद और नक्षत्र सब सद जाएंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नॉलेज पावर है, अगर हमारी जो स्किल्स हैं वो पावर हैं, या हमारे अंदर इमोशंस की पावर है, जिसे मोहब्बत की पावर भी लोग कहते हैं, जज्बातों की पावर कहते हैं, तो वो भी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि सॉफ्ट पावर तो जज्बातों से ही मिलती है ना। और अगर इस ज़िंदगी में प्यार आ जाए, मोहब्बत आ जाए, तो फिर वो पावर हमारी 10 गुना 100 गुना हो जाती है ना, अगर प्योर लव आ जाए तो, जिसे सच्ची मोहब्बत कहते हैं।

इंसानी भविष्यवाणियां जो कुदरत के पिछले पैटर्न के आधार पर की जाती हैं, अक्सर झूठी और जाया हो जाया करती हैं, क्योंकि जो प्रकृति है ना, जो कुदरत है, वो सबसे खूबसूरत चीज है, सबसे नायाब चीज है, और वो अपनी खूबसूरती को बनाए रखने की खातिर ब्रह्मांड की हर एक नई डेवलपमेंट को खुद में शामिल करती है, तुरंत बिना किसी अप्रूवल के। इसको भी ये पता है कि जो रचेगा नहीं वो बचेगा नहीं, तो बचने की खातिर प्रकृति भी अपने आप को रचती रहती है।

नई चीज़ें, नए विचार। कभी देखा है कि पिछले साल जहां बारिश हुई थी, इस साल भी वहीं पर बारिश होगी? नहीं, कुछ डिफरेंट होगा, कुछ एरियाज अलग होंगे, कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी। लेकिन इस नई व्यवस्था का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम प्रकृति की हर चीज को अनप्रेडिक्टेबल मान लें। कुछ चीजें होती हैं जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ चीजों में हमारा वश चल सकता है, और जो कंट्रोलेबल्स हैं, अगर उन पे हम अपना वश चला लें, उन पे हम अपनी चीजें मैनेज कर लें, उन पे अपना एक एकाधिकार दिखा दें, उन पे अपना कंट्रोल दिखा दें, तो शायद प्रकृति और रिश्ते दोनों ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकते हैं। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, आना तो ठीक, लेकिन अगर आ गए तो फिर जाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो अपनी जिंदगी में अगर किसी को शामिल कर रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ के शामिल करिए, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि साल भर के अंदर, वैसे साल भर तक तो मतलब कानून भी नहीं इजाजत देता कि दो लोग अलग हों, लेकिन साल भर का इंतज़ार भी कई बार बड़ा भारी हो जाता है ना। लोग 366वें दिन लेके एप्लीकेशन पहुंच जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये एनालिसिस कह रही है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स। तो मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांत सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी FM रेनबो लखनऊ पर।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांधा सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी एफएम रेनबो लखनऊ पर। अपनी हद में रहना, अपनी जद में रहना, खुद अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, अधिकारों की बातें कम और कर्तव्य की ज़्यादा करना, अपना हक लेने के साथ साथ अपना जो दायित्व है उसकी भी बातें करना, शायद ये बैलेंस बनाने में थोड़ा सा हम पीछे हो जाते हैं जब निभाने की बात होती है। क्यों? क्योंकि सुनने की क्षमता कम, सुनाने की क्षमता ज़्यादा, लेने की क्षमता टेंडेंसी ज़्यादा, देने की टेंडेंसी कम। स्पेशली अगर सुख देने की बात हो या खुशी देने की बात हो, कितने कमज़ोर हो गए हैं ना, कितने तंगदिल हो गए हैं ये किसी को कुछ भी फ्री में देने की सलाह को छोड़कर बात हो तो हम थोड़े तंगदिल हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक डिज़ास्टर हुआ और एक इंसान ने उस प्राकृतिक डिज़ास्टर में, जिसमें कि इंसान का कोई वश नहीं, सावधानी या जिसे कहते हैं प्रिकॉशंस ही ली जा सकती हैं, ऐसे में एक इंसान जो एक लेमैन, एक सामान्य व्यक्ति, किस तरह से एक बड़वानल या जिसे कहते हैं अग्नि, पांचवे तत्वों में से एक अग्नि तत्व, जो कि एक बहुत भीषण तरीके से इन गर्मियों में कई बार कहीं कई जगहों पर लग जाती है। अब ऐसे में आवश्यक है कि सुरक्षा के उपाय किए जाएं। अगर ऐसी कोई स्थिति आ ही जाती है तो जो कॉमन लोग हैं उनका भी सहयोग उतना ही आवश्यक है जितना कि अथॉरिटीज़ का वेट करना या जो जिम्मेदार लोग हैं उनका, राइट? तो प्रकृति ही तो है जो हमें हद में रहना सिखाती है, और अगर हम अपनी हद में रहें और अपने अधिकार से ज़्यादा अपने कर्तव्य की बात करें, लेने से ज़्यादा देने की बात करें, तो शायद हमारे आसपास का जो माहौल, विशेष रूप से जो फैमिली सिस्टम है, हमारा जो परिवार संस्था है, उसके टूटने बिखरने या उनमें तनाव आने, स्ट्रेन आने या ऐसा किसी दरार आने की जो संभावना है वो शायद कम हो सकती है। क्योंकि ये जो दरकने की शुरुआत है वो इसी बात से आती है कि हम अपनी आना हम ही हम हैं, है ना? तो अगर हम ही हम होंगे तो दूसरे की जगह नहीं बचेगी, और फिर कितना देगा कोई आदमी, है ना? देते देते एक दिन शायद उसके पास इमोशंस और संसाधन दोनों ख़त्म हो जाएंगे, और तब एक जगह बन जाएगी, वो जगह परिवार की जो मज़बूत जड़ें हैं, मज़बूत बेस है, उसको दरकाने के लिए पर्याप्त हो जाएगी। और अगर कोई परदेश में है तो तब तो फैमिली को बिल्कुल ना भूलें।

बिल्कुल सही टाइम पे सही गाना बजा है। ढल गया दिन हो गई रात, जाने दो जाना है। सही बात है, हमें भी जाना है भाई। और आपको भी अब थोड़ा मतलब नींद आ रही होगी ना, अगर नहीं भी आ रही है तो आँख बंद कर लीजिए, जिसको हमारे देसी भाषा में कहते हैं मुआई मार लेना, मतलब आँख बंद करके आराम से 10-15 सेकंड, 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनिए, अपने आप नींद आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे फिर किसी रोज़, ठीक है, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।

पानी इश्क की मध्यम लौ में पकता, सर्दियों की सुबह किसी झील के शिकारे पे रखी कांगड़ी से निकलते कहवे की माफिक लज्जतदार, खामोश निगाहों के पीछे छुपी कोई चिंगारी जो सुर्ख रोहे की शक्ल में आंखों में पड़ती नजर आ जाए, सर्द रातों में पश्मीने की माफिक जवां दिलों में हौले से मुकम्मल होते हुए किसी सुनहरे ख्वाब की ताबीर बताता।

नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। उसके लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धि और आगामी कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा की। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। यह टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अब मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, यह सामान्य से लगभग 1 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:12 पर और सूर्यास्त 6:59 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का यह लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।